0: श्रोताओं, इस समय सुबह के 5:31 हुए हैं। सभा की शुरुआत अनमोल विचार के साथ।
1: परिवार वो अनमोल धरोहर है जहाँ प्यार, विश्वास और अपनापन बिना किसी शर्त के मिलता है। परिवार के साथ बिताया हर पल जीवन को खुशियों और सुकून से भर देता है। कहा जाता है, परिवार जीवन का वो सुरक्षित स्थान है जहाँ हमें सबसे ज्यादा प्यार और अपनापन मिलता है। परिवार हमारी पहली पाठशाला है जहाँ हम जीवन के सबसे महत्वपूर्ण संस्कार सीखते हैं। तो श्रोताओं, अपने परिवार को समय दें, प्यार दें और अपनापन दें, ताकि आपका परिवार हमेशा फलता फूलता रहे।
0: अनमोल विचार अभी आप सुन रहे थे और अब आरंभ होता है भक्ति गीतों का कार्यक्रम प्रभाती वंदना। कार्यक्रम में पहले लीजिए सुनिए एक मातृ वंदना।

अभी आप दीपाली और स्वप्निल की आवाज़ों में एक भजन सुन रहे थे। कार्यक्रम का अगला भजन मन्ना डे और साथियों की आवाज़ों में।

0: मन्नाडिया और साथियों की गाय इस भजन के साथ ही भक्ति गीतों का कार्यक्रम प्रभाती वंदना अब यहीं समाप्त होता है। हम आकाशवाणी के श्री विजयपुरम केंद्र से बोल रहे हैं। इस समय सुबह के 5:55 हुए हैं और अब लीजिए सुनिए एग्री टिप्स।
1: किसान भाइयों, आज की हमारी चर्चा का विषय है अमरूद की

0: अधिक उपज कैसे। अमरूद को गरीबों का सेब कहा जाता है। ऐसा इसलिए कहते हैं क्योंकि अमरूद की खेती कम खर्च में अधिक पैदावार देती है और इसका मूल्य भी बाजार में तुलनात्मक दृष्टि से कम ही होता है। वैसे अमरूद में विटामिन ए, विटामिन बी तथा विटामिन सी प्रचुर मात्रा में पाया जाता है, जो कि स्वास्थ्य के लिए बहुत ही जरूरी है। हमारे द्वीपों की जलवायु में अमरूद की खेती आसानी से हो सकती है। अमरूद को हमारे द्वीपों में लगभग सभी प्रकार की मिट्टी में उगाया जा सकता है, परंतु गहरी बलुई दोमट मिट्टी इसके लिए काफी उपयुक्त है। जहां तक अमरूद की किस्मों का सवाल है, अगर आप अच्छी किस्मों का चुनाव करेंगे तभी जाकर आपको अच्छा उत्पादन प्राप्त होगा। अधिक जानकारी के लिए आप केंद्रीय कृषि अनुसंधान संस्थान अथवा कृषि विभाग के अधिकारियों से संपर्क कर सकते हैं। किसान भाइयों, अमरूद की खेती के लिए पौधे से पौधे की दूरी 6.5 मीटर रखनी चाहिए। इतनी दूरी पर आप 75 घन सेंटीमीटर के गड्ढे बना लें, 75 सेंटीमीटर लंबा, चौड़ा तथा इतना ही गहरा। किसान भाइयों, अमरूद के पौधों की रोपाई का सबसे अच्छा समय जून जुलाई का महीना होता है। बारिश के मौसम में सिंचाई की आवश्यकता नहीं पड़ती है। गर्मी के दिनों में 3 दिन के अंतर पर सिंचाई करते रहें। किसान भाइयों, अमरूद की रोपाई के बाद पहले वर्ष में अमरूद के पेड़ के लिए 5 किलोग्राम गोबर की सड़ी खाद और 150 ग्राम अमोनियम सल्फेट प्रति पेड़ देना होता है। 3 वर्ष तक प्रतिवर्ष इसी मात्रा को दोहराते रहें। चौथे वर्ष प्रति पेड़ 24 किलोग्राम गोबर की सड़ी खाद, 550 ग्राम अमोनियम सल्फेट, 950 ग्राम सिंगल सुपर फास्फेट और 350 ग्राम पोटाशियम सल्फेट दें। 7 वर्ष की उम्र तक इसी मात्रा को दोहराते रहें तथा इसके बाद अधिक आयु वाले पेड़ों को 40 किलोग्राम गोबर की सड़ी खाद, 1 किलोग्राम अमोनियम सल्फेट, 1.5 किलोग्राम सिंगल सुपर फास्फेट तथा 1 किलोग्राम पोटाशियम सल्फेट प्रति पेड़ के हिसाब से दें। किसान भाइयों, उर्वरकों की इस बताई गई मात्रा को 2 बराबर भागों में बांट लें तथा पहला हिस्सा जून जुलाई तथा दूसरा भाग अक्टूबर नवंबर के महीने में दें। उर्वरकों को पेड़ के तने से 1 मीटर की दूरी पर रिंग बनाकर मिट्टी में मिला दें तथा बारिश ना होने पर सिंचाई जरूर कर दें। समय समय पर रोगी तथा सूखी टहनियों को काटते रहना चाहिए। किसान भाइयों, अमरूद की अच्छी एवं अधिक उपज लेने के लिए मार्च अप्रैल में जब फूल आ जाएं, तब 750 ग्राम यूरिया को 5 लीटर पानी में घोलकर 35 दिनों के अंतर पर 2 बार छिड़काव करें। छिड़काव के 20 से 25 दिनों के अंदर 80% पत्तियां गिर जाती हैं तथा नई पत्तियां 20 से 25 दिनों में निकल आती हैं। नई पत्तियों के निकलने के 25 से 30 दिन के बाद 50% फूल निकल आते हैं। किसान भाइयों, अमरूद में कई प्रकार के कीड़े एवं बीमारियों का भी प्रकोप होता है। अपने बागान की निरंतर निगरानी करते रहें और जैसे ही कीड़े व बीमारियों के लक्षण आपको नजर आएं, तुरंत ही पौधरक्षा विशेषज्ञों की सलाह के अनुसार नियंत्रण के उपाय करें।
1: एग्री टिप्स अभी आप सुन रहे थे। हम आकाशवाणी के श्री विजयपुरम केंद्र से बोल रहे हैं। सुबह के 6 बजने वाले हैं और अब समाचारों का प्रसारण होगा, जिसे हम अपने दिल्ली केंद्र से रिले करेंगे। कृपया प्रतीक्षा कीजिए।

गृह मंत्री अमित शाह आज नई दिल्ली में लैंड पोर्ट मैनेजमेंट सिस्टम LPMS का शुभारंभ करेंगे। इसका उद्देश्य तकनीक की मदद से सीमा पार व्यापार और यात्रियों की आवाजाही को अधिक सुगम, पारदर्शी और सुरक्षित बनाना है। यह पहल स्मार्ट सीमा प्रबंधन के प्रति सरकार की प्रतिबद्धता को भी दर्शाती है। स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय आज से प्रधानमंत्री सुरक्षित मातृत्व अभियान के 10 वर्ष पूरे होने पर देशभर में विशेष कार्यक्रम शुरू करेगा। इस योजना की शुरुआत प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 9 जून 2016 को की थी। इसका उद्देश्य सभी गर्भवती महिलाओं को मुफ्त और अच्छी गुणवत्ता वाली प्रसव पूर्व स्वास्थ्य सेवाएं उपलब्ध कराना है। इस अवसर पर सभी राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों में जागरूकता कार्यक्रम चलाए जाएंगे। समारोह के दौरान स्वास्थ्य मंत्री जगत प्रकाश नड्डा 75 रूपये का स्मारक सिक्का और 5 रूपये का डाक टिकट भी जारी करेंगे। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने कल राष्ट्रपति भवन में आयोजित रक्षा अलंकरण समारोह में सशस्त्र बलों, केंद्रीय सशस्त्र पुलिस बलों और पुलिस बलों तथा केंद्र शासित प्रदेशों के पुलिस कर्मियों को वीरता पुरस्कार प्रदान किए। इस अवसर पर उपराष्ट्रपति सीपी राधाकृष्णन, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह और अन्य केंद्रीय मंत्री तथा सशस्त्र बलों के वरिष्ठ अधिकारी उपस्थित थे। वाणिज्य और उद्योग मंत्री पीयूष गोयल ने कहा है कि नवाचार, वैश्विक साझेदारी और अंतर्राष्ट्रीय बाजारों तक बढ़ती पहुंच से अगले 5 वर्षों में भारत का फार्मा उद्योग दोगुना होने की संभावना है। नई दिल्ली में फार्मास्यूटिकल क्षेत्र पर आयोजित ग्लोबल एम्बेसडर मीट को संबोधित करते हुए श्री गोयल ने कहा कि भारत ने हाल के वर्षों में 9 मुक्त व्यापार समझौते किए हैं और अब भारत के 50 से अधिक देशों के साथ व्यापारिक समझौते हैं। इससे भारतीय उत्पादों को व्यापक बाजार उपलब्ध हुआ है। उन्होंने कहा कि भारत अब केवल जेनरिक दवाओं तक सीमित नहीं है, बल्कि अनुसंधान, नवाचार और उच्च मूल्य वाली औषधियों के क्षेत्र में भी तेजी से आगे बढ़ रहा है। श्री गोयल ने देशभर में 100 औद्योगिक पार्कों के विकास में तेजी लाने के लिए भव्य पोर्टल का शुभारंभ किया। नई दिल्ली में श्री गोयल ने कहा कि यह पोर्टल आधुनिक औद्योगिक क्षेत्रों के विकास में मदद करेगा। उन्होंने बताया कि इसके अंतर्गत बेहतर सड़क, रेल और अन्य परिवहन सुविधाएं, बिजली तथा पानी की व्यवस्था, डिजिटल प्रशासन, श्रमिकों के लिए सुविधाएं और पर्यावरण अनुकूल विकास पर ध्यान दिया जाएगा। इंडिया ब्लॉक की कल नई दिल्ली में बैठक हुई। बैठक में कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे और राहुल गांधी, समाजवादी पार्टी अध्यक्ष अखिलेश यादव, तृणमूल कांग्रेस अध्यक्ष ममता बनर्जी, नेशनल कॉन्फ्रेंस के उमर अब्दुल्ला और राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी शरद पवार की सुप्रिया सुले शामिल थी। वहीं आम आदमी पार्टी और डीएमके पार्टी सहित कई दलों ने बैठक से दूरी बनाए रखी। उधर भाजपा प्रवक्ता संबित पात्रा ने नई दिल्ली में कहा कि इंडिया ब्लॉक के लोगों के बीच विश्वसनीयता कम हो गई है। विशाखापट्टनम इस्पात संयंत्र में हुई आग की दुर्घटना में 8 लोगों की मौत हो गई और 6 घायल हुए हैं, जिनमें 2 की हालत गंभीर बनी हुई है। इस्पात मंत्रालय के अनुसार यह हादसा पिघले हुए इस्पात की ढलाई प्रक्रिया के दौरान हुआ। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू, उपराष्ट्रपति सीपी राधाकृष्णन और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने घटना पर शोक व्यक्त किया है। प्रधानमंत्री ने प्रत्येक मृतक के निकटतम परिजन को 2-2 लाख रूपये और घायलों को 50,000 रूपये की अनुग्रह राशि देने की घोषणा की है। वहीं केंद्रीय इस्पात मंत्री एचडी कुमार स्वामी और नागर विमानन मंत्री राममोहन नायडू ने कल रात दुर्घटना स्थल का दौरा किया। श्री कुमार स्वामी ने मृतकों के परिजनों के लिए 25 लाख और घायलों को 10 लाख रुपए की सहायता राशि तथा बच्चों को निःशुल्क शिक्षा देने की घोषणा की है। ईरान और इसराइल ने एक दूसरे पर हमले रोकने की घोषणा की है। यह फैसला अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप की तत्काल युद्ध विराम की अपील के बाद लिया गया है। हालांकि दोनों देशों ने चेतावनी दी है कि किसी भी नए हमले का कड़ा जवाब दिया जाएगा। इस बीच राष्ट्रपति ट्रंप ने कहा है कि दोनों पक्ष संघर्ष विराम चाहते हैं और शांति वार्ता जारी है। वहीं ईरान के राष्ट्रपति मसूद पेजेश्कियान ने कहा है कि उनका देश कूटनीति और राष्ट्रीय सुरक्षा दोनों के प्रति प्रतिबद्ध है। दक्षिण पश्चिम मॉनसून पश्चिम मध्य और पूर्व मध्य अरब सागर के कुछ हिस्सों तथा महाराष्ट्र, कर्नाटक, आंध्र प्रदेश और तेलंगाना के कुछ भागों तक पहुंच गया है। इसके साथ ही ये समाचार

0: The next face host England in their next warm-up fixture tomorrow. And that is the end of this news bulletin.
1: हम आकाशवाणी के श्री विजयपुरम केंद्र से बोल रहे हैं। इस समय सुबह के 6:10 हुए हैं और अब लीजिए सुनिए जलयानु का यात्रा कार्यक्रम। जहाजरानी सेवा निदेशालय से प्राप्त सूचना के अनुसार एमवी हडबे मायाबंदर होते हुए डिगलीपुर के लिए कल सुबह 7 श्री विजयपुरम से प्रस्थान करेगा। वापसी अगले दिन यानी बृहस्पतिवार 11 तारीख को सुबह 7 डिगलीपुर से छूटकर मायाबंदर होते हुए श्री विजयपुरम के लिए होगी। एमवी सेंटिनल लिटिल अंडमान की यात्रा पर बृहस्पतिवार 11 तारीख को सुबह 7 श्री विजयपुरम से रवाना होगा। ये जहाज उसी रोज रात 8 लिटिल अंडमान से श्री विजयपुरम वापस लौटेगा। एमवी कालीघाट बृहस्पतिवार 11 तारीख को सुबह 7 लिटिल अंडमान कार निकोबार चौरा तेरेसा कछाल नानकौरी माकाचुआ और आफ्रा बे होते हुए कैम्बल बे की यात्रा पर श्री विजयपुरम से रवाना होगा। वापसी 15 जून को सुबह 5 कैम्बल बे से छूटकर इन्हीं मार्गों से होते हुए श्री विजयपुरम के लिए होगी। सिंधु जहाज नानकौरी होते हुए कैम्बल बे की यात्रा पर 16 जून को सवेरे 9 श्री विजयपुरम से प्रस्थान करेगा। ये जहाज कैम्बल बे से छूटकर नानकौरी होते हुए श्री विजयपुरम के लिए 18 जून को सुबह 8 लौटेगा। एमवी जॉलीबॉय शहीद द्वीप की यात्रा पर आज दिन में 11 श्री विजयपुरम से रवाना होगा और दोपहर बाद 1 ये जलयान शहीद द्वीप से स्वराज द्वीप के लिए चलेगा तथा इसकी वापसी आज ही दोपहर बाद 2:30 पर स्वराज द्वीप से श्री विजयपुरम के लिए होगी। एमवी स्ट्रेट आइलैंड स्वराज द्वीप की यात्रा पर आज दिन में 11:30 पर श्री विजयपुरम से छूटेगा और दोपहर बाद 2 स्वराज द्वीप से शहीद द्वीप के लिए रवाना होगा तथा ये जलयान आज ही दोपहर बाद 3:30 पर शहीद द्वीप से श्री विजयपुरम वापस लौटेगा। शहीद द्वीप के लिए एमवी कमोटा आज दोपहर बाद 2:30 पर श्री विजयपुरम से प्रस्थान करेगा। ये जलयान आज शाम 4:30 पर शहीद द्वीप से श्री विजयपुरम वापस आएगा। एमवी पिलोमिलो आज शाम 5 श्री विजयपुरम से स्वराज द्वीप के लिए चलेगा। वापसी स्वराज द्वीप से छूटकर शहीद द्वीप होते हुए श्री विजयपुरम के लिए कल सुबह 5:30 पर होगी। एमवी रानीचंगा स्वराज द्वीप और लॉन्ग आइलैंड होते हुए रंगत के लिए कल यानी 10 तारीख को सवेरे 6 श्री विजयपुरम से प्रस्थान करेगा। ये जलयान कल ही दोपहर 12 रंगत से छूटकर इन्हीं स्थानों से होते हुए श्री विजयपुरम वापस लौटेगा। एमवी कमोटा शहीद द्वीप के लिए कल सुबह 6:15 पर श्री विजयपुरम से प्रस्थान करेगा। इस जलयान की शहीद द्वीप से श्री विजयपुरम के लिए वापसी होगी सुबह 8:30 पर। स्वराज द्वीप के लिए एमवी स्ट्रेट आइलैंड कल सुबह 6:15 पर श्री विजयपुरम से रवाना होगा। ये जलयान कल ही सुबह 8:45 पर स्वराज द्वीप से श्री विजयपुरम वापस लौटेगा। एमवी रानी लक्ष्मी कल सवेरे 7 शहीद द्वीप स्वराज द्वीप स्ट्रेट आइलैंड कदमतला और लॉन्ग आइलैंड होते हुए रंगत के लिए श्री विजयपुरम से छूटेगा। वापसी 11 तारीख को सवेरे 7 रंगत से छूटकर इन्हीं रास्तों से होते हुए श्री विजयपुरम के लिए होगी। एमवी नॉर्थ पैसेज कल दिन में 11 शहीद द्वीप के लिए श्री विजयपुरम से रवाना होगा और दोपहर 1 शहीद द्वीप से स्वराज द्वीप के लिए चलेगा तथा इसकी वापसी स्वराज द्वीप से श्री विजयपुरम के लिए कल ही दोपहर बाद 2:30 पर होगी। और एमवी कमोटा कल शाम 5 श्री विजयपुरम से स्वराज द्वीप के लिए चलेगा। वापसी स्वराज द्वीप से छूटकर शहीद द्वीप होते हुए श्री विजयपुरम के लिए अगले रोज यानी बृहस्पतिवार 11 तारीख को सुबह 5:30 पर होगी। श्रोताओं, अभी आप जलयानों का यात्रा कार्यक्रम सुन रहे थे।

हम आकाशवाणी के श्री विजयपुरम केंद्र से बोल रहे हैं। इस समय सुबह के 6:15 हुए हैं और अब लीजिए सुनिए कार्यक्रम इंद्रधनुष।

इंद्रधनुष कार्यक्रम में आप सभी श्रोताओं का बहुत बहुत स्वागत है। जब हमारे शब्दों में जज्बात उतर आते हैं और सुरों में दिल की सच्चाई घुल जाती है, तभी तो जन्म लेता है एक प्यारा सा नगमा। दोस्तों, नगमा सिर्फ एक गीत नहीं होता, ये हमारी धड़कनों की आवाज होता है। जब हम कोई नगमा गुनगुनाते हैं तो वो सिर्फ शब्द नहीं रह जाते, वो हमारी पहचान बन जाते हैं, हमारी भावनाओं का आईना बन जाते हैं। ये नगमे हमारे सपनों की कहानी बन जाते हैं, हमारी खुशियों की मुस्कान बन जाते हैं और कभी कभी हमारे संघर्षों की ताकत भी। जब जिंदगी ने हमें परखा तभी ये नगमा हौसला बनकर हमारे साथ चला। जब दिल खुश हुआ तो यही नगमा होठों पर मुस्कान बनकर सज गया। इस गीत की तरह

जिंदगी एक बहती हुई धारा है जिसमें कभी खुशियों की लहरें होती हैं, गम के गहरे समंदर। जिंदगी केवल सांसों का नाम नहीं है, बल्कि दोस्तों उन अनमोल पलों का संगम है जो दिल को छू जाते हैं। इस सफर में कभी कुछ पाकर खोना है तो कभी कुछ खोकर भी पाना है। जीवन का मतलब तो आना और जाना ही है। पर दोस्तों जिंदगी में कितने ही कम क्यों ना आए, फिर भी हम यही कहेंगे, जिंदगी एक प्यार का नगमा है।

दोस्तों, कुछ कहानियाँ पूरी होकर भी अधूरी रह जाती है और कुछ नगमे अधूरे होकर भी दिल में हमेशा गूंजते रहते हैं। कभी कभी नगमे उन एहसासों की दास्तान बन जाते हैं जहाँ मिलने की चाहत होती है पर साथ में जुदाई की हल्की सी टीस भी होती है। दोस्तों, नगमा एहसासों की वो मीठी धड़कन है जो दिल से निकलकर सीधे रूह तक पहुंचती है, जो कभी माँ की लोरी बनकर हमें सुला देती है तो कभी दोस्तों की महफिल में मुस्कान बनकर खिल उठती है।

0: ये नगमा कभी प्यार की कहानी कहता है, तो कभी जुदाई का दर्द, तो कभी जिंदगी की हकीकत को एक सुकून भरे अंदाज में बयां कर देता है। इसलिए दोस्तों, जिंदगी को गहराई से महसूस करते रहिए, नगमों का आनंद लेते रहिए। इसी दुआ के साथ अपनी दोस्त गीता को दीजिए इजाजत। नमस्कार।
1: इंद्रधनुष।

0: अभी आप कार्यक्रम इंद्रधनुष सुन रहे थे। प्रस्तुत कर रही थी गीता तिर्की। हम आकाशवाणी के श्री विजयपुरम केंद्र से बोल रहे हैं। इस समय सुबह के 6:30 हुए हैं और अब लीजिए सुनिए रामचरितमानस गान की 264वीं कड़ी।
1: एपिसोड नंबर 264 264।

एक समय श्रीराम द्वारा रचित माया के वशीभूत होकर नारद मुनि ने विवाह करना चाहा था, किंतु प्रभु ने उन्हें विवाह करने से रोक दिया। तब से ही मुनि के मन में इसका कारण जानने की उत्कंठा बनी हुई थी। जब नारद जी ने प्रभु के समक्ष अपनी शंका प्रकट की, तो प्रभु ने युवती स्त्री के गुण अवगुणों की चर्चा करके उनकी शंका का समाधान किया। स्वामी के वचन सुनकर मुनि का शरीर पुलकित हो उठा, उनकी आंखों में आंसू उमड़ आए। इसी संदर्भ में प्रभु ने संतों के उन लक्षणों पर प्रकाश डाला जिनके कारण वह भक्तों के वश में रहते हैं: काम, क्रोध, लोभ, मोह, मद और मत्सर। संतजन इन छह मानसिक तथा शारीरिक विकारों पर विजय प्राप्त कर लेते हैं। वे संसार के दुखों और संदेहों से सर्वथा मुक्त होते हैं। दूसरों को मान देना, अभिमान न करना, धैर्यवान होना, धर्म के ज्ञान और आचरण में निपुण होना उनके गुण हैं। वैराग्य, विवेक तथा परमात्मा के तत्व का ज्ञान संतों के लक्षण हैं।

अभी आप वाणी जयराम की आवाज़ में रामचरितमानस गान की 264वीं कड़ी सुन रहे थे। संगीत संयोजक थे सतीश भाटिया। हम आकाशवाणी के श्री विजयपुरम केंद्र से बोल रहे हैं। इस समय 6:40 हुए हैं और अब लीजिए सुनिए वतन की गीत।

वतन के गीत अभी आप सुन रहे थे। हम आकाशवाणी के श्री विजयपुरम केंद्र से बोल रहे हैं। इस समय सुबह के 6:50 हुए हैं और अब लीजिए सुनिए मौसम की जानकारी। मौसम विभाग से प्राप्त सूचना के अनुसार जन सेवाओं के लिए कोई विशेष चेतावनी नहीं है, जबकि मछुआरों को मौसम संबंधी चेतावनी में बताया जाता है कि खराब मौसम के चलते हवा की गति 40 से 50 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से चलेंगी, जो बढ़कर 60 किलोमीटर प्रति घंटा भी हो सकती है, जिस कारण मछुआरों को 12 जून तक समुद्र में न जाने की सलाह दी गई है। ये थी मौसम की जानकारी। और अब लीजिए सुनिए हमारे केंद्र से आज प्रसारित होने वाले कार्यक्रमों की रूपरेखा। अब से कुछ देर बाद यानी सुबह 7:00 सुनिए जन सूचनाएं। प्रादेशिक समाचार बुलेटिन का समय रहेगा 7:05।

7:15 पर विविध भारती मुंबई से सुनिए प्रायोजित कार्यक्रम भूले बिसरे गीत। ठीक उसी समय प्राइमरी चैनल पर आप सुन पाएंगे कार्यक्रम देश रागिनी। प्राइमरी चैनल और एफएम 100.9 मेगाहर्ट्ज पर गुड मॉर्निंग अंडमान में सुबह 7:30 पर खेल जगत कार्यक्रम के तहत योग और जीवन शैली विषय पर योग प्रशिक्षक श्री अजित कुमार दास के साथ ली गई भेंट वार्ता आप सुन पाएंगे। सुबह 8:30 आप सुनेंगे दिल्ली से कल प्रसारित सरकार के 12 वर्ष पूर्ण होने के उपलक्ष्य में विभिन्न विषयों पर आधारित विशेष द्विभाषी कार्यक्रम श्रृंखला की रिकॉर्डिंग। आनंद लीजिए फिल्मी गीतों के कार्यक्रम तराने सुहाने का सुबह 9:00, फिल्मी गीतों का कार्यक्रम गीतकाता चल सवेरे 10:00, दिन में 11:00 प्रायोजित कार्यक्रम NCERT आप सुन पाएंगे। आनंद लीजिए फिल्मी गीतों के कार्यक्रम चित्र गीत का दिन में 11:30 पर, तेलुगु कार्यक्रम दोपहर 12:00 12:30 पर मलयालम कार्यक्रम प्रसारित किया जाएगा। दोपहर 1:10 पर सुगम संगीत के तहत चंदन दास को आप सुन पाएंगे। फरमाइशी फिल्मी गीतों का कार्यक्रम आपके नाम फिल्मी पैगाम दोपहर 1:30 पर, दोपहर बाद 2:30 पर मौसम की जानकारी के पश्चात प्राइमरी चैनल पर हमारे कार्यक्रमों की समाप्ति होगी, लेकिन एफएम 100.9 मेगाहर्ट्ज़ पर हमारे कार्यक्रम जारी रहेंगे, जिसके तहत 2:30 पर नॉन स्टॉप फिल्म म्यूजिक तथा 3:30 सुनिएगा फिल्मी गीतों का विशेष कार्यक्रम यूं ही गाते रहो। हमारी दूसरी सभा आरंभ होगी 4:00 निकोबारी कार्यक्रम के साथ, जिसमें सूचनाओं के अलावा लपाते विलेज के सदस्यों द्वारा प्रस्तुत गीत सुनवाए जाएंगे। शाम 4:30 पर सुगम संगीत के तहत कलाकार होंगे जसवंत सिंह और अनुराधा पौड़वाल। शाम 4:40 पर कार्यक्रमों का विवरण दिया जाएगा। 4:45 पर फिल्मी गीतों का कार्यक्रम होगा बहारों की शाम, तमिल में शाम 5:00 महिलाओं के लिए कार्यक्रम होगा मगलीर उलगम। 5:30 बांग्ला कार्यक्रम, किसानवाणी कार्यक्रम संध्या 6:00। संध्या 6:30 पर फिल्मी गीतों का कार्यक्रम होगा शामी बहार, मौसम की जानकारी जलियानों का यात्रा कार्यक्रम और जन सूचनाएं संध्या 7:15 पर। 7:20 पर फिल्मी गीतों का कार्यक्रम होगा दिल ने फिर याद किया। युवाणी के तहत संध्या 7:30 पर सुनिए कार्यक्रम देश की शान। 8:00 दिल्ली से प्रसारित सरकार के 12 वर्ष पूर्ण होने के उपलक्ष्य में विभिन्न विषयों पर आधारित विशेष द्विभाषी कार्यक्रम श्रृंखला की रिकॉर्डिंग आप सुन पाएंगे। 8:30 आप सुनेंगे रोजगार समाचार और गौरव गान और 10:00 व्हाट्सएप पर आधारित फिल्मी गीतों का कार्यक्रम होगा संदेशे आते हैं। इन कार्यक्रमों के अलावा 9:15 पर स्पॉटलाइट, 9:30 पर कार्यक्रम मनी टॉक तथा 9:45 पर कार्यक्रम मंथन हम अपने दिल्ली केंद्र से रिले करेंगे। श्रोताओं अभी आप हमारे केंद्र से आज प्रसारित होने वाले कार्यक्रमों की रूपरेखा सुन रहे थे। ये आकाशवाणी का श्री विजयपुरम केंद्र है। सुबह के 6:55 होने वाले हैं। अब संस्कृत में समाचार हमारे दिल्ली केंद्र से, कृपया प्रतीक्षा कीजिए।

आज सवेरे स्थानीय मौसम कार्यालय से प्राप्त सूचना के अनुसार पिछले 22 घंटों के दौरान श्री विजयपुरम और आसपास के क्षेत्रों में वर्षा 4.4 मिलीमीटर हुई। आज सवेरे 5:30 पर सापेक्ष आर्द्रता 97% और न्यूनतम तापमान 25.8 डिग्री सेल्सियस रिकॉर्ड किया गया, जबकि कल श्री विजयपुरम का अधिकतम तापमान रहा 31.5 डिग्री सेल्सियस। सूर्योदय 4:55 पर हुआ और सूर्यास्त का समय रहेगा 5:42। और अब एयर इंडिया से प्राप्त सूचना। दिल्ली से आ रहा विमान 2937 दिन में 11 बजे श्री विजयपुरम पहुंचेगा तथा श्री विजयपुरम से दिल्ली के लिए विमान संख्या 2936 दिन में 11:40 पर अपनी वापसी उड़ान भरेगा।

श्रोताओं, आज सुबह 7:15 पर विविध भारती मुंबई से सुनिए प्रायोजित कार्यक्रम भूले बिसरे गीत। ठीक उसी समय प्राइमरी चैनल पर आप सुन पाएंगे कार्यक्रम देश रागिनी। प्राइमरी चैनल और FM 100.9 मेगाहर्ट्ज पर गुड मॉर्निंग अंडमान में सुबह 7:30 पर खेल जगत कार्यक्रम के तहत योग और जीवन शैली विषय पर योग प्रशिक्षक श्री अजीत कुमार दास के साथ ली गई भेंट वार्ता आप सुन पाएंगे। सुबह 8:30 आप सुनेंगे दिल्ली से कल प्रसारित सरकार के 12 वर्ष पूर्ण होने के उपलक्ष्य में विभिन्न विषयों पर आधारित विशेष द्विभाषी कार्यक्रम श्रृंखला की रिकॉर्डिंग। फिल्मी गीतों का कार्यक्रम गीत गाता चल सवेरे 10:00। आनंद लीजिए फिल्मी गीतों के कार्यक्रम चित्र गीत का दिन में 11:30 पर।

0: जन सूचनाएं समाप्त हुई। मीडियम वेव 438.6 मीटर अर्थात 684 किलोहर्ट्ज़ और एफएम 100.9 मेगाहर्ट्ज़ पर ये आकाशवाणी का श्री विजयपुरम केंद्र है। 7:05 पर आप सुनेंगे प्रादेशिक समाचार।
1: नमस्कार, आकाशवाणी श्री विजयपुरम से प्रस्तुत है प्रादेशिक समाचार। केंद्रीय स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्री जगत प्रकाश नड्डा आज प्रधानमंत्री सुरक्षित मातृत्व अभियान के 10 वर्ष पूरे होने के अवसर पर राष्ट्रव्यापी समारोहों का शुभारंभ करेंगे। ओंगी समुदाय के लिए प्रधानमंत्री जनजाति आदिवासी न्याय महाअभियान और वन धन योजना के तहत वन धन विकास केंद्र की स्थापना की गई है। कृषि विज्ञान केंद्र कार्निकोबार की ओर से बिगलाबाती में विश्व महासागर दिवस और खेत बचाओ अभियान का आयोजन किया गया और नागरिक आपूर्ति और उपभोक्ता मामले विभाग की ओर से आज से ग्राम पंचायतों में विशेष आधार शिविरों के आयोजन किया।

सुबह के समाचारों के साथ मैं पूजा सिंह। केंद्रीय स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्री जगत प्रकाश नड्डा आज नई दिल्ली में प्रधानमंत्री सुरक्षित मातृत्व अभियान के 10 वर्ष पूरे होने के अवसर पर राष्ट्रव्यापी समारोहों का शुभारंभ करेंगे। इस अभियान का उद्देश्य सुरक्षित गर्भावस्था और मातृत्व को सुनिश्चित करना है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 9 जून 2016 को इस योजना की शुरुआत की थी, जिसके तहत गर्भवती महिलाओं को मुफ्त और गुणवत्तापूर्ण प्रसव पूर्व स्वास्थ्य सेवाएं दी जाती हैं। समारोह के दौरान श्री नड्डा 75 रुपये का स्मारक सिक्का और 5 रुपये का डाक टिकट भी जारी करेंगे। इस अवसर पर द्वीप समूह के सभी स्वास्थ्य केंद्रों पर विशेष स्क्रीनिंग गतिविधियों का आयोजन किया जा रहा है। इस अभियान के तहत विशेष आयुष्मान आरोग्य शिविर भी आयोजित किए जा रहे हैं। जनजातीय कार्य मंत्रालय के दूरदर्शी प्रधानमंत्री जनमन, प्रधानमंत्री जनजाति आदिवासी न्याय महाअभियान और वन धन योजना के तहत लिटिल अंडमान के ओंगी समुदाय के लिए डुगोंग क्रीक में एक वन धन विकास केंद्र की स्थापना की गई है। इस VDVK के सोसाइटी पंजीकरण अधिनियम 1860 के तहत एक सोसाइटी के रूप में पंजीकृत किया गया है, जिसका उद्देश्य टिकाऊ आय सृजन गतिविधियों के माध्यम से ओंगी समुदाय की आजीविका में सुधार करना है। इस वनधन विकास केंद्र को चलाने के लिए 56 ओंगी सदस्यों को मिलाकर 7 स्वयं सहायता समूह बनाए गए हैं। ये सदस्य क्षेत्र में उपलब्ध नारियल संसाधनों का उपयोग करके कोपरा और नारियल तेल जैसे मूल्य वर्धित उत्पाद तैयार करने के काम में लगे हुए हैं। भारत सरकार ने इस केंद्र की स्थापना के लिए 2.80 लाख रुपए की वित्तीय सहायता प्रदान की। समुदाय के सदस्यों को प्रशिक्षण के साथ टूल किट भी वितरित किए गए। उच्च गुणवत्ता वाले नारियल तेल के उत्पादन को सक्षम बनाने के लिए डुगोंग क्रीक में एक आधुनिक कोल्ड प्रेस नारियल तेल निष्कर्षण मशीन स्थापित की गई है। गैर सरकारी संगठन वित्यू ने समाज कल्याण निदेशालय के तहत वन स्टॉप सेंटर के सहयोग से दक्षिण अंडमान जिला परिषद के सम्मेलन कक्ष में कार्यस्थल पर महिलाओं के यौन उत्पीड़न रोकथाम निषेध और निवारण अधिनियम और वन स्टॉप सेंटर द्वारा प्रदान की जाने वाली विभिन्न सेवाओं पर जागरूकता कार्यक्रम का आयोजन किया। वन स्टॉप सेंटर की केस वर्कर मीनल राजन ने सत्र का संचालन किया। उन्होंने पौष अधिनियम के प्रावधानों, कर्मचारियों और नियोक्ताओं के अधिकारों व जिम्मेदारियों, आंतरिक समितियों की भूमिका और कार्यस्थल पर उत्पीड़न की शिकायतों के निपटारे की प्रक्रिया के बारे में विस्तार से जानकारी दी। इस दौरान वन स्टॉप सेंटर की ओर से दी जाने वाली सेवाओं पर भी जानकारी दी गई। विथियो की अध्यक्षा ने सभी कर्मचारियों के लिए एक सुरक्षित, सम्मानजनक और समावेशी कार्य वातावरण सुनिश्चित करने के लिए पौष अधिनियम के प्रति जागरूकता बढ़ाने के महत्व पर विशेष बल दिया। मायाबंदर तहसील के अंतर्गत आने वाली पानीघाट स्थित हायरिंग पावर हाउस की चौथी यूनिट के चालू होने तक क्षेत्र में बिजली आपूर्ति प्रभावित रहेगी। इस यूनिट को ठीक होने में लगभग 10 दिन का समय लग सकता है। इस अवधि के दौरान 17 जून तक चैनपुर, कर्माटांग, दानापुर, रामपुर, धोबीडेरा, पोकाडोरा, टुगापुर और मायाबंदर बाजार में 1-1 घंटे की बारी बारी से बिजली कटौती की जाएगी। प्रादेशिक समाचार आप आकाशवाणी श्री विजयपुरम से सुन रहे हैं। समाचारों में आगे प्रमुख है खेत बचाओ अभियान और आधार शिविर। आकाशवाणी श्री विजयपुरम से प्रसारित होने वाला ये प्रादेशिक समाचार बुलेटिन आप मीडियम वेव के साथ साथ FM 100.9 MHz पर भी सुन रहे हैं। प्रादेशिक समाचार के अलावा सुबह 9 बजे, 10 बजे और 11 बजे प्रतिघंटा न्यूज हेडलाइंस FM रेडियो पर भी उपलब्ध है। प्रादेशिक समाचार में आपका फिर स्वागत है। केंद्रीय द्वीपीय कृषि अनुसंधान संस्थान कृषि विज्ञान केंद्र निकोबार की ओर से कल कार निकोबार में बिकलपाती गांव में विश्व महासागर दिवस और खेत बचाओ अभियान का आयोजन किया गया। इस अवसर पर ICAR अटारी कोलकाता के निदेशक डॉ. प्रदीप डे मुख्य अतिथि, श्री विजयपुरम के निदेशक डॉ. जयसुंदर विशिष्ट अतिथि और बिकलपाती गांव के कप्तान मैनुआ थॉमस सम्माननीय अतिथि के रूप में उपस्थित थे। कार्यक्रम में पशुपालन, कृषि, मत्स्य पालन और वन विभाग के प्रतिनिधि भी मौजूद रहे।

मुख्य अतिथि ने भावी पीढ़ियों के लिए महासागरों की रक्षा और प्राकृतिक संसाधनों को संजोने के महत्व पर बल दिया। निदेशक डॉक्टर जयसुंदर ने सतत विकास के लिए महासागरों, जंगलों और प्राकृतिक संसाधनों के संरक्षण को अत्यंत महत्वपूर्ण बताया। इस अवसर पर अन्य वक्ताओं ने भी अपने विचार रखे। इस उत्सव के हिस्से के रूप में समुद्र तट पर स्वच्छता अभियान और वृक्षारोपण कार्यक्रम आयोजित किया गया। कार्यक्रम में लगभग 60 किसानों ने भाग लिया। नागरिक आपूर्ति और उपभोक्ता मामले विभाग की ओर से जून माह में ग्राम पंचायतों में विशेष आधार शिविरों के आयोजन किए जाएंगे। शिविर सुबह 9:30 बजे से शाम 4 बजे तक चलेगा। दक्षिण अंडमान के बिडनाबाद में आज और कल तथा मध्योत्तर अंडमान के डिगलीपुर में कल शिविर आयोजित किया जाएगा। ये शिविर 25 जून तक चलेगा। इन विशेष शिविरों के दौरान नागरिकों से आधार से जुड़े कार्यों को पूरा करने को कहा गया है। तटीय सुरक्षा जागरूकता और समुद्री सतर्कता को बढ़ावा देने के लिए तालबगान में कालीघाट थाना प्रभारी उपनिरीक्षक शिवेंद्र हल्दर ने फिशरमैन वॉच ग्रुप के साथ बैठक कर बातचीत की। बैठक के दौरान मछुआरों को तटीय सुरक्षा उपायों, समुद्री सतर्कता और समुद्र या तटीय रेखा पर किसी भी संदिग्ध गतिविधि की तुरंत सूचना देने की आवश्यकता के बारे में जानकारी दी गई। इस अवसर पर अवैध शिकार विरोधी गतिविधियों और समुद्री सुरक्षा में बहुमूल्य योगदान देने वाले मछुआरों को पुलिस मुख्यालय द्वारा स्वीकृत प्रशंसा पत्र और नकद पुरस्कार प्रदान किए गए। मछुआरों ने इस पहल की सराहना करते हुए तटीय सुरक्षा बनाए रखने व समुद्र में अवैध गतिविधियों को रोकने के लिए मध्योत्तर अंडमान जिला पुलिस के साथ अपना सहयोग बनाए रखने का आश्वासन दिया। बैठक में क्षेत्र के लगभग 50 मछुआरों सहित स्थानीय सागर मित्रों, ग्राम पंचायत पश्चिम नगर के प्रधान और पीएमएफ कर्मियों ने भाग लिया। शैक्षणिक सत्र 2026-27 के लिए बीए एलएलबी के 5 वर्षीय एकीकृत कार्यक्रम में प्रवेश हेतु ऑनलाइन पोर्टल खुल चुके हैं। ये पाठ्यक्रम डीम्ड विश्वविद्यालय के घटक कॉलेज अंडमान लॉ कॉलेज द्वारा संचालित किया जा रहा है। आवेदन करने की अंतिम तिथि 30 जून शाम 4 बजे तक है। इच्छुक उम्मीदवार सामान्य कॉलेज प्रवेश पोर्टल के माध्यम से आवेदन कर सकते हैं। उम्मीदवारों से प्रवेश प्रक्रिया से जुड़ी विस्तृत जानकारी के लिए कॉलेज की ई प्रॉस्पेक्टस डाउनलोड करने की सलाह दी गई है। आपदा प्रबंधन निदेशालय ने जिला परामर्शदाता के पदों पर अनुबंध के आधार पर 1 वर्ष की भर्ती के लिए चयनित और प्रतीक्षा सूची के उम्मीदवारों के परिणामों की घोषणा कर दी है। उम्मीदवारों की सूची प्रशासन और विभाग की वेबसाइट पर उपलब्ध है। अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस के उपलक्ष्य में चिड़िया टापू के मुंडा पहाड़ समुद्र तट पर बीच योग सत्र का आयोजन किया गया। इस कार्यक्रम में डॉक्टरों, योग प्रशिक्षकों और ANM और स्कूली बच्चों ने भाग लिया। सत्र के दौरान शारीरिक फिटनेस, मानसिक कल्याण और तनाव प्रबंधन को बढ़ावा देने वाले विभिन्न योग अभ्यासों का संचालन किया गया। अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। केंद्रीय स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्री जगत प्रकाश नड्डा आज प्रधानमंत्री सुरक्षित मातृत्व अभियान के 10 वर्ष पूरे होने के अवसर पर राष्ट्रव्यापी समारोहों का शुभारंभ करेंगे। ओंगी समुदाय के लिए प्रधानमंत्री जनजातीय आदिवासी न्याय महाअभियान और वन धन योजना के तहत वन धन विकास केंद्र की स्थापना की गई है। कृषि विज्ञान केंद्र कार्निकोबार की ओर से बिगलपाती में विश्व महासागर दिवस और खेत बचाओ अभियान का आयोजन किया गया। और नागरिक आपूर्ति और उपभोक्ता मामले विभाग की ओर से आज से ग्राम पंचायतों में विशेष आधार शिविरों के आयोजन किए जा रहे हैं। इसके साथ ही प्रादेशिक समाचार का ये बुलेटिन समाप्त हुआ। नमस्कार।

हम आकाशवाणी के श्री विजयपुरम केंद्र से बोल रहे हैं। सुबह के 7:15 हुए हैं और अब लीजिए सुनिए कार्यक्रम देश रागिनी।

देश रागिनी में देश प्रेम, एकता और अपनी मातृभूमि के प्रति सम्मान की भावना को स्वर देते कुछ चुनिंदा गीत लेकर हम आपके बीच उपस्थित हैं। तो आइए कार्यक्रम का शुभारंभ करते हैं एक ऐसे गीत से जो भारत की विविधता, संस्कृति और रंगों से भरी पहचान का उत्सव मनाता है।

श्रोताओं, भारत की यही विविधता और रंग बिरंगी संस्कृति हमारी सबसे बड़ी शक्ति है। अलग अलग भाषाएं, बोलियां और परंपराएं होने के बावजूद हम सभी को एक सूत्र में बांधती है। अपनी मातृभूमि के प्रति अटूट श्रद्धा इसी भावना को आगे बढ़ाता है।

श्रोताओं, अपनी मिट्टी से जुड़ाव केवल एक एहसास नहीं बल्कि अपनी जड़ों से जुड़े रहने का संकल्प भी है। यही मिट्टी हमारे सपनों को आकार देती है और ज़रूरत पड़ने पर देश के लिए सर्वस्व समर्पित करने की प्रेरणा भी देती है।

श्रोताओं, इसी के साथ ही कार्यक्रम देश रागिनी अब यहीं समाप्त होता है। आशा करते हैं आप सभी का दिन मंगलमय हो और देश प्रेम की भावना सदैव आपके हृदय में बनी रहे। नमस्कार, जय हिंद।

रात की खामोशी अब विदा ले रही है। बादलों की ओट से उजाला अपना रास्ता बना रहा है और प्रकृति का रंग एक नए दिन का स्वागत कर रही है। जीवन भी कुछ ऐसा ही है दोस्तों, जो कल रह गया उसे पूरा कर लो आज, क्योंकि जिंदगी हर सवेरे नई शुरुआत लेकर आती है। नमस्कार, गुड मॉर्निंग अंडमान, स्वागत है आप सभी का आज के इस कार्यक्रम में। कार्यक्रम के साथ मैं हूं आपकी दोस्त श्री विद्या। श्रोताओं, आज मंगलवार है, शक संवत 1948 के ज्येष्ठ माह की 18वीं तिथि, तदनुसार 9 जून सन 2026। बदलते मौसम की तरह बदलते हैं हालात, लेकिन हौसले हमेशा साथ निभाते हैं। जो सपनों पर यकीन करना नहीं छोड़ते, उनके आंगन में एक दिन बहार जरूर आती है।

मीडियम वेव 438.6 मीटर अर्थात 684 किलोहर्ट्ज़ और FM 100.9 MHz पर यह आकाशवाणी का श्री विजयपुरम केंद्र है। इस समय सुबह के 7:30 हुए हैं। अब लीजिए सुनिए कार्यक्रम गुड मॉर्निंग अंडमान।

आई हेट लव स्टोरीज फिल्म का गीत अभी आपने सुना, श्रेया घोषाल और सोना महापात्रा की आवाज़ों में। बोल कुमार के थे, वह धुन तैयार की थी विशाल और शेखर ने। और अब लीजिए सुनिए, खेल जगत कार्यक्रम के तहत योग और जीवन शैली विषय पर योग प्रशिक्षक श्री अजीत कुमार दास के साथ ली गई भेंट वार्ता।

0: नमस्कार, खेल जगत कार्यक्रम में सभी खेल प्रेमियों का बहुत बहुत स्वागत है। श्रोताओं, जैसा कि आप सभी जानते ही होंगे कि 21 जून को अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस है। इसी को ध्यान में रखते हुए आज इस कार्यक्रम में हमने बातचीत का विषय रखा है, योग और जीवन शैली। इस मुद्दे पर चर्चा करने के लिए आज हमारे साथ स्टूडियो में उपस्थित हैं आयुष अस्पताल के योग प्रशिक्षक श्री अजीत कुमार दास। अजीत जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका कार्यक्रम में।
1: नमस्कार।
0: आज जिस तरह से हमारी जीवन शैली बदल गई है, भाग दौड़ वाली जिंदगी हो गई है, हर व्यक्ति व्यस्त है, तो सबसे पहले तो ये बताइएगा कि हमारे जीवन में योग का क्या महत्व है।
1: देखिए, योग का महत्व बहुत ज़्यादा है आज के परिप्रेक्ष्य में देखा जाए तो, क्योंकि आज जो हमारे दिनचर्या, जो हम इतना व्यस्त दिनचर्या आज अपनाते हैं, मतलब अपनाना पड़ रहा है हमें, क्योंकि हमारी अपेक्षाएं हैं इतनी, इतने हम व्यस्त रहते हैं कि सुबह उठने के साथ हमें अपने, फिर अपने बच्चों या जो भी हो, जो स्कूल जाने वाले बच्चे अपने तैयार होते हैं, जो भी यंग है अपने कॉलेज के लिए, अपने फील्ड के लिए जाते हैं, निकलते हैं, उसमें उनको इतना समय नहीं मिलता कि अपने लिए कुछ दें। अपने लिए 5 मिनट 10 मिनट का समय भी हम नहीं निकाल पाते, बोलते हम बहुत व्यस्त हैं।
0: व्यस्त है, जी हाँ।
1: तो ये है कि हर एक जीवन में व्यस्तता होती है,
0: हमें चाहे वो छोटा हो या बड़ा,
1: लेकिन अगर स्वस्थ रहना है तो कुछ ना कुछ समय खुद के लिए देना पड़ेगा आपको। जैसे इसमें आपको बहुत सिंपल वे में आप योग को अपना सकते हैं। ऐसा हम मानते हैं कि योग में बहुत सारा हमें एक्सरसाइजेस करनी होती, बहुत समय देना होता है, क्योंकि आज एक हेल्दी इंसान का अगर देखा जाए तो क्या स्टेटस होना चाहिए। हेल्दी इंसान शारीरिक रूप से, मानसिक रूप से, सामाजिक रूप से एवं आध्यात्मिक रूप से भी हेल्दी होना बहुत ज़रूरी है इसमें। तो अगर हम सिर्फ अपने काम में व्यस्त रहेंगे तो काम का स्ट्रेस होगा, हम धीरे धीरे हम उसमें मानसिक विकारों से हम लोग गिरते जाएंगे। तो हम ऐसा करें कि कुछ समय 5 से 10 मिनट या फिर 15 मिनट, हम क्योंकि 15 मिनट तो हम टीवी न्यूज़ देखते हुए बिताते हैं, तो उस समय भी हम अपने आप को दे सकते हैं। उस छोटी सी समय को हम अपने लिए निकाल सकते हैं। इसमें क्या है, आपको थोड़ी सी मेहनत, कुछ दिन की मेहनत करनी पड़ेगी, थोड़ी सी अर्ली मॉर्निंग, जैसे सुबह, जैसे भोर 4 बजे उठे आप, क्योंकि ये जो समय होता है योग अभ्यास का अच्छा मुहूर्त माना जाता है। सुबह 4 बजे या 4:30 बजे आप उठें। सुबह उठने के बाद जो भी आपकी रूटीन है, अपने आप को क्लीन कर लीजिए। क्लीन करने के बाद सिर्फ 5 से 10 मिनट आप योग को दीजिए। योग में इतनी बड़ी चीजें नहीं है, सिर्फ आप कुछ श्वास प्रश्वास की हैं, जो प्राणायाम जिसको कहते हैं, आप उसमें समय दीजिए। कुछ स्ट्रेचिंग एक्सरसाइजेस हैं, अगर आप सीखना चाहें तो आयुष में आके भी आप सीख सकते हो।
0: अजीत जी, ऐसा है कि आपने जैसे कहा कि बड़ा अच्छा मुहूर्त होता है सुबह 4 बजे का, लेकिन अजीत जी जैसा कि आपने कहा कि सुबह 4 बजे का समय जो है योग के लिए बहुत अच्छा होता है, लेकिन बहुत से लोगों के लिए इस समय उठना बड़ा मुश्किल होता है,

0: तो ये योग और किसी समय में नहीं किया जा सकता?
1: देखिए, समय तो है, अगर आप समय निकाल पाते हैं तो शाम के समय भी आप कर सकते हैं, बट उस समय जो होता है अर्ली मॉर्निंग का बात, इसीलिए कहा जाता है कि अगर हम शहरी इलाके में रह रहे हैं, सोचिए, तो नॉइस पोल्यूशन भी होती है, इवनिंग आवर में भी गाड़ी आना जाना, तो वो सारी चीज़ें हैं। अगर अर्ली मॉर्निंग में आप देखें तो बहुत एटमोसफियर जो हमारा बहुत शांत
0: शांत
1: रहता
0: होता
1: है,
0: है,
1: पीसफुल रहता है,
0: जी हाँ,
1: तो उसका फायदा, और जो हमारे उस टाइम पे जो पेड़ पौधे से जो फाइटोकेमिकल्स जो वो छोड़ते हैं, जो वो चीज़ है जो एक देखिए अजीब सा अलग सा खुशबू आपको वातावरण में, तो वो सारी चीज़ उस समय अगर आप करें तो ज़्यादा बेहतर आपको लाभ मिलेगा, क्योंकि उस समय वो अमृत मुहूर्त माना जाता है।
0: जी
1: उस समय आप करें तो ज्यादा बेहतर आपको बेनिफिट मिलेगी। अगर आप समय नहीं निकाल सकते हैं तो इवनिंग में आप कर सकते हैं
0: लेकिन
1: इसको,
0: सुबह का वक्त बहुत अच्छा
1: बहुत
0: होता
1: जी
0: है। अजीत जी, ये बताइएगा कि बहुत से युवा तो जिम वगैरह में जाते हैं फिटनेस के लिए, कई तरह के एक्सरसाइज करते हैं,
1: जी जी
0: स्ट्रेचिंग तमाम करते हैं,
1: जी
0: वो योग से किस तरह से भिन्न है?
1: देखिए, जो जिम जाते हैं, ये जो एक्सरसाइज है, उसमें क्या होता है, जो हमारी मांसपेशियों के ऊपर ज्यादा बर्डन दिया जाता है, तो इसीलिए देखते हैं कि बहुत ज्यादा मतलब बाइसेप्स
0: मसल्स।
1: वगैरह, मसल्स वगैरह, मतलब ये एक यंग जनरेशन के अंदर क्रेज है, मसल्स बनाए, पैक्स वैक्स आए
0: जी
1: बने,
0: जी
1: वो कुछ दिनों के बाद। अब देखिए, कोई युवा अगर जिम जा रहा है, अगर वो 1 महीना छोड़ दिया, अगर वो डिसकंटिन्यू किया है उसे, तो उनका देखिए फिजिक बहुत ही डील डॉल हो जाता है। बट योग में अगर आप, मैं बोलूंगा नहीं कि छोड़ दीजिए, बट अगर छोड़ भी देते हैं तो आपके शरीर में उस तरह के फर्क नहीं पड़ती है, क्योंकि जिम में देखिए ब्रीथ के साथ नहीं होता, योग में क्या होता है कि आप श्वास के साथ कोऑर्डिनेट करके करते हो उसमें। जब आप पीछे झुकते हो कोई भी आसन में, श्वास लेते हो, क्योंकि इसीलिए योग आसन और एक्सरसाइज में यही फर्क होती
0: हम ये कह सकते हैं कि जो एक्सरसाइज वगैरह है वो हमारे जो है फिजिकल जो
1: है
0: हेल्थ है
1: जी,
0: उसको प्रभावित करता है, और योग फिजिकल के साथ साथ हमारे मन को
1: मैं
0: भी
1: जी
0: प्रभावित
1: जी
0: करता
1: बिल्कुल
0: है,
1: बिल्कुल
0: इससे
1: आपने
0: फायदा
1: सही,
0: होता
1: जी
0: है।
1: बिल्कुल,
0: अब ये बताइए कि कोई योग शुरू करना चाहता है तो क्या सावधानी बरते वो?
1: बहुत अच्छी सवाल आपने पूछी है। ये सावधानी आप अपने मुताबिक करिए, अपने शरीर का कंडीशन देखिए,
0: अपनी
1: पहले
0: क्षमता के अनुसार
1: क्षमता के अनुरूप आप करिए। और सबसे पहले है कि आप टीवी देख के अगर करते हैं तो उसको सही तरीके सुने, क्योंकि आजकल बहुत सारे चैनल आ गए जिसमें के बारे में हमेशा बताते जाते हैं,
0: जी
1: तो बट आप देखें उस चीज को सही तरीके से, उसको सुनने का कोशिश करें, अच्छे से सीखे उनसे कि हाँ उन्होंने क्या पॉइंट किया है, वो सही बताते हैं, बट हम जो लेते हैं कभी कभी गलत तरीके से लेते हैं, क्योंकि आयुष अस्पताल में कुछ पेशेंट्स हमेशा डील करते हैं हम, तो देखते कुछ कुछ तरीका उनका गलत होता है, तो बोला मैं तो टीवी देख के कर रहा हूँ, तो हम उनको एडवाइस करते हैं आप टीवी देख के करते भी हैं तो उस पर ध्यान दीजिए कि वो क्या बता रहे हैं उन, तो ये पहली चीज है, क्योंकि योग ऐसा है ना, पर्सन टू पर्सन, गुरु शिष्य परंपरा है ये,
0: जी
1: अगर आप किसी के सानिध्य में अगर करते हैं तो ज्यादा अच्छा होता
0: यानी
1: है,
0: किसी प्रशिक्षक के
1: प्रशिक्षक के गाइडेंस में
0: इसमें
1: करिए,
0: सीखे।
1: ये
0: हाँ
1: पहली चीजें हैं।
0: जी
1: उसके बाद एक स्थिरता के साथ अगर करें, हम कहीं पर बैठे अच्छे से एक पोजीशन में समतल स्थान पे, आप उस पे कुछ दरी या मैट, जो योग मैट होती है वो
0: जी
1: बिछा के अगर आप बैठ के करें तो ज्यादा बेहतर। आपका ड्रेस जो है वो बहुत लूज होना चाहिए, कहीं पर आपको तनाव ना महसूस हो,
0: जी
1: खिंचाव ना महसूस हो, आप अच्छी
0: जी
1: तरीके से उसका अभ्यास कर सके,
0: कंफर्टेबल होना चाहिए
1: कंफर्टेबल होना
0: ड्रेस।
1: चाहिए, तो ये सारी चीजें हैं। और इसमें अगर योग अभ्यास करने के बाद तुरंत आपको कुछ खाना नहीं चाहिए,
0: जैसा कि आपने कहा कि योग अभ्यास के तुरंत बाद कुछ खाना पीना नहीं चाहिए, योग अभ्यास से पूर्व कुछ खा पी सकते हैं?
1: नहीं एक्चुअली आप अगर योग अभ्यास करना चाहते हैं तो आपका एम्प्टी स्टमक होना चाहिए, ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज है,
0: जी
1: क्योंकि क्या होती है ना कि अगर एम्प्टी स्टमक नहीं है, कुछ आसन आप परफॉर्म कर रहे हैं, कुछ पेट में दबाव वाली, तो आपको मे बी वॉमिट हो सकता है
0: जी
1: प्रेशर की वजह से, या फिर आपको पेट में थोड़ी सी दर्द हो सकती है, तो ये दिक्कतें आ सकती है। और योग अभ्यास करने के बाद भी 1.5 से 2 घंटे के बाद ही आप कुछ सॉलिड फूड ले रहे हैं तो कम से कम 1.5 से 2 घंटे बाद सॉलिड फूड, अगर लिक्विड ले रहे हैं तो कम से कम 45 मिनट के बाद ही आप जैसे जूसेस वगैरह आप ले सकते
0: अगर
1: हो।
0: हम शाम की बात करें,
1: जी
0: कोई बहुत व्यस्त है, वो वाकई
1: बस
0: सुबह नहीं कर पा रहा है योगाभ्यास, वो शाम को करना चाहता है,
1: जी
0: तो योग करने के कितने घंटे पहले वो खाना खाए?
1: हाँ, ये एक मान्यता के साथ ऐसे कहा जाता है कि कम से कम 3 घंटा, ज्यादा से
0: तीन
1: 4 घंटे के
0: घंटे
1: बाद आप योग अभ्यास कर सकते हैं। और ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज है कि हम अपने दिनचर्या में बदलाव जरूर लाएं, क्योंकि देखिए भोजन का निर्दिष्ट समय अगर हम नहीं रखते हैं,
0: जी जी
1: अगर हम सुबह 10 बजे नाश्ता करें, 2 बजे हम लंच करें, डिनर जो है हम 10 बजे करें, तो हमारा ये लाइफ स्टाइल बिगड़ गया। देखिए तभी जाके क्या होता है, हमारा पेट गड़बड़ होती है, तो सारी बीमारियों का जड़ जो है वो पेट से ही होती है, योग में
0: अगर
1: हम
0: हम आज की
1: मानते।
0: बात करें तो ज्यादातर लोग यही करते हैं,
1: जी
0: दिन में उनका खाने का समय बहुत देर हो जाता है, रात में भी बहुत देर में खाते पीते

0: देखते हैं,
1: जी बिल्कुल,
0: तो इससे क्या है पूरी दिनचर्या बिगड़ जाती है, उनका स्वास्थ्य बिगड़ जाता है।
1: ये इसीलिए के बोलते हैं ना योग में कि युक्त आहार विहार करना है, आहार युक्त करना है, सही समय पे करना है, विहार बोलने से आपका जो रूटीन वर्क है उसको भी सही तरीके से आप एक शेड्यूल्ड वे में करिए उसे, तो ये चीज़ है बहुत इंपॉर्टेंट है।
0: आज की भाग दौड़ वाली जिंदगी में ज्यादातर लोग तनाव ग्रसित हैं,
1: युवा ज्यादा
0: तो जी
1: हैं
0: बहुत ज्यादा
1: ज्यादा
0: है,
1: हैं
0: और बड़े जल्दी निराश भी हो जाते हैं। तो किसी समस्या या तनाव से जूझने की कितनी ताकत मिलती है अगर कोई योग अभ्यास करे?
1: 100% मेरा मानना है, क्योंकि युवा में मानसिक विकार क्यों बढ़ रहे हैं, स्ट्रेस आपको दवा लेने से नहीं कम होगी, दवा लेने से आप सो सकते हो बट जैसे नींद से उठोगे आप फिर से तनावग्रस्त हो जाएंगे, बट योग में क्या है आपके मन को एकदम शांत करेगी और आपके अंदर एक विल पावर आएगी कि इस जो
0: जी
1: चैलेंज है मेरे सामने
0: जी
1: मैं उसको कोप अप कर सकता हूं, मैं उसको सब्सिडाइज कर सकता हूं, मैं उस चैलेंज को।
0: योग किसी व्यक्ति की मनस्थिति को कितना प्रभावित करता है?
1: मन जो है एक चंचल घोड़ा है जिसको लगाम लगाना पड़ेगा, क्योंकि मन चंचल होता है तो वो चंचलता को हमें कंट्रोल में
0: कंट्रोल,
1: लेके आना है, तो इसीलिए ध्यान है हमारे इसमें योग में, प्राणायाम है, कुछ आसनस आप कर सकते हो बट ध्यान है प्राणायामस है, इसमें आपको बहुत ज्यादा फायदा, क्योंकि मानसिक विकारों को मानसिक जो असंतुलन है उसको संतुलित करने के लिए प्राणायाम और योग का बहुत अच्छा रोल है।
0: अब चलते चलते आप हमारे श्रोताओं से क्या कहना चाहेंगे?
1: पहले तो मैं सबको एक चीज के लिए निमंत्रण या फिर आमंत्रण करना चाहूंगा, जो आने वाले अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस के लिए आप बढ़ चढ़ के अपने लोकलिटी में कहीं ना कहीं पर आपको दिख जाएगी सेंटर हमारे तरफ से, या फिर कहीं पर भी आप उस पर जाइए, जरूर पार्टिसिपेट करिए वो। और जो योग के बारे में जो मैं बताना चाहता हूँ कि आप कुछ समय निकालिए, बहुमूल्य समय में से थोड़ी सी समय योग योग को दीजिए, तो देखिए आपके जीवन में कितने परिवर्तन आते हैं आप खुद एहसास कर पाएंगे, खुद महसूस कर पाएंगे।
0: तो अजीत कुमार दास जी, आज आप कार्यक्रम में आए, हम समझते हैं कि हमारी जो बातचीत हुई इससे सुनकर बहुत से लोग अपने लिए समय निकालेंगे, योग अभ्यास करेंगे और अपना जीवन व्यवस्थित रखते हुए एक स्वस्थ जीवन जिएंगे। आज आप कार्यक्रम में आए, समय देने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।
1: धन्यवाद।
2: अभी आप खेल जगत कार्यक्रम के तहत योग और जीवन शैली विषय पर योग प्रशिक्षक श्री अजीत कुमार दास के साथ ली गई भेंट वार्ता सुन रहे थे। इनसे भेंट कर रही थी जयशीला। श्रोताओं, जब कोई सही व्यक्ति जीवन में आता है तो रास्ते नहीं बदलते, उन्हें देखने का नज़रिया बदल जाता है। कुछ मुलाकातें किस्मत लिखती हैं और कुछ मुलाकातें हमें अपनी किस्मत खुद लिखना सिखा देती है। अच्छे लोग हमारी ज़िंदगी में आकर सिर्फ साथ नहीं देते बल्कि हौसलों को नई उड़ान भी देते हैं।

0: जब आप बच्चों के आसपास धूम्रपान करते हैं तो उन्हें हजारों ऐसे केमिकल से प्रभावित करते हैं जिनसे उनके जीवन को खतरा है। बीड़ी सिगरेट के धुएं में साइनाइड और कार्बन मोनोऑक्साइड जैसे कई जहरीले तत्व होते हैं जो स्वास्थ्य की गंभीर समस्याओं को जन्म देते हैं, जैसे कानों में दर्दनाक संक्रमण, गंभीर अस्थमा और जानलेवा निमोनिया। बच्चों का जन्म के समय कम वजन बीड़ी सिगरेट के धुएं की वजह से भी होता है और ये अचानक होने वाली शिशु मृत्यु के जोखिम को दुगना कर देता है। इसीलिए आज ही बीड़ी सिगरेट पीना छोड़ें।
1: तेज बुखार, पसीना आना, सिर और शरीर में दर्द, उल्टी और कमजोरी,
2: ये मलेरिया के लक्षण हो सकते हैं।
1: मलेरिया संक्रमित मादा एनोफिलीज मच्छर के काटने से फैलता है।
2: समय पर इलाज न मिलने पर ये बीमारी गंभीर रूप ले सकती है।
1: सोते समय मच्छरदानी का उपयोग करें।
2: घर और आसपास पानी जमा न होने दें।
1: पानी की टंकियों और बर्तनों को ढककर रखें।
2: अगर बुखार हो तो रक्त की जाँच करवाएं।
1: अब हम कर सकते हैं।
2: अब हमें करना होगा।
1: मलेरिया को मिलकर हराना होगा।
2: स्वस्थ जीवन अपनाएं, मलेरिया को दूर भगाएं।
1: स्टेट हेल्थ सोसाइटी द्वारा जनहित में जारी।
3: QR कोड स्कैन करो, 5,000 का कैशबैक पाओ। वाह, दिल बन गया।
4: UPI पिन एंट्रिंग सिर्फ पैसे भेजने के लिए है।
5: RBI कहता है,
4: जानकार बनिए, सतर्क रहिए।
6: सपनों को हकीकत में बदलने के लिए सही समय पर सही कदम उठाना जरूरी है। भारतीय वायुसेना में कमीशन्ड ऑफिसर बनने के लिए AFCAT 2 of 2026 के आवेदन 20 मई से खुले हैं। विवरण के लिए विजिट करें afcat.edcil.co.in पर।
7: श्रोताओं, शब्दों में मिठास हो तो केवल कानों तक नहीं सीधे दिल तक पहुंच जाते हैं। अच्छे शब्द किसी के चेहरे पर मुस्कान ला सकती है और कठिन से कठिन दिन को भी आसान बना सकते हैं।

श्रोताओं, ये था तुलसी रैना की आवाज़ में आयशा फिल्म का गीत। जावेद अख्तर के लिखे गीत को संगीत से सजाया था अमित त्रिवेदी ने। दोस्तों, वक्त की रफ्तार को कोई रोक नहीं पाया, जिसने इसकी कद्र की उसने मंजिल को है पाया। हर पल अनमोल है, इसे यूं ही ना गवाइए, हंसते मुस्कुराते हर लम्हे को जीते जाइए। और इसी के साथ ही कार्यक्रम गुड मॉर्निंग अंडमान अब यहीं समाप्त होता है। और अब दीजिए अपनी दोस्त श्री विद्या को इस कार्यक्रम से इजाज़त। नमस्कार। हम आकाशवाणी के श्री विजयपुरम केंद्र से बोल रहे हैं। सुबह के 8 बजने वाले हैं। अब समाचारों का प्रसारण होगा, जिसे हम अपने दिल्ली केंद्र से रिले करेंगे। कृपया प्रतीक्षा कीजिए।

0: के आया। मैं देखकर हैरान रह गया कि वो लोग दिन भर एसी चलाते हैं, रोज वॉशिंग मशीन चलाते हैं, घर में दो दो फ्रिज हैं, फिर भी उसका बिजली बिल पता है कितना आता है? जीरो। मैंने पूछा तो भतीजा बोला, चाचा जी सब ऊपर वाले की दया है। मतलब सोलर पैनल की। मैंने सोचा अब तो लगवाना ही पड़ेगा।
1: पीएम सूर्य घर मुफ्त बिजली योजना, जुड़ने के लिए रजिस्टर करें pmsuryaghar.gov.in पर।
2: हर घर सूर्य घर।
3: नमस्कार, आकाशवाणी से समाचार प्रभात के साथ मैं मुकेश कुमार।

0: गृह मंत्री अमित शाह आज नई दिल्ली में भूमि पत्तन प्रबंधन प्रणाली का शुभारंभ करेंगे। अंतर्राष्ट्रीय ब्रिक्स कृषि सम्मेलन आज से इंदौर में शुरू होगा। मस्कत में भारतीय दूतावास ने हॉर्मुज जलडमरू मध्य में एमटी मारिवेक्स जहाज में लगी आग की घटना में सभी 24 भारतीय नाविकों के सुरक्षित होने की पुष्टि की। ईरान और इसराइल ने एक दूसरे पर हमले रोकने की घोषणा की। युद्ध विराम का उल्लंघन होने पर फिर से जवाबी कार्रवाई की चेतावनी भी दी। अमरीका की संघीय अदालत ने राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के H-1B वीजा के लिए प्रस्तावित $1,00,000 का शुल्क रद्द किया। और भारत ए और श्रीलंका ए क्रिकेट टीमों के बीच त्रिकोणीय एक दिवसीय श्रृंखला का पहला मैच आज श्रीलंका के दाम्बुला में। गृह मंत्री अमित शाह आज नई दिल्ली में भूमि पत्तन प्रबंधन प्रणाली का शुभारंभ करेंगे। इसका उद्देश्य तकनीकी सहायता से सीमा पार व्यापार और यात्रियों की आवाजाही अधिक सुगम, पारदर्शी और सुरक्षित बनाना है। ब्यौरा हमारी संवाददाता से।
1: गृह मंत्रालय ने कहा है कि ये प्लेटफॉर्म व्यापार सुगमता, संपर्क, राष्ट्रीय सुरक्षा को मजबूत करने और 2047 तक विकसित भारत के संकल्प के अनुरूप है। LPMS एक डिजिटल प्लेटफॉर्म है जिसे भूमि बंदरगाहों के संचालन को एकीकृत प्रणाली में समाकलित करने के लिए डिजाइन किया गया है। ये प्रणाली कार्गो और यात्री प्रसंस्करण के लिए स्लॉट बुकिंग, भुगतान, ट्रैकिंग और सिंगल विंडो क्लीयरेंस सहित संपूर्ण डिजिटल कार्य प्रभावी प्रदान करेगी। इस अवसर पर गृह मंत्री मेघालय के दावकी और त्रिपुरा के श्रीमंतपुर लैंडपोर्ट में नव विकसित हितधारक आवास सुविधाओं का भी उद्घाटन करेंगे, जिससे सीमा प्रबंधन और कर्मियों के लिए बुनियादी ढांचागत सहायता मजबूत होगी। शिवांग मिश्रा, आकाशवाणी समाचार, दिल्ली।
0: अंतर्राष्ट्रीय ब्रिक्स कृषि सम्मेलन आज से मध्य प्रदेश के इंदौर में शुरू हो रहा है। सम्मेलन में 21 देशों के कृषि मंत्री, वरिष्ठ अधिकारी और विशेषज्ञ हिस्सा ले रहे हैं। इनमें ब्राजील, चीन, रूस और दक्षिण अफ्रीका शामिल हैं। कृषि मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने कहा है कि बैठक में मुख्य रूप से किसानों की आय, रोजगार, आजीविका, कृषि ऋण और बाजार तक पहुंच बढ़ाने पर चर्चा होगी।
2: खाद्य सुरक्षा, पोषण और आजीविका, खाद्य सुरक्षा सुनिश्चित करनी है, भरपूर खाद्यान्न मिले, सुरक्षित और पौष्टिक भोजन, और किसान की आय भी बढ़े और जीवन स्तर में भी सुधार हो। कृषि व्यापार और सहयोग, ये प्राथमिकता एक दूसरे देश में व्यापार की संभावनाएं भी बढ़े और सहयोग भी बढ़े, आपस में निवेश भी आए, टेक्नोलॉजी का आदान प्रदान भी हो, बाजार तक पहुंच भी आसान बने एक दूसरे देश में, ताकि मिलकर एक साझा प्रगति को बढ़ावा दे सके।
0: हमारे संवाददाता ने बताया है कि सम्मेलन का उद्देश्य कृषि क्षेत्र में सहयोग, नवाचार और खाद्य सुरक्षा मजबूत करना है।
3: भारत की अध्यक्षता में आयोजित इस सम्मेलन में ब्राजील, चीन, रूस, दक्षिण अफ्रीका सहित कुल 21 देशों के कृषि मंत्री, वरिष्ठ अधिकारी और विशेषज्ञ भाग लेंगे। 13 जून तक चलने वाले इस सम्मेलन की शुरुआत कृषि कार्य समूह की बैठकों से हो रही है। सम्मेलन में खाद्य सुरक्षा, कृषि नवाचार, जलवायु अनुकूल खेती, कृषि व्यापार और छोटे किसानों के सशक्तिकरण जैसे अहम विषयों पर चर्चा होगी। 12 जून को कृषि मंत्रियों का विशेष संवाद आयोजित होगा, जिसका फोकस लघु किसानों, महिलाओं एवं युवाओं के माध्यम से भविष्य की खाद्य सुरक्षा पर रहेगा। अभिनव गोयल, आकाशवाणी भोपाल।
0: स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री जगत प्रकाश नड्डा आज नई दिल्ली में प्रधानमंत्री सुरक्षित मातृत्व अभियान के 10 वर्ष पूरे होने के अवसर पर राष्ट्रव्यापी समारोहों का शुभारंभ करेंगे। इस अभियान का उद्देश्य सुरक्षित गर्भावस्था और मातृत्व को सुनिश्चित करना है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 9 जून 2016 को इस योजना की शुरुआत की थी। समारोह के दौरान श्री नड्डा 75 रूपये का स्मारक सिक्का और 5 रूपये का डाक टिकट भी जारी करेंगे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के दूरदर्शी नेतृत्व में पिछले 12 वर्ष में सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास और सबका प्रयास के आधार पर भारत में उल्लेखनीय प्रगति हुई है। आकाशवाणी समाचार, मोदी सरकार के 12 वर्षों के विभिन्न प्रमुख क्षेत्रों में किए गए प्रयासों पर एक विशेष श्रृंखला प्रस्तुत कर रहा है। आज के अंक में हम स्वास्थ्य सेवाओं के क्षेत्र में सरकार के प्रयासों की जानकारी देंगे।
4: पिछले 12 वर्षों में केंद्र सरकार ने देश की स्वास्थ्य व्यवस्था को काफी मजबूत किया है, जिससे यह पहले की तुलना में अधिक सुलभ, किफायती और बेहतर गुणवत्ता वाली बन गई है। 2018 में प्रधानमंत्री मोदी ने दुनिया की सबसे बड़ी स्वास्थ्य बीमा योजना आयुष्मान भारत, प्रधानमंत्री जन आरोग्य

0: योजना की शुरुआत की। इस योजना के तहत सामाजिक आर्थिक रूप से कमजोर गरीब परिवारों को हर साल प्रति परिवार 5 लाख रुपए तक का मुफ्त स्वास्थ्य बीमा दिया जा रहा है। इस योजना के तहत अब तक 44 करोड़ से अधिक आयुष्मान कार्ड बनाए जा चुके हैं और 1,80,000 करोड़ रुपए से अधिक का इलाज उपलब्ध कराया गया। वहीं सरकार ने अक्टूबर 2024 में इस योजना का विस्तार करते हुए आयुष्मान भारत वय वंदन योजना की शुरुआत की, जिसके तहत 70 वर्ष से अधिक उम्र के सभी बुजुर्गों को भी स्वास्थ्य बीमा कवर दिया गया। आकाशवाणी समाचार से बात करते हुए दिल्ली के रोहित सिंह ने बताया कि इस कार्ड से अब वे निजी अस्पतालों में भी इलाज करा सकते हैं।
1: आयुष्मान कार्ड से मुझे बहुत फायदा होगा, क्या होता है मैं प्राइवेट हॉस्पिटल में भी इलाज करवा सकूंगा अपना और अपनी फैमिली का, इससे मुझे मतलब 5 लाख रुपए मिलेगी।
0: वहीं सरकार ने हर मोहल्ले में प्राथमिक स्वास्थ्य सेवा देने के लिए 1,86,000 आयुष्मान आरोग्य मंदिर भी स्थापित किए। इसके अलावा प्रधानमंत्री भारतीय जन औषधि परियोजना के तहत भी लोगों को सस्ती और अच्छी गुणवत्ता वाली जेनरिक दवाइयाँ उपलब्ध कराई जा रही है। आकाशवाणी समाचार से बात करते हुए बिहार के दिलीप कुमार ने बताया कि जन औषधि केंद्रों पर दवाइयां बहुत कम कीमत पर मिल जाती है।
2: यहां पर बहुत ही सस्ता है, 100 का दवाई 10 रुपए में मिल रहा है, बहुत ही हमको रिलीफ मिल रहा है, दवाई काम भी कर रहा है और हमारा रुपया का बहुत बचत हो रहा है। मैं गरीब आदमी आराम से दवाई खा के ठीक ठाक रह रहा हूँ।
0: सरकार ने बढ़ती स्वास्थ्य आवश्यकताओं को ध्यान में रखते हुए मेडिकल शिक्षा का भी विस्तार किया है। 2014 में जहां सिर्फ 8 एम्स थे, अब वह बढ़कर 23 हो गई है। इसके अलावा मेडिकल कॉलेजों की संख्या भी 387 से बढ़कर 818 हो गई है। वहीं पारंपरिक चिकित्सा पद्धति को बढ़ावा देने के लिए केंद्र सरकार ने नवम्बर 2014 में आयुष मंत्रालय की स्थापना की। देश भर में अब तक कुल 942 आयुष संस्थान स्थापित किए जा चुके हैं। पिछले 12 वर्षों में केंद्र सरकार ने अस्पतालों के विस्तार और प्राथमिक स्वास्थ्य सेवाओं को मजबूत कर स्वास्थ्य सेवाओं को हर व्यक्ति तक अधिक सुलभ और बेहतर बनाया है। दीपेंद्र कुमार, आकाशवाणी समाचार, दिल्ली।
3: कोयला मंत्री जी किशन रेड्डी ने कहा है कि नरेंद्र मोदी सरकार के 12 वर्ष में भारत के कोयला और खनन क्षेत्र में बड़ा बदलाव हुआ है। हैदराबाद में कल श्री रेड्डी ने बताया कि भारत ने 1 अरब टन कोयला उत्पादन का रिकॉर्ड हासिल कर दुनिया का दूसरा सबसे बड़ा कोयला उत्पादक देश बन गया है। उन्होंने कहा कि कोयला क्षेत्र से लगभग 5 लाख लोगों को प्रत्यक्ष और 25 लाख लोगों को अप्रत्यक्ष रोजगार मिल रहा है। विशाखापट्टनम इस्पात संयंत्र में आग की घटना में 8 लोगों की मौत हो गई है और 6 अन्य घायल हो गए हैं। 2 लोगों की हालत गंभीर है। इस्पात मंत्रालय के अनुसार यह हादसा पिघले हुए इस्पात की ढलाई प्रक्रिया के दौरान हुआ। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू, उपराष्ट्रपति सीपी राधाकृष्णन और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने घटना पर शोक व्यक्त किया है।
4: राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू, उपराष्ट्रपति सीपी राधाकृष्णन और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने घटना पर शोक व्यक्त किया है। प्रधानमंत्री ने प्रत्येक मृतकों के निकटतम परिजन को 2-2 लाख रुपए और घायलों को 50-50 हजार रुपए की अनुग्रह राशि देने की घोषणा की है। वहीं इस्पात मंत्री एचडी कुमार स्वामी और नागर विमानन मंत्री राम मोहन नायडू ने कल रात दुर्घटना स्थल का दौरा किया। श्री कुमार स्वामी ने मृतकों के परिजनों के लिए 25 लाख और घायलों को 10 लाख रुपए की सहायता राशि तथा बच्चों को निशुल्क शिक्षा देने की घोषणा की है। आंध्र प्रदेश के मुख्यमंत्री एन चंद्रबाबू नायडू ने हादसे की जांच के लिए एक विशेष समिति गठित की है। समाचार कक्ष से मैं चाहत सिंह।
3: ये समाचार आकाशवाणी से प्रसारित किए जा रहे हैं। ताजा समाचार जानने के लिए आप हमारे सोशल मीडिया हैंडल @AIRNewsHindi को फॉलो कर सकते हैं। समाचार प्रभात में आपका फिर स्वागत है। ओमान के मस्कत में भारतीय दूतावास ने पुष्टि की है कि होर्मुज जलडमरू मध्य में एमटी मेरिवेक्स जहाज पर लगी आग के बाद 24 भारतीय नाविकों को सुरक्षित बचा लिया गया है। दूतावास ने त्वरित कार्रवाई के लिए ओमान का आभार भी जताया है। पत्तन पोत परिवहन और जलमार्ग मंत्रालय के प्रवक्ता उपेश कुमार शर्मा ने बताया था कि दोपहर करीब 1:30 बजे जहाज पर आग लगने की सूचना मिली। हादसे की जांच जारी है। अमरीका की एक संघीय अदालत ने H-1B वीजा आवेदनों पर लगाए गए 1 लाख अमरीकी डॉलर के शुल्क को अवैध करार दिया है। ये शुल्क राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के आदेश के अंतर्गत प्रस्तावित किया गया था। अदालत ने कहा कि संसद की मंजूरी के बिना ऐसा शुल्क नहीं लगाया जा सकता। H-1B वीजा के लिए जरिए अमरीकी कंपनियां दुनिया भर के कुशल पेशेवरों को नौकरी देती हैं। भारतीय मूल के कई संगठनों ने इस फैसले का स्वागत किया है। ईरान और इसराइल के बीच एक दूसरे के खिलाफ हमले रोकने की घोषणा

0: हो गई है। अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने कहा है कि दोनों पक्ष तत्काल संघर्ष विराम और शांति वार्ता की दिशा में आगे बढ़ रहे हैं, लेकिन दोनों देशों ने चेतावनी दी है कि युद्ध विराम का उल्लंघन होने पर यह प्रक्रिया फिर से बाधित हो सकती है। भारत ए और श्रीलंका ए क्रिकेट टीमों के बीच एक दिवसीय त्रिकोणीय श्रृंखला का पहला मैच आज श्रीलंका के डाम्बुला में खेला जाएगा। मैच भारतीय समय के अनुसार सवेरे 10 बजे से शुरू होगा। श्रृंखला में अफगानिस्तान ए की टीम भी शामिल है। भारत ए का अगला मैच अफगानिस्तान ए से बृहस्पतिवार को होगा। फाइनल 21 जून को होगा। आईसीसी महिला टी20 क्रिकेट विश्व कप 2026 के पहले अभ्यास मैच में भारत ने वेस्टइंडीज को 26 रन से हरा दिया। भारत ने पहले बल्लेबाजी करते हुए निर्धारित 20 ओवर में 8 विकेट पर 179 रन बनाए। भारतीय फूलमाली ने नाबाद 56 रन और स्मृति मानधना ने 39 रन का योगदान दिया। जवाब में वेस्टइंडीज की टीम 20 ओवर में 8 विकेट पर 153 रन ही बना सकी। मौसम विभाग ने उत्तर पश्चिमी और उत्तरी राज्यों तथा पश्चिमी राजस्थान और विदर्भ में आज लू चलने की आशंका व्यक्त की है। कोंकण और गोवा, ओडिशा, तमिलनाडु, पुदुचेरी और काराईकल में दिन भर गर्म और उमस भरा मौसम रहने का अनुमान है। तटीय कर्नाटक, केरलम, माहे और उत्तरी तथा दक्षिणी आंतरिक कर्नाटक में आज तेज वर्षा की संभावना है। ये समाचार हमारी वेबसाइट www.newsoneair.gov.in और हमारे न्यूज ऑन एआईआर मोबाइल ऐप पर भी उपलब्ध हैं। और अब आज के समाचार पत्रों की सुर्खियों के साथ हैं जया भारती।
1: धन्यवाद मुकेश। तृणमूल कांग्रेस के सांसदों में बगावत की खबर सभी अखबारों में प्रमुखता से है। नवभारत टाइम्स की सुर्खी है, टीएमसी में टूट, 20 सांसदों का अलग गुट एनडीए के साथ। पत्र के अनुसार काकोली घोष की अगुवाई में अलग सीटिंग की भी मांग। दैनिक जागरण ने तृणमूल में एक और टूट शीर्षक से संपादकीय में लिखा है, जैसी आशंका थी तृणमूल कांग्रेस के लोकसभा सदस्यों ने भी ममता बैनर्जी के खिलाफ बगावत कर दी है। इससे पहले पार्टी के 80 में से 60 विधायक अलग गुट बनाकर नेता प्रतिपक्ष का चयन कर चुके हैं। पंजाब केसरी ने विपक्षीय एकता का अंतर विरोध शीर्षक से संपादकीय में लिखा है, हाल में 5 राज्यों में विधानसभा चुनाव में भाजपा को मिली शानदार सफलता बताती है कि इंडिया गठबंधन में इतनी भी कुव्वत नहीं है कि उसके सहयोगी दलों के नेता एक साझा मंच पर इकट्ठे होकर भाजपा को ललकार सके। हिंदुस्तान ने सेना प्रमुख जनरल उपेंद्र द्विवेदी को का साक्षात्कार देते हुए लिखा है, चीन से सिर्फ उम्मीद के भरोसे शांति संभव नहीं, थिएटर कमान पर भी सहमत। जनसत्ता के अनुसार इसराइल और ईरान ने एक दूसरे पर हमले किए, 8 अप्रैल के बाद यह गंभीर झड़प, ट्रंप की अपील के बाद दोनों देशों ने किया संघर्ष विराम। पत्र के अनुसार भारत ने नागरिकों को सलाह देते हुए लिखा है, ईरान और इसराइल छोड़े भारतीय और यात्रा भी न करें। अमर उजाला ने दिया है, वायुसेना के हेलीकॉप्टर पहुंचाएंगे नीट के प्रश्न पत्र, पहली बार सरकारी प्रोफेसर और शिक्षकों ने तैयार किया पेपर। बाहरी को जिम्मेदारी नहीं, लॉजिस्टिक्स सेंटर से परीक्षा केंद्र तक जीपीएस से निगरानी। वीर अर्जुन ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के हवाले से लिखा है, पिछले 12 वर्ष में भारत में कई परिवर्तन आए। देशबंधु की सुर्खी है, कल्याणकारी योजनाओं से 12 वर्ष में 25 करोड़ लोग गरीबी से बाहर निकले।
0: और अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। गृह मंत्री अमित शाह आज नई दिल्ली में भूमि पत्तन प्रबंधन प्रणाली का शुभारंभ करेंगे। अंतर्राष्ट्रीय ब्रिक्स कृषि सम्मेलन आज से इंदौर में शुरू होगा। मस्कत में भारतीय दूतावास ने हॉर्मुज जलडमरू मध्य में एमटी मरवेक्स जहाज में लगी आग की घटना में सभी 24 भारतीय नाविकों के सुरक्षित होने की पुष्टि की। ईरान और इसराइल ने एक दूसरे पर हमले रोकने की घोषणा की। अमेरिका की संघीय अदालत ने राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के H-1B वीजा के लिए प्रस्तावित $1,00,000 का शुल्क रद्द किया। और भारत ए और श्रीलंका ए क्रिकेट टीमों के बीच त्रिकोणीय एक दिवसीय क्रिकेट श्रृंखला का पहला मैच आज डाम्बुला में। इसके साथ ही समाचार प्रभात का ये अंक समाप्त हुआ। नमस्कार।
2: आकाशवाणी प्रेजेंट्स मॉर्निंग न्यूज। गुड मॉर्निंग, आई एम सरबजीत कौर। द हेडलाइंस। Union Home Minister Amit Shah to launch Land Port Management System in New Delhi today. 5-day BRICS Agriculture Ministers meeting to begin today in Indore, Madhya Pradesh. Indian Embassy in Muscat confirms rescue of all 24 Indian seafarers aboard MT Merivex after fire incident south of Strait of Hormuz. Iran and

0: in this country, and in the last decade, how much of extra effort is being put in by the government or across the pillars Mr. Anand mentioned in particular, because they are multi-pronged. As far as you said, what are the three takeaways? I mean, there could be many for different people, but I think some of the logistical issues that have been problematic for this country is to ensure irrigation. We are largely still rain-fed irrigation, so the government has been addressing this in multiple, including micro-irrigation, and one of the things is per drop more crop, which is talking about micro irrigation drip. And this has been again going on for almost a little over two decades, because I remember way back in the year 2000 when Mr. Atal Bihari Vajpayee was the prime minister, he sent a mission under then I think Mr. Chandrababu Naidu to work on this. So it has been a constant work in progress that there. I think that one of the technological driven aspects is the Namo Drone DV, which is now using modern technology, as Mr. Anand mentioned about ENAM, using the technology for market access. Now you're using the drone technology by training women to operate as a pesticides, help them in modern farming.
1: Yes.
0: Lowering the cost, because agriculture, we know, remains a labor-intensive sector.
1: Yes.
0: And increasingly, the hands get costly, because when you employ more people, obviously the farm cost goes. So government is mix and match kind of a thing, how to use technology and how to bring a better thing. So I think these are a couple of issues, but I also believe the larger aspect is the Agriculture Infrastructure Fund, which has a massive outlay to catalyze the creation of post-harvest management infrastructure, cold chains, community farming. So these are still progresses, but these are sectoral reforms, I mean, reforms within the sector that the government is looking at the problems that have been affecting at this particular sector.
1: ओके मिस्टर मिश्रा, आपके पास आते हैं. जो मैंने अभी मिस्टर आनंद मिस्टर प्रसाद से पूछा, वही प्रश्न मैं आपसे भी पूछना चाहूंगी कि पिछले 12 वर्षों में जिस तरह से किसानों का सशक्तिकरण हुआ है, हमारा जो कृषि क्षेत्र है उसका मजबूतीकरण हुआ है, जो हम देख रहे हैं प्रोडक्शन में, प्रोडक्टिविटी फिगर्स में, आप हमें बता सकते हैं कि कौन से आप ऐसे प्रमुख दो तीन इनिशिएटिव्स जिनको आप सबसे महत्वपूर्ण आंकते हैं, जो उठाए गए हैं इस दौरान एग्रीकल्चरल पॉलिसी के डायरेक्शन?
2: एक तो सबसे बड़ा मुझे लगता है जो 12 साल में सरकार ने उठाया था, वो है एमएसपी का फिक्सेशन. पहले एमएसपी का फिक्सेशन सारे फैक्टर्स को आधार करके लिया जाता था, जिसमें इंटरनेशनल प्राइसेस क्या है, डोमेस्टिक प्राइसेस क्या है, उसमें इन्फ्लेशन कितना है, उसका डिमांड सप्लाई सब कुछ देखा जाता था. आज भी वही फैक्टर जरूर है, लेकिन उन्होंने डिसाइड किया 2018 में कि एमएसपी जो होगा वो मिनिमम 50% प्रॉफिट बेस्ड ऑन द कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन होगा. और 2018 से पहले आप देख लीजिए, बहुत सारे आर्टिकल्स आपको मिल जाएंगे जो लोग बताते थे कि ये इम्पॉसिबल है, ऐसा गवर्नमेंट फिक्स कर ही नहीं सकता
1: जी,
2: क्योंकि पूरा बोझ सरकार के ऊपर आएगा, सरकार को खरीदना पड़ेगा. लेकिन 2018 में जब लिया, आज देख लीजिए पॉसिबल है सबके सामने. 8 साल हो गया, सरकार हर साल मिनिमम 50% एंश्योर करके एमएसपी डिक्लेयर कर रही है. शुरुआत में जरूर जो मार्केट प्राइस था थोड़ा सा ज्यादा एमएसपी से नीचे बिका, लेकिन आज जो देखिएगा, ये खरीफ और रबी सीजन गया है, इसमें जो एमएसपी से नीचे बिक भी रहा है वो ज्यादा डिफरेंस नहीं है. पहले तो 30% तक शुरुआत में थी, क्योंकि मार्केट प्राइस को एडजस्ट होने में टाइम लगता है, लेकिन आज मार्केट प्राइस भी एडजस्ट हो चुका है, फार्मर को बेटर प्राइस मिला है, उसमें कोई दो राय नहीं है. कुछ कुछ चीजों में एमएसपी नहीं मिल रहा है, ज्यादातर इस साल की बात करूं तो कई सारे फसल में एमएसपी से ऊपर मिला है. और मस्टर्ड का देख लीजिए, अभी मस्टर्ड का सीजन है, एमएसपी से ऊपर है. चना का देख लीजिए, चना ऊपर है. व्हीट का तो सरकार खुद ही 40-45% प्रोक्योरमेंट कर रही है एमएसपी पे, तो मार्केट प्राइस हमेशा ऊपर रहता है. इस साल कुछ कुछ स्टेट में थोड़ा थोड़ा, मतलब 50-100 रुपए नीचे बिकने की रिपोर्ट आई थी, लेकिन आज वहां पे भी ऊपर आ गया है प्राइस, मार्केट प्राइस. तो लगभग सारे जो रवि क्रॉप्स है वो एमएसपी से ऊपर है या एमएसपी के बराबर के पोजीशन में है.
1: तो एक फेयर प्राइस मिल रहा है फार्मर्स को.
2: बिल्कुल, बढ़ोतरी हुई है, काफी अच्छी बढ़ोतरी, क्योंकि 50% जब A2 प्लस FL के आधार पे दिए हैं, वो एक बहुत बड़ा कदम था उस समय की देखा जाएगा तो. और उसके अलावा जो मैं गिनाऊंगा तो इन्होंने फसल बीमा योजना शुरू की है. इन्होंने अभी 2 साल पहले एडिबल ऑयल मिशन लॉन्च किया, पल्सेस मिशन लॉन्च किए, और बहुत सारे चीजें इन्होंने रिफॉर्म करने की कोशिश की है. एक रिफॉर्म जरूर है कि इन्होंने कोशिश किए थे, जो थी 3 फार्म लॉज लेके आए थे कृषि कानून.

0: जो कहीं ना कहीं वो सफल नहीं हो पाए, लेकिन उन्होंने उस टाइम भी फार्मर को साथ लेते हुए, ऐसा नहीं है कि हम ले आए तो उसको करना है,
1: जी
0: फार्मर ने प्रोटेस्ट किया, नहीं माने तो फार्मर जबरदस्ती थोप नहीं दिया। जो भी चीजें हैं फार्मर जो चीज यस करते हैं, क्योंकि अल्टीमेटली सक्सेस तभी होगा जब आप फार्मर को साथ लेके चलेंगे,
1: जी
0: कोई भी स्कीम हो।
1: मिस्टर विनोद आनंद, कमिंग टू यू, आप जिस कमिटी के मेंबर हैं सरकार की, उसमें एमएसपी पर फैसले होते हैं, उस पर बातचीत होती है, तो आप हमें बता सकते हैं कि जो न्यूनतम समर्थन मूल्य का जो टूल है सरकार के पास, इसका ज्यादा से ज्यादा यूज जो किया गया है, और इन 12 वर्षों में किस तरह से आर्थिक रूप से सशक्त किया गया है किसानों को एमएसपी के माध्यम से, और बाकी भी जो आर्थिक सशक्तिकरण के जो पहलू है उन पर भी हम आपका विचार चाहेंगे।
2: जी देखिए, 3.5 गुना वृद्धि हुई है टोटल एमएसपी वैल्यू में। अर्थात मेरे कहने का अर्थ यह है कि जहां 2004 से 14 तक 7.4 लाख करोड़ रुपए खर्च होते थे, 2014-26 तक वो 26.3 लाख करोड़ रुपए हो गए। तो मैं फिर से आपको बता दूं कि 10 वर्षों में जो 2014 के पहले जहां 7.4 लाख करोड़ हुए थे, वो 26.3, यानी कि लगभग 3.5 गुना जो है वो खर्च सरकार ने एमएसपी के ऊपर किया है। मैं आपका ध्यान ले जाना चाहूंगा कि ये खर्च हुआ कहां, किस तरफ हुआ है। प्रधानमंत्री जी का सपना था कि हम स्वस्थ नेशन बने, न्यूट्रिएंट हमारा अच्छा हो, एनवायरमेंटल चैलेंजेस हैं उसको हम मीट कर पाए। इसलिए जैसे मैं आप मोटा अनाज जो है, जैसे ज्वार है और बाजरा है, आपको जान के आश्चर्य होगा 163%, यानी 163%, 1530 रुपए जो ज्वार की एमएसपी थी, अब वो 4023 रुपए हो गई। ये दुनिया के किसी भी कोने में इस प्रकार से वृद्धि नहीं हुई है। सोयाबीन के ऊपर भी 123%, मतलब आप जिसमें भी देखेंगे अमूनन 5 से 10 फसलें ऐसी है जो खरीफ के मार्केटिंग सीजन में, जिसमें 100% से भी ज्यादा खर्च हुआ है, 100% ज्यादा वृद्धि हुई है। तो ये वृद्धि अपने आप में दर्शाती है कि एमएसपी को लेकर के और किसानों को समर्थन देने में और क्रॉप डाइवर्सिफिकेशन की सिर्फ बात नहीं की जा रही, बल्कि उनको न्यूनतम समर्थन मूल्य कहीं कहीं पे 179% बढ़ाया गया, जिससे वो उन फसलों के प्रति जा सके। आपको यह जान के आश्चर्य होगा, इसके साथ साथ जो इंस्टीट्यूशनल क्रेडिट है, जैसे अभी आपने इंफ्रास्ट्रक्चर की बात की थी, किसानों के लिए जो सबसे बड़ा इंफ्रा होता है वो उनकी क्रेडिट की व्यवस्था होती है।
1: जी
2: क्रेडिट की व्यवस्था में केसीसी यानी किसान क्रेडिट कार्ड के जो अकाउंट्स थे वो 6.4 करोड़ थे, लगभग 6.5 लाख करोड़ के आसपास किसानों के पास केसीसी अकाउंट है। आज की तारीख में ये 10.2 लाख करोड़ है, यानी कि लगभग 2 गुना हो गया, लगभग 90% इसमें इजाफा हुआ है। तो ये अपने आप में कल्टीवेशन एक्सपेंसेस में, खास करके पोस्ट हार्वेस्ट रिक्वायरमेंट और मार्केटिंग में, इसमें आमूलचूल परिवर्तन हुई है। और जहां तक कृषि की बजट की बात है कि जितना बजट पहले हुआ करता था उतना तो आजकल हमारे प्रधानमंत्री जी किसानों को डीबीटी कर देते हैं, हमारे पास डीबीटी का बजट ही 70,000 करोड़ रुपए का है। तो कृषि में जो ये इन्वेस्टमेंट हुआ है, इससे दर्शाता है कि ये सरकार पूरी की पूरी विलेज लेड और फार्मर सेंट्रिक डेवलपमेंट के लिए ही बनी थी, और इसी आधार पे ये सारा कुछ हो रहा है। और उसके साथ साथ में जो इंफ्रास्ट्रक्चर चेंजेज हुए, खास करके कोऑपरेशन मिनिस्ट्री को बनने के बाद, और उसमें जो पंचायतों में 2.5 लाख वेयर हाउसेज बनाने की बात, आज तक इतना बड़ा इन्वेस्टमेंट पूरी दुनिया में वेयर हाउसिंग में कहीं भी किसी भी समय में भी कभी नहीं हुआ जितना अभी हो रहा है। तो सारे पैक्सों को वेयर हाउस में कन्वर्ट करना, और वेयर हाउस वो नीली छत और पीली दीवार वाले नहीं हो करके स्मार्ट वेयर हाउसेस कैसे हो, जो ब्लॉकचेन से लिंक्ड हैं, एवरी ग्रेन इज ट्रेसेबल, ऐसा सिस्टम बनाने की तरफ हम बढ़ रहे हैं। तो फूड सिक्योरिटी के जो ऑब्जेक्टिव थे वो तो पूरे के पूरे हो रहे हैं, पूरी दुनिया देख रही है उसको, लेकिन जो इंस्टीट्यूशनल रिजिलियंस एग्रीकल्चर के लिए, और खास करके जो मार्केट एक्सेस जो पहले नहीं था, एमएसपी को कैसे ट्रांसपेरेंट और इफेक्टिव बनाई जाए, इसके लिए 26 लोगों की कमेटी बनाई गई, जिसका मैं भी सदस्य हूं, जो 5 इसमें सचिव महोदय भी इसके सदस्य हैं। तो इतनी बड़ी कमेटी के द्वारा जो कुछ भी रिकमेंडेशन पिछले 4 वर्षों से जा रहा है उसका अक्षरशः पालन किया जा रहा है, और आप आमूलचूल परिवर्तन देख रहे हैं कि किस प्रकार से ना सिर्फ केसीसी अकाउंट और प्रोक्यूरमेंट में और एमएसपी में एक गुणोत्तर वृद्धि में, बल्कि जो सबसे ज्यादा सुविधाएं लोगों को मिल रही है वो डीबीटी हो या फिर प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि हो, इन सब में एक आमूलचूल परिवर्तन किया जा रहा है। और खास करके हम बड़े सस्टेनेबल एग्रीकल्चर की तरफ बढ़ रहे हैं, ऐसी दुनिया की तरफ बढ़ रहे हैं जहां हमारा किसान सिर्फ बीज बोना और उगाना नहीं जानता था,
1: जी
2: बल्कि वो पूरा का पूरा एग्रीकल्चर की जो पूरी एक वैल्यू चेन थी, उस पूरे मूल्य श्रृंखला में किसान किस प्रकार से कहां खड़ा है और कैसे वो किसान उसका हिस्सेदार हो, प्रत्येक मूल्य श्रृंखला के हर भाग में ऐसी नीति बनाए।

0: जा रही है और उसको एग्जीक्यूट भी किया जा रहा है।
1: सो मिस्टर प्रसाद, जैसा कि मिस्टर प्रधान ने बहुत ही खूबसूरती से समझाया कि जो एग्रीकल्चरल वैल्यू चेन है उसके हर कदम पर जो सरकार है वो समर्थन प्रोवाइड कर रही है, एक कोलैबोरेटिव वे में जो हमारा एग्रीकल्चर सेक्टर है, जो हमारे फार्मर्स हैं उनको सशक्त किया जा रहा है। डीबीटी की उन्होंने बात की, ये दुनिया का सबसे ज्यादा बड़ा डीबीटी इनिशिएटिव यानी कि डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर इनिशिएटिव माना जा रहा है किसानों के लिए, प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना, इसके बारे में बता सकते हैं कि इसका जो शुरुआत होती है जब एक क्रॉप साइकिल की, क्या इसका महत्व है किसानों के लिए और जिस लेवल पर इसका जो यूज हो रहा है, 9.44 करोड़ फैमिलीज से ज्यादा बेनिफिट करे हैं इसमें और 4.2 लाख करोड़ रुपीस से ज्यादा डिसबर्स किए जा चुके हैं 22 इंस्टॉलमेंट्स में, इसका जमीनी तौर पर जो किसान है उनके लिए क्या महत्व है?
2: सुनील जी, हम सब जानते हैं कि भारत में किसान जब भी परेशान रहे हैं और उनकी दिक्कतें बड़ी हैं, तो एक चीज जो सरकार के अलग अलग स्टडीज ने बताया है कि खर्चा सिर्फ किसान और कृषि के काम के लिए नहीं, उनके घर के खर्चे के लिए भी काफी कुछ उनके समस्याएं आती है। तो वो पारंपरिक जो तरीके हैं गैर पारंपरिक तरीके से वो क्रेडिट पाते थे, यानी कि पैसा लेते थे ब्याज पे, तो काफी परेशानी ज्यादा बढ़ जाती थी। तो छोटा सा इसके लिए एक मदद के लिए कि जैसे आपने साल में 6,000 मिलते हैं, 2,000 के डीबीटी यानी कि सीधा पैसा का हस्तांतरण बैंक अकाउंट में होता है, तो इसमें सबसे बड़ा है कि छोटे खर्चे के लिए किसान को इधर उधर देखने की जरूरत नहीं है, उसके खाते में पैसे हैं, अपने रोजमर्रा जिंदगी में छोटी मोटी जो उनके खर्चे हैं वो निकल जाते हैं। तो एक उनको तसल्ली होती है, हर आदमी को मतलब एक सुरक्षा महसूस होता है कि भाई हाँ मेरे खाते में पैसे हैं, कभी जरूरत हो तो मैं उसको इस, और जैसे आंकड़े आपने बताए हैं जिस तरह से 2026 तक जब भी बात हुई है तो 9.44 करोड़ किसान परिवार को मिला और इसमें 25% से ज्यादा महिलाओं को सीधा साथ इसका बेनिफिट मिल रहा है इसका, तो ये एक जिसे कहते हैं छोटा कदम है लेकिन महत्वपूर्ण कदम है।
1: और इसी कड़ी में जो प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना है या जो किसान क्रेडिट कार्ड्स हैं, ये सभी जो आर्थिक रूप से सशक्त करने के लिए बहुत महत्वपूर्ण एक कड़ी है पूरे जो एक साइकिल होती है एग्रीकल्चरल साइकिल। अगर आपको कहीं भी पैसे की जरूरत पड़ती है तो पहले ये था कि आपको मनी लेंडर्स के पास जाना पड़ता था जो बहुत ही डिफिकल्ट टर्म्स पे आपको हाई इंटरेस्ट रेट पे आपको देते थे और ये सब जानते हैं कि किस तरह से वो उसके चंगुल में फंस जाते थे। तो ये जो सारी सुविधाएं प्राप्त हुई, आपको लगता है ये एक तरह से फ्रीडम प्राप्त हुई है फार्मर्स को और उनके सशक्तिकरण के लिए, चाहे वो फसल बीमा योजना हो जिसमें इवन वाइल्ड एनिमल्स अगर आपकी क्रॉप को खराब करते हैं तो उसके लिए भी आपको मुआवजा मिलता है? ये सभी बहुत छोटे दिखने वाले लेकिन अगर हम इनको मिलाकर देखें तो बहुत बड़े कदम है आर्थिक सशक्तिकरण के लिए।
2: जी सुनिधि, सबसे बड़ी बात है ये दिखाता है सरकार कितना संवेदनशील है कि अलग अलग जो समस्याएं किसानों को आती हैं उस पर ध्यान उनका गया ही नहीं, उसके निवारण के लिए अलग अलग काम किए। जैसे आपने कहा पशुओं का, खासकर जो जंगली जानवर हैं वो खेत में घुस के खड़ी फसल को खराब कर देते, तो अब उसमें किसान की तो कोई गलती नहीं है, बाड़ लगाया भी होगा लेकिन रात भर निगरानी भी रखी होंगी, लेकिन कभी ना कभी कुछ इस तरह की आकस्मिक कोई घटना घटती है या जैसे हम जानते हैं कि बेमौसम बरसात आए या बेमौसम आंधी तूफान आए तो उनको नुकसान होता है। अभी हाल फिलहाल दिल्ली के आसपास जो बारिश हुई है उसमें कई खड़ी फसल में नुकसान हुआ है, तो ऐसे में एक किसान बीमा योजना जो है प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना ये काफी सारा व्यापक है और इसमें सरकार की जो इसके पीछे सोच है वन नेशन वन क्रॉप वन प्रीमियम, यानी कि एक ही जैसा आप बीमा कंपनी को अपना प्रीमियम राशि जमा करें और उसके बदले में आकस्मिक कोई घटना घटती है आपका जो बीमा कंपनी है उनकी तरफ से आपको मुआवजा दिया जाएगा। तो आंकड़े बताते हैं कि 2016-17 से हुए तो करीब 93 करोड़ या 92.5 करोड़ कृषक इस तरह के और करीब 2 लाख करोड़ रुपए तक लोगों ने 25 दिसंबर तक इसमें फायदा उठाया है। सोनू जी,
1: जी बिल्कुल। एंड मिस्टर आनंद, कमिंग टू यू, यू नो द काइंड ऑफ एक्सपेंशन 2.5 times इंक्रीज इन द इंस्टीट्यूशनल क्रेडिट थ्रू किसान क्रेडिट कार्ड्स व्हिच हैज टेकन प्लेस, इज इट नॉट ओनली द क्वांटिटी द क्वालिटी आल्सो, द फिशरीज द एलाइड सेक्टर्स दे हैव आल्सो बीन इंक्लूडेड एंड इनफैक्ट फॉर द एलाइड सेक्टर्स दिस गवर्नमेंट हैज क्रिएटेड अ स्पेशल मिनिस्ट्री एंड देयर इज अ मिनिस्ट्री ऑफ कोऑपरेशन। सो यू थिंक दैट एनहांसिंग द इनकम ऑफ फार्मर्स दीज एलाइड सेक्टर्स आर प्लेइंग अ वेरी मेजर रोल?
0: देखिए, जो फूड प्रोडक्शन होता है हमारे यहाँ और फूड सिक्योरिटी, इसके बीच में जो कुछ भी समस्याएं होती थी और उसका कोऑपरेटिव मिनिस्ट्री से बहुत लेना देना था, तो सबसे पहले सरकार ने अपनी मंशा क्लियर कर दी कि हम मिनिस्ट्री ऑफ कोऑपरेशन बनाएंगे। मैं फिर से बताता हूँ, ये मिनिस्ट्री ऑफ कोऑपरेशन है, ये मिनिस्ट्री ऑफ कोऑपरेटिव नहीं है
1: जी।
0: ये मिनिस्ट्री ऑफ एग्रीकल्चर एंड फार्मर्स वेलफेयर है। ये शब्द स्वयं बहुत कुछ बयां करती है सरकार की नीयत के बारे में। नीतियां तो बाद में बनती है और एग्जीक्यूट

0: होती है। तो सरकार की नीति बहुत क्लियर है कि हम मिनिस्ट्री ऑफ कोऑपरेशन बनाएंगे और सारे कन्वर्जेंस ऑफ स्कीम्स उसके तहत लेके आएंगे जो किसानों के भले के लिए हो। तो सबसे पहले कि कोऑपरेटिव का डेटाबेस आज तक हमारे पास नहीं था कि कितने पैक्स हैं, कहाँ हैं, क्या बिजनेस एक्टिविटी कर रहे हैं, उसमें कौन अच्छा काम कर रहे हैं, किनको बहुत कुछ अच्छा करना है, किनको हम बहुत लिक्विडेट कर सकते हैं। तो इस प्रकार से सबसे पहला काम तो ये किया गया कि ये अपेक्स टू पैक्स का अप्रोच कोऑपरेशन में नहीं रहा, ये
1: सो
0: पैक्स
1: पैक्स जो
0: से
1: आप कह रहे हैं कि
0: अपेक्स का
1: प्राइमरी
0: अप्रोच,
1: एग्रीकल्चरल क्रेडिट सोसाइटी
0: क्रेडिट सोसाइटीज। जी
1: जी
0: बिल्कुल, तो प्राइमरी एग्रीकल्चर क्रेडिट सोसाइटी से ऊपर हम लेके जा रहे हैं अपेक्स तक, जो एनसीडीसी और नाफेड और जो आप बड़े बड़े जो कोऑपरेटिव मल्टी स्टेट हैं उसकी तरफ। 25 बिजनेस एक्टिविटीज पैक्स अपने आप में कैसे रिसोर्सेज जनरेट कर पाए, जो इनपुट का बिजनेस है उसमें कैसे भागीदारी ले पाए, इसके लिए उनको 25 बिजनेस एक्टिविटीज से उनको जोड़ा गया। यहां तक कि आपको पेट्रोल पंप, एलपीजी की डिस्ट्रीब्यूटरशिप, जन औषधि केंद्र, इस प्रकार से जो प्रॉफिटेबल बिजनेसेज हैं वो भी कोऑपरेटिव को पैक्स को दिए गए। 79,630 यानी कि लगभग 80,000 पैक्स को कंप्यूटराइज किया गया 31 राज्यों और यूनियन टेरिटरी में। 61,886 पैक्स को ऑनबोर्ड किया गया ईआरपी के माध्यम से, यानी कि हर समय शाम के 5 बजे तक एक क्लिक में, अब ये कंप्यूटराइज हो गई है, ऐसी व्यवस्था बनाई गई है कि आप एक क्लिक में वहां पे क्या एक्टिविटी हो रही है उसकी मॉनिटरिंग यहाँ की जा सकती है। वो रजिस्टर पे एंट्री सारी बंद हो चुकी है जिसमें बहुत बड़ी समस्याएं थी। तो कहां 1947 से हम बातचीत तो कर रहे थे, लेकिन उसको इम्प्लीमेंट करने में, उसमें जो ट्रांसपेरेंसी लानी थी, उससे हम कहीं दूर, बहुत दूर बैठे थे। तो
1: जी
0: एक तो ये सबसे पहला सुधार किया गया। आपके
1: हाँ
0: माध्यम से मैं कुछ और बताना चाहूंगा कि हमारे यहाँ पहले ये कहा गया था कि पीडीएस में बहुत सारे लीकेजेस होते हैं, सभी लोग 15% और 100% की बातचीत कहते हैं, जो पूर्व प्रधानमंत्री के द्वारा कहा गया था। हमारे यहाँ अब है वन नेशन वन राशन कार्ड, और वही डिजिटाइज्ड है, यानी कि अगर मैं बिहार का किसान हूं और दिल्ली में किसी कारणवश रह रहा हूं तो मैं दिल्ली के फेयर प्राइस से अपना अनाज जो भी एलोकेट है मैं विड्रॉ कर सकता हूं। तो ऐसा डेटाबेस करना, ऐसा बनाना और उसको एग्जीक्यूट करना, ये अपने आप में एक बड़ा मील का पत्थर है। अब मैं आता हूं आपके इंफ्रास्ट्रक्चर जो स्ट्रेंथन किए गए, वो
1: हाँ
0: फार्म गेट से मार्केट तक कैसे जाए,
1: जी
0: यानी कि किसान के खेत से बाजार तक वो जो जाने वाली बात है उसमें किसान का भाग कैसे हो, उसमें बीच में जो व्यापारी वर्ग है सिर्फ वही फायदा ना ले जाएं, बल्कि व्यापारियों के साथ हमारे किसान कैसे काम कर सके और मूल्य श्रृंखला में कैसे अपनी बात कह पाए। तो जैसे कि एग्रीकल्चर इंफ्रास्ट्रक्चर फंड है, ई नाम की बात मैंने आपसे पहले बताई थी, प्रधानमंत्री किसान समृद्धि केंद्र जो पहले नहीं थी, आज की तारीख में 1.8 लाख ऐसे केंद्र बनाए गए जहां पे इनपुट और वन स्टॉप सेंटर हैं इनपुट और एडवाइजरी सर्विसेज के। तो एक्सटेंशन के लिए एक नया, एक पूरा ओपन मार्केट सिस्टम बन गया जहां से ये सारी चीजें हो रही है। मेगा फूड पार्क स्कीम जहां किताबों में थी, सिर्फ गाइडलाइंस में थी, आज सैकड़ों मेगा फूड पार्क बनाए जा रहे हैं। तो एग्रीकल्चर इंडस्ट्री को फूड प्रोसेसिंग के साथ जोड़ करके और इस पूरे पूरे मूल्य श्रृंखला में किस प्रकार से किसानों के पास आप आ पाए, लगभग 11,000 करोड़ रुपए उसमें खर्च किए गए और वो
1: जी
0: फार्मर्स के माध्यम से खर्च किए गए, ना कि बीच में जो लोग होते हैं उनके माध्यम से खर्च किया जाए।
1: तो उनकी
0: आप कुछ
1: जरूरत के
0: ऐसे
1: अनुसार
0: चैलेंजिंग प्लेसेज हैं जहां पे, जैसे मान के चलिए 100 जिले थे, तो उन 100 जिलों को आइडेंटिफाई किया गया कि यहाँ पे क्या कारण है। भाई 75 साल हो गए जहां एक जिले में प्रोडक्शन एक्स हो रहा है, इन जिलों में x/8 हो रहा है, आखिर क्या कारण है। तो उनको लेकर के और उन जिलों के लिए अलग से स्कीमें बनाई गई, उसके ऊपर सरकार की अलग ओवरसाइट है, एडिशनल सीक्रेट रैंक ऑफिसर उसकी मंथली देखरेख करते हैं, और उन अमुक जिलों में कैसे प्रोडक्शन बढ़े इसके ऊपर ध्यान दिया जा रहा है, इसके ऊपर एक पूरी नायाब नीति बनाई जा रही है। तो मुझे लगता है ये सारा जो प्रोडक्शन लिंक्ड इंसेंटिव दिया जा रहा है और इस प्रकार से जो प्रधानमंत्री का विशेष ध्यान है एलाइड एक्टिविटीज पे, खास करके फिशरीज में और जो डेयरी में, आज आप देख रहे हैं लद्दाख में भी एनडीडीबी ने जाकर के वहां का भी एक डेयरी शुरू किया है, जिस प्रकार से दिल्ली में मदर डेयरी है, तो लद्दाख की मदर डेयरी कैसे शुरू हो, या जम्मू कश्मीर में डेयरी से फार्मर्स कैसे जुड़े, या वहां के जो लोकल जो हमारा ह्यूमन रेजिलियंस है उसको कैसे हम इंटीग्रेट कर पाए एग्रीकल्चर के साथ में। तो एक बड़ा बदलाव लाइव स्टॉक डेयरी के सेक्टर में हो रहा है।
1: जी
0: चौथी बात मैं आपके माध्यम से बताऊंगा कि जो बायो इथेनॉल में और जो सीबीजी में सरकार का ध्यान है, कंप्रेस बायोगैस में,
1: जी
0: और ये कंप्रेस बायोगैस का बड़ा बाजार जो पूरी दुनिया में निकल रहा था एविएशन टरबाइन फ्यूल, यानी कि सस्टेनेबल एविएशन टरबाइन फ्यूल के माध्यम से, उसमें गांव की हिस्सेदारी कैसे बढ़े, उसके लिए सैकड़ों सीबीजी प्लांट लगाए जा रहे हैं, कंप्रेस बायोगैस प्लांट लगाए जा रहे हैं, और ये
1: जी
0: तेल की कंपनियां उसको खरीद करके और एविएशन टरबाइन फ्यूल में मिला करके और उसको वो बेच रही हैं। तो ये इसका सीधा सीधा डिविडेंड जो है वो फार्मर्स के पास जा रहा है।

0: तो इन सारी स्कीमों में फार्मर सेंटर सिटी की बात यह है कि अगर मान के चलिए कोई मल्टी स्टेट कोऑपरेटिव व्यापार करती है तो उसका प्राइस तो किसानों को मिलता है क्योंकि रॉ मटेरियल उनसे वो प्रोक्योर कर रहे हैं, इसके साथ साथ में जो फायदा होता है उसका डिविडेंड किसानों के पास कैसे जाए, ये
1: जी
0: फार्मर सेंट्रिक एग्रीकल्चर सिस्टम जो डाइवर्सिफाइड है, टेक्नोलॉजी ड्रिवेन है, वो बनाई जा रही है। तो ये अपने आप में एक मील का पत्थर है। पिछले 12 वर्षों में हम जहां तक चल के आ पाए, हमें ऐसा लगता है कि 2047 तक एग्रीकल्चर के वैल्यू चेन में फार्मर्स की जो भागीदारी बढ़ेगी और उससे एक असमानता कमेगी, ऐसा प्रधानमंत्री जी का ध्यान है और पूरा देश उस ओर अग्रसर है।
1: मिस्टर मिश्रा, आपके पास आते हैं, आप बताएं हमें, एक जो मिनिस्ट्री ऑफ कोऑपरेशन 2021 में बनाई गई, अलग से एक सहकारिता मंत्रालय बनाया गया, और जिस तरह से कोऑपरेशन जो मॉडल है उसका सक्सेस कृषि क्षेत्र में देखा गया है, अगर हम दूध जो सेक्टर है उसकी बात करें, और ये जो फार्मर प्रोड्यूसर ऑर्गेनाइजेशंस बनाई गई हैं 10,000, ये कैसे कोऑपरेटिव मॉडल को यूज करके ये कैसे फार्मर्स को लाभान्वित करती हैं, इसके बारे में थोड़ा बता सकते हैं, इस मंत्रालय के महत्व के बारे में कृषि क्षेत्र के पॉइंट ऑफ व्यू से, और ये फार्मर प्रोड्यूसर ऑर्गेनाइजेशंस जो बनाई गई हैं ये खासकर छोटे और सीमांत किसान हैं उनके लिए इनका क्या महत्व है?
2: ये जो एफपीओ का कंसेप्ट लेके आए, पहले भी एफपीओ बनते थे लेकिन सरकार ने जब अनाउंस किया कि 10,000 हम एफपीओ बनाएंगे विद इन ए डेडलाइन, वो डेडलाइन से पहले ही बन गए
1: जी
2: 10,000। उन्होंने बनवाए क्या, उन्होंने फैसिलिटेट किया, उसमें उन्होंने स्कीम लेके आए कि हम आपको 50% इक्विटी पार्टिसिपेशन देंगे। कोई भी कंपनी वो जो एफपीओ है उसमें या तो आप कोऑपरेटिव बना सकते हैं या एक प्राइवेट कंपनी बना के आप एफपीओ का जो स्ट्रक्चर है उसके तहत आप काम कर सकते हैं। तो आप देख लीजिए किसी भी कंपनी में जब 50% इक्विटी कोई देता है उसका वोटिंग राइट होता है, वो डिसीजन लेता है, वहां पे उस क्षमता में रहता है, डिसीजन वही डिसाइड करे। लेकिन इस मॉडल में सरकार ने बोला कि हम इक्विटी जरूर देंगे आपको 50% ग्रांट के तहत, लेकिन डिसीजन आपकी होगी, कोई हमारा इंटरफियरेंस नहीं है। ये बहुत बड़ी बात है कि एक जो बोलते हैं कि स्वयं शासित कर देना, कि आप खुद ही गवर्न करो एफपीओ को और गाइड करते रहना कि भाई आप ऐसे करोगे, उसमें हेल्प करना। हर बृहस्पतिवार को एक वेबिनार होती है जिसमें सारे एफपीओ जोड़ते हैं और दो दो कंपनीज को बुलाते हैं गवर्नमेंट, और ये कई चीज जो लाइमलाइट में नहीं आती है उसमें, लेकिन एफपीओ का जरूर फायदा हुआ है। कई एफपीओ करोड़पति बन गए हैं और गवर्नमेंट का प्लान है कि 2030 तक शायद 10,000 में से 5,000 को करोड़पति में ले आएंगे।
1: तो किस तरह के निर्णय लेते हैं मिलकर जो एफपीओज होते हैं, किस किस क्षेत्र में?
2: इन्होंने पूरी फ्रीडम दे रखी है एफपीओ को, जो चाहे वो कर सकते हैं एज ए बिजनेस एंटिटी। उनको बिजनेस बढ़ाना है और कृषि के आसपास जितने भी चीजें हैं, जैसे मान लीजिए किसी ने इनपुट बेच रहा है तो वो डायरेक्टली कंपनी से सोर्स करते हैं और अपने फार्मर के अलावा जो आसपास के लोग हैं उनको देते हैं, सब्सिडाइज नहीं, चीपर रेट पे, क्योंकि वो डायरेक्टली सोर्स करते हैं। गवर्नमेंट उनको सपोर्ट करता है। किसी एफपीओ को मान लीजिए पता नहीं है कहाँ से सोर्स करना है, क्या सोर्स करना है, उसमें गवर्नमेंट उनको मदद करता है, बताता है कि इस कंपनी से आप जुड़ सकते हैं। तो ऐसे जो इंफॉर्मेशन शेयरिंग होती है उससे कई एफपीओ को बहुत फायदा हुआ है।
1: तो इनपुट्स उनकी कॉस्ट कम होती है और उनको जो प्राइसेस है वो बेटर मिलती है और उनका जो है प्रॉफिट बढ़ता है।
2: बिल्कुल, जो बीच में जितने भी मिडिल मैन इन्वॉल्व होते हैं वो सब खत्म हो जाते हैं। तो वो जो भी कंपनी जो उनको कॉस्ट में देती है, सप्लाई करती है, वो थोड़ा सा मुनाफा करके प्रॉफिट रख के वो बेचते हैं। और अपने फार्मर को कई एफपीओ तो ऐसे हैं जो कॉस्ट ऑफ जितने लाते हैं उतने में अपने मेंबर को दे देते हैं, तो जो कहीं नहीं मिलेगा उस प्राइस में। आपको कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन अगर कम हो जाता है किसी फार्मर का तो उसका प्रॉफिट भी तो बढ़ता है जब मार्केट प्राइस दूसरे फार्मर के कंपैरिजन में।
1: सो दैट कलेक्टिव पावर इज देयर। एंड मिस्टर मिश्रा, वी वुड ऑल्सो लाइक योर व्यूज एंड इफ यू कुड टेल अस दैट हाउ गवर्नमेंट इज रियली एम्पावरिंग द फार्मर्स बाय प्रोटेक्टिंग देम फ्रॉम इंक्रीज इन द प्राइसेस ऑफ फर्टिलाइजर्स। सो दिस इज अ वेरी इंपॉर्टेंट इनपुट, द फर्टिलाइजर्स। सो दिस एस्पेक्ट हाउ इट हैज बीन टेकन केयर ऑफ एट द पॉलिसी लेवल इन दीज 12 ईयर्स, कैन यू टेल अस अबाउट दिस एम्पावरमेंट एस्पेक्ट फॉर फार्मर्स?
2: सी, फर्टिलाइजर इन इंडिया इज कंसिडर्ड द चीपेस्ट इन द वर्ल्ड व्हेन यू टॉक अबाउट यूरिया पर्टिकुलरली। व्हाई? बिकॉज गवर्नमेंट हैज नॉट

0: raised the price for past two decades or so. And urea currently is available at 267 rupees per bag of 45 kg. Last international price at which India bought urea was $954 per ton. So roughly, if you take $1,000, it comes to around 95,000 per ton. 95,000 means 9,500 per quintal. It is a big amount. So when farmers are sold at 267 rupees, just imagine how much money the government is subsidizing. The result is farmers are getting the product fertilizer at the very cheap rate, so that their cost of production is also limited within certain range.
1: Right.
0: And it is also reflected in the end price which they are selling their produce. If you raise the input cost, the product will also be costlier for the consumers. So it is based on this theory that you subsidize the input to some extent,
1: okay,
0: so that the end product also becomes cheaper for the consumers, and our inflation is also remain under control.
1: Mr. Anand, Mr. Prasad, Mr. Mishra, thank you so much for this insightful discussion on the various aspects of how the farmers and the agriculture sector has been empowered in the last 12 years.
2: Thank you.
3: Thank you very much.
0: Thank you very much.
4: In the special series, you were listening to a discussion on 12 years of the Modi government, initiatives for empowering farmers and achievements in agriculture sector. Participants were Binod Anand, member of the High Power Committee on MSP and Agricultural Reforms, Government of India, K.V. Prasad and Prabhudat Mishra, senior journalists. Moderator was Sonu Sood. This program was produced and presented by the New Services Division of Akashwani.
5: विशेष श्रृंखला के अंतर्गत अभी आप सुन रहे थे मोदी सरकार के 12 साल किसानों के सशक्तिकरण और कृषि क्षेत्र के उत्थान के प्रयासों पर चर्चा. इसमें भाग ले रहे थे भारत सरकार में एमएसपी और कृषि सुधारों पर उच्च स्तरीय समिति के सदस्य विनोद आनंद और वरिष्ठ पत्रकार केवी प्रसाद व प्रभुदत्त मिश्रा. कार्यक्रम का संचालन कर रही थी सोनू सूद. ये कार्यक्रम आकाशवाणी के समाचार सेवा प्रभाग द्वारा प्रस्तुत किया गया. इसे आप हमारे मोबाइल ऐप न्यूज ऑन एआईआर और यूट्यूब चैनल न्यूज ऑन एआईआर ऑफिशियल पर भी सुन सकते हैं. कार्यक्रम के संबंध में अपनी प्रतिक्रिया आप हमें ईमेल या व्हाट्सएप के माध्यम से भेज सकते हैं. ईमेल का पता है airnsdtalks@gmail.com और व्हाट्सएप नंबर है 9289094044.
6: श्रोताओं, अभी आप दिल्ली से कल प्रसारित सरकार के 12 वर्ष पूर्ण होने के उपलक्ष्य में विभिन्न विषयों पर आधारित विशेष द्विभाषी कार्यक्रम श्रृंखला की रिकॉर्डिंग सुन रहे थे. हम आकाशवाणी के श्री विजयपुरम केंद्र से बोल रहे हैं. इस समय सुबह के 9:05 हुए हैं और अब लीजिए सुनिए फिल्मी गीतों का कार्यक्रम तराने सुहाने. कार्यक्रम का पहला गीत फिल्म काला पत्थर से. आवाजें लता मंगेशकर और किशोर कुमार की हैं.

श्रोताओं, अगला गीत हमने लिया है फिल्म आए दिन बहार की से। आवाजें हैं लता मंगेशकर और महेंद्र कपूर की। आनंद बख्शी के लिखे इस गीत को संगीत से सजाया लक्ष्मीकांत प्यारेलाल ने।

0: नमस्ते कविता, अच्छा लगा कि आप आयुष्मान आरोग्य मंदिर में सर्विकल कैंसर की जांच के लिए आईं।
1: अरे दीदी, मेरी बेटी ने मुझे प्रोत्साहित किया।
0: आपकी बेटी तो बहुत समझदार है। बेटा, तुम कितने साल की हो?
2: मैं 14 साल की हूँ।
0: अब आपको अपनी बेटी को सर्विकल कैंसर से बचाने के लिए टीका लगवाने लाना होगा।
1: क्या कैंसर के लिए भी टीका होता है?
0: हाँ, ये एक ऐसा कैंसर है जिससे HPV की वैक्सीन के जरिए बचाव किया जा सकता है।
1: धन्यवाद दीदी।
0: जरूर, अपनी बेटी को HPV का टीका लगवाने के लिए वैक्सीन पोर्टल UWIN पर रजिस्टर करना मत भूलना।
3: भारत सरकार ने सर्विकल कैंसर से बचाव के लिए 14 साल की लड़कियों के टीकाकरण को सरकारी स्वास्थ्य केंद्रों पर निशुल्क उपलब्ध किया है। आज ही www.uwin.mohfw.gov.in पे जाके HPV वैक्सीनेशन के लिए रजिस्टर करवाएं। ये संदेश भारत सरकार के स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय द्वारा जनहित में जारी।
4: They say some cars blend in, but what if yours always stand out? But what if yours always stood out? The Maruti Suzuki Fronx. Experience the thrill of the 1.0-liter turbo engine built for those who crave performance. Join over 4 lakh proud Fronx owners, starting at just Rs. 6.85 lakh. So, why follow when you can lead? Visit your nearest Nexa showroom today. Nexa.
5: श्रोताओं, अब लीजिए सुनिए मोहम्मद रफ़ी की आवाज़ में दोस्ताना फिल्म का एक गीत। लक्ष्मीकांत प्यारेलाल के संगीत निर्देशन में तैयार इस गीत को लिखा आनंद बख्शी ने।

0: डूबा और की फसली रे फसली।
1: अरे पागल हो गए क्या, मैंने ऐसा तो नहीं कहा था।
0: अगर ये दवड़ी ये लादू नको।
2: किशोर कुमार और साथियों की गाय फिल्म कहानी किस्मत की के इस गीत के साथ ही फिल्मी गीतों के कार्यक्रम तरानी सुहाने अब यहीं समाप्त होता है।

मीडियम वेव 438.6 मीटर अर्थात 684 किलोहर्ट्ज पर यह आकाशवाणी का श्री विजयपुरम केंद्र है। इस समय सवेरे के 9:30 हुए हैं। आइए सुनते हैं शास्त्रीय संगीत कार्यक्रम। इस कार्यक्रम के अंतर्गत आप सुनेंगे षण्मुखा प्रिया और हरिप्रिया का कर्नाटक शैली में गायन। तो लीजिए सुनिए षण्मुखा प्रिया और हरिप्रिया का गायन। इनके साथ वॉयलन पर उषा राजगोपालम, मृदंगम पर के अरुण प्रकाश और घटम पर है के कार्तिक। तो लीजिए इनका गाया। सबसे पहले सुनिए राग रीति ग्वाला जो आदि ताल में निबद्ध है।

0: QR कोड स्कैन करो, 5,000 का कैशबैक पाओ। वाह, दिल बन गया।
1: UPI पिन एंट्रिंग सिर्फ पैसे भेजने के लिए है।
2: RBI कहता है
1: जानकार बनिए, सतर्क रहिए।

शास्त्रीय संगीत के इस कार्यक्रम में अभी आप षण्मुखा प्रिया और हरिप्रिया का कर्नाटक शैली में गायन सुन रहे थे। ये आकाशवाणी का श्री विजयपुरम केंद्र है। इस समय सवेरे के 10 बजे हैं। श्रोताओं, आइए आपके मनोरंजन के लिए प्रस्तुत करते हैं फिल्मी गीतों का कार्यक्रम गीत गाता चल। कार्यक्रम में सबसे पहले गीत हमने लिया है फिल्म आरजू का ये गीत, जिसे गाया है कुमार सानू, अलका याग्निक और साथियों ने। बोल आनंद बख्शी के हैं तथा संगीत से सजाया है अनु मलिक ने।

अगला गीत हमने लिया है लव ब्रेकअप जिंदगी फिल्म से, जिसके गायक कलाकार हैं सोनू निगम, श्रेया घोषाल, सलीम मर्चेंट और श्रद्धा पंडित। बोल जावेद अख्तर के हैं तथा संगीत दिया है सलीम सुलेमान ने।

दिल वाले दुल्हनिया ले जाएंगे इस फिल्म का गीत आइए आपको सुनवाते हैं, जिसे गाया है लता मंगेशकर ने, बोल आनंद बख्शी के हैं तथा संगीत दिया है जतिन ललित ने।

0: अगला गीत हमने लिया है हम आपके है कौन फिल्म से। आवाज़ें हैं लता मंगेशकर, एसपी बाला सुब्रमण्यम और साथियों के, बोल रविंदर रावल के हैं तथा संगीत दिया है राम लक्ष्मण ने।
1: 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1, let's start the fun!

अलका याग्निक की आवाज़ में आइए सुनते हैं फिल्म होते होते प्यार हो गया का ये गीत। बोल रानी मलिक के हैं तथा संगीत दिया है आनंद राज आनंद, प्रदीप और इजाज़ ने।

अगला गीत हमने लिया है फिल्म लफंगे परिंदे से। गायक है रोनित सरकार, बोल स्वानंद हिरकिरे के हैं तथा संगीत दिया है आर आनंद ने।

रानू मुखर्जी और सोनू निगम की आवाज़ में आइए सुनते हैं फिल्म दाऊद का ये गीत। बोल महबूब के हैं तथा संगीत दिया है AR रहमान ने।

फिल्म फियर से आइए सुनते हैं ये गीत। आवाज़ें हैं गायत्री अय्यर के, बोल समीर के हैं तथा संगीत दिया है हिमेश रेशमिया ने।

श्रोताओं, अभी आप सुन रहे थे कार्यक्रम गीत गाता चल। ये आकाशवाणी का श्री विजयपुरम केंद्र है। इस समय सवेरे के 11 बजे हैं। श्रोताओं, आइए सुनते हैं प्रायोजित कार्यक्रम NCERT की 1302 कड़ी।

0: सबदंग।
1: सीआईईटी प्रस्तुत करता है
0: उमंग उमंग उमंग उमंग।
2: सभी श्रोताओं का उमंग कार्यक्रम में स्वागत है। आप सबको विमलेश का नमस्कार
1: और अजीत का भी नमस्कार। आइए करते हैं शुरुआत एक सुंदर विचार के साथ जिसे हमें भेजा है
2: कस्बा बराड़ा जिला अम्बाला हरियाणा से रवि कुमार राहुल रंजीत कौर जयप्रकाश राहुल प्रियंका और मन्नत जी ने। लिखते हैं
1: मानव की इच्छाएं कभी भी पूरी नहीं होती
2: जी।
1: एक इच्छा पूरी होती है तो दूसरी जाग जाती है। हमें अपनी इच्छाओं को नियंत्रित करना चाहिए और जो मिल जाए उसी में संतोष करना चाहिए।
2: धन्यवाद आपका इस सुंदर विचार के लिए। और अब सुनते हैं संदेश भेजने वाले श्रोताओं के नाम।
1: तो पहला संदेश हमें मिला है ऊपरकोट मोहल्ला चौखुंटी बुलंदशहर से मोहम्मद सईद अब्बासी निगहत परवीन अब्बासी शाहनवाज अब्बासी सरफराज अब्बासी।
2: कुतुबपुर तहसील जिला हांसी हरियाणा से संदीप वर्मा जी।
1: खुर्जा उत्तर प्रदेश से तिलक राज अरोड़ा प्रकाश अरोड़ा चंदन अरोड़ा और अंकुश अरोड़ा जी ने लिखा है
2: सप्रेम नमस्ते जी। गर्मी की छुट्टियों में बच्चे पेड़ पौधे लगाना पक्षियों को दाना खिलाना डायरी लिखना और दादा दादी नाना नानी के यहाँ जाना कार्य कर सकते हैं।
1: आगे आप लिखते हैं सर अजीत जी और मैडम विमलेश जी उमंग कार्यक्रम में गर्मी से संबंधित विषय पर जानकारी एवं जो अन्य कार्यक्रम सुनाए जा रहे हैं बेहद पसंद आ रहे हैं। कार्यक्रम सुनकर गर्मी में भी दिल को ठंडक का एहसास हो रहा है
2: जी।
1: आपने यहीं पर विराम नहीं दिया, आपने आगे लिखा है
2: भारत के वीर सेनानियों पर आधारित कार्यक्रम की श्रृंखला वीर गाथा उमंग कार्यक्रम में सुनवाई जा रही है वो प्रशंसा योग्य है। सेकंड लेफ्टिनेंट अरुण खेत्रपाल जी एवं लांस नायक अलवर टेक्का जी पर केंद्रित कार्यक्रम सुनकर हमारी आंखें नम हो गईं। कार्यक्रम बेहद पसंद आया। ये कार्यक्रम सुनवाने के लिए समस्त उमंग टीम का हम दिल से आभार प्रकट करते हैं। धन्यवाद आप सभी श्रोताओं को। और प्रस्तुत है श्रृंखला ये भी जानिए।
1: तो विमलेश जी अब ये बताइए कि ये भी जानिए श्रृंखला में आज हमारी चर्चा का विषय क्या रहेगा।
2: अजीत जी इस सप्ताह हम पूरे विश्व परिवार की अनेक रोचक परंपराओं की चर्चा करेंगे
1: जी।
2: आज की चर्चा का विषय होगा जापान का चाय समारोह। इसे टी सेरेमनी भी कहा जाता है और जापानी भाषा में इसे चानू यू कहते हैं। ये दुनिया की सबसे सुंदर और अनुशासित परंपराओं में से एक है
1: जी। हाँ श्रोताओ, जापान की चाय परंपरा केवल चाय पीना नहीं लेकिन सम्मान शांति अनुशासन और व्यवहार की सुंदरता का उत्कृष्ट उदाहरण है। तो आइए जानते हैं विमलेश जी से कि ये परंपरा जापान में कब शुरू हुई।
2: जी अजीत जी, हम सब जानते हैं कि चाय की शुरुआत चीन से हुई है। 9वीं शताब्दी की बात है जब कुछ बौद्ध भिक्षु चीन से चाय की पौध लेकर जापान आए और तब चाय का प्रचलन जापान में भी शुरू हुआ।
1: लेकिन विमलेश जी, ऐसी कौन सी बातें हैं जो जापानी चाय समारोह को इतना विशेष बनाती हैं कि हम

0: की चर्चा कर रहे हैं?
1: जी अजीत जी, जापान में चाय पीना एक विशेष अर्थ रखता है।
0: जैसे?
1: जैसे कि वहाँ चाय पीना एक औपचारिक और सामान्य बात नहीं है। इस समारोह में बहुत सी बातों का खास ध्यान रखा जाता है। आइए अपने श्रोताओं को कुछ जापानी शब्दों से भी परिचित कराते हैं जो वहाँ की चाय परंपरा को खास बनाते हैं।
0: जी, सचमुच चाय पीने के संदर्भ में इन जापानी शब्दों को जानना बड़ा रोचक रहेगा।
1: अजीत जी, भिक्षुओं ने इसे आध्यात्मिकता से जोड़ दिया और इसके कुछ नियम बनाए।
0: तो क्या क्या नियम है इसके?
1: जापान का चाय समारोह चार मूल सिद्धांतों पर आधारित है। पहला सिद्धांत है वाह।
0: वाह यानी?
1: यानी हारमोनी या सामंजस्य।
0: और दूसरा शब्द क्या है?
1: दूसरा शब्द है केई।
0: जी।
1: यानी रिस्पेक्ट या सम्मान।
0: और श्रोताओ, तीसरा शब्द है सेई यानी पवित्रता या प्यूरिटी। और चौथा शब्द है याकू यानी आंतरिक शांति या इंटरनल पीस।
1: श्रोताओ, इन चार सिद्धांतों पर टिकी है जापानी चाय परंपरा, जिससे हम स्पष्ट अनुमान लगा सकते हैं कि ये कितनी अर्थपूर्ण है। तो जी जी, अब करते हैं साझा कुछ और रोचक बातें जो जापानी चाय परंपरा में अनिवार्य मानी जाती हैं।
0: जी हाँ, तो श्रोताओ, चाय समारोह में अतिथि सर झुकाकर अभिवादन करते हुए चाय का कटोरा दोनों हाथों से लेते हैं। ये सम्मान दर्शाने का प्रतीक है।
1: जी, एक और खास बात ये है कि इस परंपरा में अतिथि चाय का कटोरा लेकर कटोरे को मेजबान की तरफ देकर हाथ को हल्का सा घुमाता है। इस कार्यक्रम में इस बात का बहुत ध्यान रखा जाता है कि अतिथि कहाँ बैठेंगे, उन्हें कैसे आराम दिया जाए, ये भी ध्यान दिया जाता है कि प्याला कैसा होगा।
0: जी, और अब एक जानकारी और आपको दे दें कि समारोह का आयोजन पारंपरिक तौर पर कहाँ होता है।
1: ये समारोह अक्सर एक शांत टी हाउस या चाय कक्ष में होता है जो लकड़ी और बांस से बना होता है। फर्श पर परंपरागत चटाई बिछी होती है, बाहर छोटा सा बागीचा भी हो सकता है। चाय घर या कक्ष को जापानी में चा शित्सु कहा जाता है। पारंपरिक रूप से चाय पार्टी में किमोना पहना जाता है। चाय कक्ष के मार्ग में रंगीन छोटे छोटे पत्थर मार्गदर्शक के रूप में लगाए जाते हैं।
0: यानी कुल मिलाकर ये चाय समारोह हो सादगी, विनम्रता और प्रकृति के सौंदर्य का मेल कहा जा सकता है।
1: जी
0: विमलेश जी, हमने ये तो बताया ही नहीं कि जापानी चाय समारोह में कौन सी चाय परोसी जाती है।
1: अरे हाँ, ये तो हम भूल ही गए थे। श्रोताओं, इस समारोह में माचा चाय दी जाती है। ये चाय की हरी पत्तियों को पीसकर पाउडर की तरह बनाई जाती है। जहाँ तक इसके स्वाद की बात है, स्वाद थोड़ा कड़वा हो सकता है।
0: कड़वा हो सकता है, तो इसीलिए सबसे पहले एक जापानी मिठाई दी जाती है जिसे वागाशी के नाम से जाना जाता है। पूरे जापान में ये मिठाई बहुत ही लोकप्रिय है। और श्रोताओं, एक खास बात आपको बताएं, प्रत्येक मिठाई बिल्कुल कलात्मक दिखाई देती है।
1: जी, तो श्रोताओं, जापान की चाय परंपरा हमें सिखाती है कि चाय पीना मात्र चाय पीना ही नहीं है, बल्कि वर्तमान क्षण को पूरी शांति और सुंदरता के साथ जीना है।
0: तो ये चाय समारोह हमें संदेश देता है कि साधारण सी चीज यानी एक कप चाय भी सम्मान, परस्पर सामंजस्य और व्यस्त जीवन में गहरी शांति का अनुभव बन सकती है।
1: जी, तो श्रोताओं, कैसी लगी हमारी जानकारी, ये जरूर बताइएगा। और अब सुनिए आज का प्रश्न। प्रश्न है,
0: चाय समारोह को जापानी भाषा में क्या कहते हैं? प्रश्न एक बार फिर से सुन लीजिए।
1: चाय समारोह को जापानी भाषा में क्या कहते हैं?
0: और भेज दीजिए अपना उत्तर हमारे IVRS नंबर 8800440559 पर।
1: आप अपने संदेश और प्रश्नों के उत्तर हमारे ईमेल पर भी भेज सकते हैं। हमारे ईमेल का पता है audio@cit.nic.in।
0: और हाँ,
1: इंस्टा, फेसबुक, एक्स और लिंक्डइन पर भी आप CIT NCERT को फॉलो कर सकते हैं।
0: जी, तो चलिए अब रुख करते हैं आज के शैक्षिक कार्यक्रमों की ओर। तो आज का हमारा पहला कार्यक्रम है संवदिया।
1: ये कार्यक्रम हमें उस समय की याद दिलाता है जब इलेक्ट्रॉनिक संचार माध्यम नहीं थे। उन दिनों में संवाद या कोई सूचना लेकर जाने वाले को संवदिया कहा जाता था। संवदिया मात्र संदेश या पत्रवाहक ही नहीं थे, लेकिन समाज के महत्वपूर्ण सेतु थे जो एक दूसरे को जोड़ते थे। कार्यक्रम एक मार्मिक नाटक द्वारा प्रस्तुत किया गया है।
2: आजकल तो घर बैठे ही कहीं से कहीं खबर भेज सकते हैं और वहां का कुशल संवाद मंगवा सकते हैं। फिर आज बड़ी हवेली से, बड़ी बहुरिया की ओर से हरगोबिंद संवदिया की बुलाहट क्यों हुई?
3: हाँ, लो आ गई बड़ी हवेली। निश्चय ही कोई गुप्त समाचार ले जाना है। चांद सूरज को भी ना मालूम हो, परेवा पंछी तक न जाने। हाँ।
4: पाए लागू बड़ी बहुरिया।
5: आ गए भैया।
4: हाँ।
5: लो, ये पीढ़ी सरका लो, कुछ देर बैठ जाओ।
4: हाँ। हाँ।
5: हाँ।

हवेली तो अब नाम मात्र की ही बड़ी हवेली है, जहां नौकर नौकरानियों की भीड़ लगी रहती थी। आज हवेली की बड़ी बहुरिया अपने हाथ से सूपा में अनाज लेकर भटक रही है। ओह, कहां गए वो दिन। बड़े भैया क्या गए, जैसे सब खेल खत्म हो गया।

0: तीनों भाइयों ने आपस में झगड़ा शुरू किया। रैयतों ने जमीन पर दखल कर लिया। फिर तीनों भाई गांव छोड़कर शहर में जा बसे। रह गई बड़ी बहुरिया। कहां जाती बेचारी?
1: अरे ये मुदियाइन बूढ़ी काकी काहे बड़बड़ा रही है?
2: अरे देखो बड़ी बहुरिया, उधार का सौदा खाने में बड़ा मीठा लगता है, पर दाम देते समय कड़वा। मैं तो आज दाम लेकर ही उठूंगी यहाँ से। हाँ।
3: अरे मोदियाइन काकी, बाकी बकाया वसूलने का ये काबुली कायदा तो तुमने खूब सीखा है।
2: क्या कहा? काबुली कायदा? फिर काबुली का नाम लिया तो अच्छा ना होगा, कहे देती हूँ। हाँ
3: लो।
2: देखो जी, मैं फिर आऊंगी और अब की बार उधार लिए बिना हिलूंगी नहीं यहाँ से, कहे देती हूँ। बड़े आ जाते हैं उधार लेने, मांगने जाओ तो वापस नहीं करते।
4: हर गोविंद भाई, तुमको एक संवाद ले जाना है, आज ही। बोलो, चाहोगे ना?
3: कहाँ बड़ी बहुरिया?
4: मेरी माँ के पास।
3: माँ के पास? कहिए क्या संवाद है?
4: माँ से कहना मैं भाई भाभियों की नौकरी कर अपना पेट पालूंगी, लेकिन यहाँ अब नहीं रह सकूंगी। बथुआ साग खाकर कब तक जीऊं? किस लिए? किसके लिए?
3: बड़ी बहुरिया।

0: हर कोबिन भैया, ये 5 का नोट ही बचा है, अब पूरा राह खर्च भी नहीं जुटा सकी। आने का खर्च माँ से मांग लेना।
1: ना ना बड़ी बहुरिया, राह खर्च देने की जरूरत नहीं है, मैं इंतजाम कर लूंगा।
0: तुम कहाँ से इंतजाम करोगे? और सुनो, लगता है सुनते ही भैया तुम्हारे साथ आ जाएंगे।
1: अरे वो तो ठीक है, लेकिन मैं इंतजाम कर लूंगा बहुरिया, आप फिकर मत करिए। ये नोट रखिए,
0: अरे
1: हारे गाढ़े काम आएंगे। अच्छा, मैं आज 10 बजे की गाड़ी से ही निकल जाऊंगा।
0: अच्छा, मैं तुम्हारी राह देखती रहूंगी।
1: अच्छा, चलता हूँ।
2: संवाद यानी संदेश पहुंचाने का काम सहज नहीं होता। प्रत्येक शब्द को याद रखना, जिस सुर और स्वर में संवाद सुनाया गया है ठीक उसी ढंग से सुनाना बहुत कठिन है। बिना मजदूरी लिए ही जो गांव-गांव संवाद पहुंचाए उसको और क्या कहेंगे, निठल्ला, कामचोर, पेटू और क्या क्या नहीं। पर सच ये भी है कि गांव में कौन ऐसा है जिसके घर की माँ बहु बेटी का संवाद हर गोबिंद ने नहीं पहुंचाया है।

0: भाई साहब,
1: हाँ
0: खाना
1: जा रहे
0: बिहपुर में ये डाक गाड़ी रुकती है या नहीं?
1: अरे भैया, थाना बिहपुर में सभी गाड़ियां रुकती हैं।
0: अच्छा,
1: हाँ, और मैं भी वहीं पर उतरूंगा।
0: अच्छा,
1: घबराओ मत, बता दूंगा।
0: तो कितना समय और लगेगा?
1: अरे बस थोड़ी दूर है, आने ही वाला है। हाँ?
2: थाना बिहपुर पर गाड़ी पहुंची तो हर गोबिंद का जी भारी हो आया। बड़ी बहुरिया का संवाद सुनाते समय वो अपने कलेजे को कैसे संभालेगा? बड़ी बहुरिया के संवाद रह रह कर उसके कानों में गूंज रहे थे।
3: हर गोबिंद भाई, माँ से कहना भगवान ने आंखें फेर ली, लेकिन मेरी माँ तो है, किस लिए, किसके लिए? मैं बथुआ साग खाकर कब तक जीऊं, कब तक जीऊं?
0: बड़ी बहुरिया, हम क्या करें?
2: हरगोबिंद का मन कलपने लगा। गांव की लक्ष्मी ही गांव छोड़कर चली जाएगी तो गांव में क्या रह जाएगा? किस मुंह से वो ऐसा संवाद सुनाएगा? ये सोचते सोचते हरगोबिंद गांव पहुंच ही गया।
4: माँ, माँ देखो, हरगोबिंद काका आए हैं।
0: पाए लागू माँ जी।
5: जीते रहो हरगोबिंद बेटा, क्या समाचार है?
0: जी, आपके आशीर्वाद से सब ठीक है।
5: मेरी बेटी का कोई संवाद?
0: संवाद? जी, संवाद तो कोई नहीं।
5: हाँ?
0: बस मैं कल सिरसिया गांव आया था तो सोचा कि चलकर आप लोगों के दर्शन कर लूं।
5: तो तुम कोई संवाद लेकर नहीं आए हो?
0: जी नहीं, कोई संवाद नहीं। ऐसे ही बड़ी बहुरिया ने कहा है कि हाँ, अगर छुट्टी हुई तो दशहरे के समय गंगा जी के मेले में आकर माँ से भेंट मुलाकात कर जाऊंगी।
5: सो तो है।
0: अरे, छुट्टी मिलेगी तो कैसे? सारी गृहस्थी बड़ी बहुरिया के ऊपर ही तो है।
5: अरे हरगोबिंद, मैं तो बबुआ से कह रही थी कि जाकर अपनी दीदी को लिवा ला, यहीं रहेगी। अरे वहां अब क्या रह गया है उसका? जमीन जायदाद तो सब चली गई, तीनों देवर भी शहर जाकर बस गए, कोई खोज खबर भी नहीं लेता उसकी। अब तो मेरी बेटी अकेली रह गई है।
0: नहीं नहीं नहीं नहीं माँ जी, जमीन जायदाद अभी भी कुछ कम नहीं है। टूट फूट गई है तो भी है तो आखिर बड़ी हवेली, बड़ी बहुरिया का गांव ही परिवार है। हमारे गांव की लक्ष्मी है बड़ी बहुरिया, और गांव की लक्ष्मी गांव छोड़कर कैसे जाएगी माँ जी?
5: हाँ, सो तो है। चलो अच्छा है। बबुआ, अब थोड़ा जलपान कर लो।
0: अच्छा अच्छा माँ जी।
5: अरे हरगोबिंद, क्या सोच रहे हो?
0: हुँ?
5: कुछ खाते क्यों नहीं बबुआ?
2: हरगोबिंद ने थाली की ओर देखा। थाली में दाल भात, तीन किस्म की भाजी, घी, पापड़, अचार, इतना सब कुछ। उधर बड़ी बहुरिया का बथुआ साग उबाल कर खाना। हरगोबिंद के मुंह में एक निवाला भी न जा सका। वो सोचने लगा।

0: ये उसने क्या किया, वो किस लिए आया था, वो झूठ क्यों बोला। ये सोच सोच कर रात भर हरगोबिंद को नींद ही नहीं आई। उसकी आंखों के सामने बड़ी बहुरिया बैठी रही, सिसकती रही। उसने जी कड़ा किया, वो संवदिया है, उसका काम है सही सही संवाद पहुंचाना। उसने निर्णय लिया कि वो सुबह उठते ही बूढ़ी माता को बड़ी बहुरिया का सही संवाद अक्षर अक्षर सुना देगा। अगले दिन सुबह उठते ही वो माजी के पास जा पहुंचा।
1: माजी, अब आज्ञा दीजिए।
2: अरे,
1: मुझे पहली गाड़ी से वापस जाना होगा, कई दिन हो गए। अच्छा माजी, अब पैर लागू।
2: जीते रहो बेटा,
1: अब चलता हूँ।
3: क्यों भाई, रहा खर्च तो है।
1: अरे भैया जी, आपकी दया से किसी बात की कमी नहीं है।
3: अच्छा
1: अच्छा, राम राम।
3: राम राम
1: राम राम।

0: हरगोबिंद के पास तो बस कटिहार तक जाने के पैसे थे। गाड़ी में बैठते ही उसकी हालत अजीब हो गई। वो कहाँ आया था, क्या करके जा रहा है? बड़ी बहुरिया को क्या जवाब देगा?
1: कटिहार आ गया। उतर लो, जाना है जलालगढ़। टिकट कटिहार तक का ही है। जलालगढ़ है 20 कोस दूर। अरे बड़ी बहुरिया राह देख रही होगी, पैदल ही चलता हूं। बीस कोस की मंजिल भी भला कोई दूर की मंजिल है? जय हनुमान ज्ञान गुण सागर जय।

0: भूख से बेहाल, थकान से चूर, लड़खड़ाता हुआ हरगोबिंद बहुरिया के दरवाजे पर गिर पड़ा।
1: हरगोबिंद भाई आ गए? हाय, क्या हुआ तुम्हें? क्या हुआ?
2: बड़ी बहुरिया।
1: हरगोबिंद भाई, लो एक घूंट दूध ले लो, मुंह खोलो। हाँ लो, आप पी लो, पी लो। शाबाश शाबाश, हाँ शाबाश। अब जी कैसा है?
2: बड़ी बहुरिया, मुझे माफ कर दो।
1: कहे?
2: मुझे माफ कर दो,
1: पर
2: मैं तुम्हारा संवाद न कह सका। तुम गांव छोड़कर मत जाओ।
1: हरगोबिंद भाई,
2: मैं तुमको कोई कष्ट नहीं होने दूंगा, कोई कष्ट नहीं। मैं तुम्हारा बेटा। बड़ी बहुरिया, तुम सारे गांव की माँ हो। तुम्हारा सब काम करूंगा मैं।
1: हरगोबिंद भाई, तुम
2: मैं अब हम निठल्ला बैठा नहीं रहूंगा। बोलो बोलो बड़ी माँ, तुम गांव छोड़कर चली तो नहीं जाओगी? नहीं जाओगी ना? नहीं जाओगी ना?

0: protects the Earth's surface from the hot rays of the sun. The absence of this blanket in desert lands causes the desert to heat up rapidly during the day and to cool off rapidly at night. Deserts are an important part of nature's great plan. They are there like the dense forests and the deep oceans. Just because they are hot and dry, one should not look upon them as useless parts of the earth.
1: आशा है कि ये कार्यक्रम आपको जरूर पसंद आया होगा। अब इसी के साथ हम आज के कार्यक्रम के समापन की आपसे आज्ञा चाहेंगे, तो अब अपने मित्र अजीत
2: और विमलेश को उमंग कार्यक्रम की तकनीकी टीम के साथ कल तक के लिए आज्ञा दीजिए।
1: नमस्कार।
3: उमंग उमंग उमंग उमंग।
4: अभी आप प्रायोजित कार्यक्रम NCERT की 1302 कड़ी सुन रहे थे। ये आकाशवाणी का श्री विजयपुरम केंद्र है। इस समय सवेरे के 11:30 हुए हैं। श्रोताओं, आइए आपके मनोरंजन के लिए प्रस्तुत करते हैं फिल्मी गीतों का कार्यक्रम चित्रगीत। कार्यक्रम का सबसे पहला गीत हमने लिया है फिल्म जीना सिर्फ मेरे लिए से, जिसे गाया है अलका याग्निक, कविता कृष्णमूर्ति और बाबुल सुप्रियो ने। बोल समीर के हैं तथा संगीत से सजाया है नदीम श्रवण ने।

सुदेश भोसले और अलका याग्निक की आवाज़ों में आइए सुनते हैं फिल्म बागवान का ये गीत। बोल समीर के हैं तथा संगीत दिया है आदेश श्रीवास्तव ने।

अगला गीत हमने लिया है फिल्म तुमसे अच्छा कौन है से। आवाज़ें हैं सोनू निगम की, बोल समीर के हैं तथा संगीत दिया है नदीम श्रवण ने।

के और सुनिधि चौहान की आवाज़ों में आइए सुनते हैं फिल्म हमराज का ये गीत। बोल सुधाकर शर्मा की है तथा संगीत दिया है हिमेश रेशमिया ने।

क्रांति इस फिल्म का गीत आइए आपको सुनवाते हैं, जिसे गाया है उदित नारायण और अलका याग्निक ने, बोल आनंद बख्शी के हैं तथा संगीत दिया है जतिन ललित ने।

0: श्रोताओं, अभी आप तेलुगु कार्यक्रम सुन रहे थे। ये आकाशवाणी का श्री विजयपुरम केंद्र है। इस समय दोपहर के 12:30 हुए हैं। श्रोताओं, आइए सुनते हैं मलयालम कार्यक्रम।
1: മീഡിയം വേവ് 438.6 മീറ്റർ അഥവാ 684 കിലോ ഹെർട്സിൽ ഇത് ആകാശവാണി ശ്രീ വിജയപുരം നിലയം.

0: नमस्कार, आकाशवाणी समाचार के साथ मैं जागृति शर्मा। गृहमंत्री अमित शाह आज नई दिल्ली में भूमि पत्तन प्रबंधन प्रणाली का शुभारंभ करेंगे। इसका उद्देश्य प्रौद्योगिकी आधारित समाधानों के माध्यम से सीमा पार व्यापार और यात्रियों की आवाजाही को अधिक सुगम, पारदर्शी और सुरक्षित बनाना है। ये पहल स्मार्ट सीमा प्रबंधन के प्रति सरकार की प्रतिबद्धता को भी दर्शाती है। अंतर्राष्ट्रीय ब्रिक्स कृषि सम्मेलन मध्य प्रदेश के इंदौर में शुरू हो गया है। सम्मेलन में ब्राजील, चीन, रूस और दक्षिण अफ्रीका सहित 21 देशों के कृषि मंत्री, वरिष्ठ अधिकारी और विशेषज्ञ शामिल हैं। इसमें खाद्य सुरक्षा, जलवायु अनुकूल खेती, कृषि नवाचार, कृषि व्यापार और छोटे किसानों के सशक्तिकरण जैसे कई सत्रों का आयोजन किया जा रहा है। कृषि मंत्रियों के बीच एक विशेष संवाद 12 जून को आयोजित किया जाएगा। ब्रिक्स देशों की मंत्री स्तरीय बैठक 13 जून को होगी। स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री जगत प्रकाश नड्डा आज नई दिल्ली में प्रधानमंत्री सुरक्षित मातृत्व अभियान के 10 वर्ष पूरे होने के अवसर पर राष्ट्रव्यापी समारोहों का शुभारंभ करेंगे। इस अभियान का उद्देश्य सुरक्षित गर्भावस्था और मातृत्व को सुनिश्चित करना है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 9 जून 2016 को इस योजना की शुरुआत की थी। भारतीय जनता पार्टी के वरिष्ठ नेता नरेंद्र मोदी ने आज ही के दिन वर्ष 2024 को लगातार तीसरी बार प्रधानमंत्री पद की शपथ ली थी। अपने तीसरे कार्यकाल में मोदी सरकार आर्थिक विकास, बुनियादी ढांचे के विस्तार, सामाजिक कल्याण, रोजगार सृजन और वैश्विक मंच पर भारत की स्थिति को मजबूत करने जैसे प्रमुख क्षेत्रों पर विशेष ध्यान दे रही है। प्रवर्तन निदेशालय ने हैम्पटन स्काई रियल्टी लिमिटेड से जुड़े धन शोधन मामले में पंजाब, उत्तर प्रदेश और दिल्ली एनसीआर में 6 स्थानों पर छापेमारी की। इसमें पंजाब के लुधियाना और जालंधर, उत्तर प्रदेश में बरेली तथा दिल्ली एनसीआर क्षेत्र शामिल हैं। निदेशालय ने बताया कि हैम्पटन स्काई रियल्टी लिमिटेड से जुड़े व्यक्तियों और संस्थाओं के आवासीय तथा व्यावसायिक कार्यालय परिसरों में तलाशी अभियान चलाया गया। ये मामला आम आदमी पार्टी के नेता और पंजाब के मंत्री संजीव अरोड़ा से जुड़ा हुआ है। जम्मू कश्मीर के शीर्ष अधिकारियों ने श्री अमरनाथ जी यात्रा के सुचारू और सफल संचालन के लिए व्यवस्थाओं की समीक्षा की। जम्मू के संभागीय आयुक्त रमेश कुमार और जम्मू जोन के पुलिस महानिरीक्षक भीमसेन तूती ने कल रामबन जिले का दौरा कर सुरक्षा व्यवस्थाओं का जायजा लिया। भारत ने संयुक्त राष्ट्र में पाकिस्तान की कड़ी आलोचना करते हुए कहा है कि वह धार्मिक शब्दावली का इस्तेमाल करके अपने नागरिकों के बीच भारत के खिलाफ नफरत फैला रहा है। भारत ने पाकिस्तान पर सक्रिय आतंकवादी संगठनों को फितना अल हिंदुस्तान बताकर दुष्प्रचार फैलाने का भी आरोप लगाया। संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद के एक सत्र को संबोधित करते हुए भारत के स्थायी प्रतिनिधि और राजदूत पर्वता नेनी हरीश ने कहा कि पाकिस्तान भारत पर दोष मढ़ने का प्रयास कर रहा है।
1: पाकिस्तान द्वारा अफगानिस्तान में किए जा रहे हवाई हमलों में बड़ी संख्या में आम लोग हताहत हो रहे हैं। भारत इन हमलों की कड़ी निंदा करता है। अफगान क्षेत्र पर किए गए ऐसे सैन्य हमले अंतर्राष्ट्रीय कानून, संयुक्त राष्ट्र चार्टर और किसी भी देश की संप्रभुता के सिद्धांत का स्पष्ट उल्लंघन है। निर्दोष नागरिकों की मौत और विध्वंस को सैन्य कार्रवाई का नाम देकर उचित नहीं ठहराया जा सकता। अपनी आंतरिक विफलताओं और समस्याओं का दोष पड़ोसी देशों पर मढ़ना पाकिस्तान की पुरानी प्रवृत्ति रही है।
0: अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने कहा है कि अमेरिका ईरान के साथ एक मजबूत और शक्तिशाली समझौते के बेहद

श्रोताओं, अभी आप आनंद ले रहे थे कार्यक्रम सुगम संगीत में कुछ गज़लों की। मीडियम वेव 438.6 मीटर अर्थात 684 किलोहर्ट्स पर ये आकाशवाणी का श्री विजयपुरम केंद्र है। इस समय दोपहर के 1:30 हुए हैं। अब प्रस्तुत है कार्यक्रम आपके नाम फिल्मी पैगाम। श्रोताओं, आप सभी का हमारे इस कार्यक्रम आपके नाम फिल्मी पैगाम में तहे दिल से स्वागत है। आप भी हमारे इस कार्यक्रम के जुड़ सकते हैं। हमसे जुड़ने के लिए हमें व्हाट्सएप मैसेज करें। हमारा नंबर है 9474234000। इस नंबर पर हमें अपना नाम, पता, फिल्म का नाम लिख भेजें ताकि हम आपके मन पसंदीदा गीत आप तक पहुंचा सकें। इस कार्यक्रम की पहली फरमाइश हमने ली है नलेश्वर नगर नरवेल महाराष्ट्र से पीएस नहाकर, निर्मला नहाकर और विशाल नहाकर का, जो सुनना चाहते हैं फिल्म जानवर का ये गीत।

अगली फरमाइश हमने ली है यवतमाल विदर्भ महाराष्ट्र से संतोष खडसे और विनोद खडसे की। ये सुनना चाहते हैं फिल्म प्यार झुकता नहीं का ये गीत।

फिल्म उलझन का ये गीत सुनना चाहते हैं बीड शहर महाराष्ट्र से नंद किशोर घटे, संगीता घटे, साक्षी घटे, जयश्री मैत्रे, अंजलि कारवा, बाला साहेब कारवा और राम निवास अग्रवाल।

जिला मुरादाबाद ग्राम दुल्हापुर उत्तर प्रदेश से मोहम्मद फरमान, मोहम्मद सलमान, मोहम्मद इरफान, मोहम्मद इसरार और नरगिस खातून सुनना चाहते हैं फिल्म बर्फी का ये गीत।

अगली फरमाइश हमें आई है सदर बाजार मारवाड़ बिलाड़ा राजस्थान से रमेश चंद्र चौहान, जय नारायण चौहान, तरुण चौहान और प्रतीक चौहान का। ये सुनना चाहते हैं फिल्म अवतार का ये गीत।

अभी आप फरमाइशी गीतों का कार्यक्रम आपके नाम फिल्मी पैगाम सुन रहे थे। मीडियम वेव 438.6 मीटर अर्थात 684 किलोहर्ट्ज़ पर यह आकाशवाणी का श्री विजयपुरम केंद्र है। इस समय दोपहर के 2 बजने वाले हैं। थोड़ी ही देर में समाचारों का प्रसारण होगा, जिसे हम दिल्ली केंद्र से रिले करेंगे।

0: and Dambulla, Sri Lanka. With that, we end the midday news.
1: नमस्कार, आकाशवाणी से दोपहर समाचार के साथ मैं जागृति शर्मा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा, सरकार ने पिछले 12 वर्षों में युवाओं, महिलाओं और किसानों को सशक्त बनाया। भारत ने संयुक्त राष्ट्र में पाकिस्तान को नफरत की फैक्ट्री बताया। खाद्य सुरक्षा और किसानों के सशक्तिकरण के लिए इंदौर में 5 दिन के ब्रिक्स कृषि मंत्रियों की बैठक शुरू। रणनीतिक रूप से सड़क परियोजना जोजिला सुरंग का अंतिम चरण पूरा। कश्मीर घाटी और लद्दाख के बीच हर मौसम में संपर्क स्थापित होने की संभावना बढ़ी। प्रधानमंत्री सुरक्षित मातृत्व अभियान के 10 वर्ष पूरे। राष्ट्रव्यापी समारोह आज से शुरू होंगे। कर्नाटक, केरल और माहे में मूसलाधार वर्षा का रेड अलर्ट। दिल्ली, पंजाब, हिमाचल प्रदेश, जम्मू कश्मीर, लद्दाख, उत्तर प्रदेश, विदर्भ और पश्चिमी राजस्थान में लू का अनुमान। और पुरुष क्रिकेट में दांबुला में एक दिवसीय त्रिकोणीय श्रृंखला के पहले मुकाबले में भारत ए ने श्रीलंका ए को 278 रन का लक्ष्य दिया। अब समाचार विस्तार से। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा है कि सरकार ने पिछले 12 वर्षों में देश के युवाओं, महिलाओं और किसानों को सशक्त बनाया है। सोशल मीडिया पोस्ट में श्री मोदी ने कहा कि 140 करोड़ नागरिकों की राष्ट्र प्रथम की भावना से प्रेरित होकर सरकार विश्वास, विकास और जन कल्याण के लिए समर्पित है। श्री मोदी ने कहा कि पिछले 12 वर्षों में सबका साथ सबका विकास के सिद्धांत से प्रेरित निरंतर प्रयासों के माध्यम से देश एक मजबूत और आत्मनिर्भर भारत बनने की ओर अग्रसर है। गृहमंत्री अमित शाह ने कहा कि प्रधानमंत्री मोदी के नेतृत्व में पिछले 12 वर्षों में भारत ने गरीबों के कल्याण और अभूतपूर्व विकास दोनों को एक साथ साकार होते देखा है। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने कहा कि प्रधानमंत्री के दूरदर्शी नेतृत्व ने पिछले 12 वर्षों में सेवा भावना के माध्यम से शासन को नया रूप दिया है। विदेश मंत्री डॉ एस जयशंकर ने कहा कि पिछले 12 वर्षों में सरकार ने आम नागरिकों के लिए पासपोर्ट जारी करने और दस्तावेजों के सत्यापन को सुगम बनाया है और नागरिकों को पूरा सहयोग प्रदान किया गया है। भारतीय जनता पार्टी के वरिष्ठ नेता नरेंद्र मोदी ने आज ही के दिन वर्ष 2024 को लगातार तीसरी बार प्रधानमंत्री पद की शपथ ली थी। अपने तीसरे कार्यकाल में मोदी सरकार आर्थिक विकास, बुनियादी ढांचे के विस्तार, सामाजिक कल्याण, रोजगार सृजन और वैश्विक मंच पर भारत की स्थिति को मजबूत करने जैसे प्रमुख क्षेत्रों पर विशेष ध्यान दे रही है। गृहमंत्री अमित शाह आज नई दिल्ली में भूमिपत्तन प्रबंधन प्रणाली का शुभारंभ करेंगे। इसका उद्देश्य प्रौद्योगिकी आधारित समाधानों के माध्यम से सीमा पार व्यापार और यात्रियों की आवाजाही को अधिक सुगम, पारदर्शी और सुरक्षित बनाना है। ये पहल स्मार्ट सीमा प्रबंधन के प्रति सरकार की प्रतिबद्धता को भी दर्शाती है। भारत ने संयुक्त राष्ट्र में पाकिस्तान की कड़ी आलोचना करते हुए कहा है कि वह धार्मिक शब्दावली का इस्तेमाल करके अपने नागरिकों के बीच भारत के खिलाफ नफरत फैला रहा है। भारत ने पाकिस्तान पर सक्रिय आतंकवादी संगठनों को फितना अल हिंदुस्तान बताकर दुष्प्रचार फैलाने का भी आरोप लगाया। संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद के एक सत्र को संबोधित करते हुए भारत के स्थायी प्रतिनिधि और राजदूत पर्वतानेनी हरीश ने कहा कि पाकिस्तान भारत पर दोष मढ़ने का प्रयास कर रहा है। भारत ने पाकिस्तान के सीमा पार सैन्य अभियानों की निंदा की और अफगानिस्तान में हवाई हमलों के कारण हुई मौतों के लिए पाकिस्तान को जिम्मेदार ठहराया है।
2: पाकिस्तान द्वारा अफगानिस्तान में किए जा रहे हवाई हमलों में बड़ी संख्या में आम लोग हताहत हो रहे हैं। भारत इन हमलों की कड़ी निंदा करता है। अफगान क्षेत्र पर किए गए ऐसे सैन्य हमले अंतर्राष्ट्रीय कानून, संयुक्त राष्ट्र चार्टर और किसी भी देश की संप्रभुता के सिद्धांत का स्पष्ट उल्लंघन है। निर्दोष नागरिकों की मौत और विध्वंस को सैन्य कार्रवाई का नाम देकर उचित नहीं ठहराया जा सकता। अपनी आंतरिक विफलताओं और समस्याओं का दोष पड़ोसी देशों पर मढ़ना पाकिस्तान की पुरानी प्रवृत्ति रही है।
1: ये समाचार हमारी वेबसाइट www.newsonair.gov.in और हमारे न्यूज ऑन एआईआर ऐप पर भी उपलब्ध हैं। दोपहर समाचार में आपका फिर स्वागत है। अंतर्राष्ट्रीय ब्रिक्स कृषि सम्मेलन मध्य प्रदेश के

0: इंदौर में शुरू हो गया है। सम्मेलन में ब्राजील, चीन, रूस और दक्षिण अफ्रीका सहित 21 देशों के कृषि मंत्री, वरिष्ठ अधिकारी और विशेषज्ञ शामिल हैं। इसमें खाद्य सुरक्षा, जलवायु अनुकूल खेती, कृषि नवाचार, कृषि व्यापार और छोटे किसानों के सशक्तिकरण जैसे कई सत्रों का आयोजन किया जा रहा है। कृषि मंत्रियों के बीच एक विशेष संवाद 12 जून को आयोजित किया जाएगा। ब्रिक्स देशों की मंत्रिस्तरीय बैठक 13 जून को होगी। सड़क परियोजना जोजिला सुरंग का अंतिम चरण आज सफलतापूर्वक पूरा हो गया है। इससे कश्मीर घाटी और लद्दाख के बीच हर मौसम में संपर्क स्थापित होने की संभावना बढ़ गई है। सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्री नितिन गडकरी ने रिमोट बटन दबाकर लद्दाख के मिनमर्ग में जोजिला सुरंग के पूर्वी प्रवेश द्वार के पास विस्फोट किया और इसे कश्मीर तथा लद्दाख के बीच हर मौसम में संपर्क सुनिश्चित करने का एक ऐतिहासिक क्षण बताया। जम्मू कश्मीर के उपराज्यपाल मनोज सिन्हा और मुख्यमंत्री उमर अब्दुल्ला भी इस अवसर पर उपस्थित थे। इस अवसर पर नितिन गडकरी ने कहा कि ये सुरंग श्रीनगर और लेह के बीच हर मौसम में संपर्क प्रदान करेगी। समुद्र तल से 11,578 फीट की ऊंचाई पर निर्मित जोजिला सुरंग पूर्ण होने पर एशिया की सबसे लंबी सड़क सुरंग बन जाएगी। स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री जगत प्रकाश नड्डा आज नई दिल्ली में प्रधानमंत्री सुरक्षित मातृत्व अभियान के 10 वर्ष पूरे होने के अवसर पर राष्ट्रव्यापी समारोहों का शुभारंभ करेंगे। इस अभियान ने देश भर में मातृ स्वास्थ्य सेवाओं को मजबूत करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है। ब्यौरा हमारे संवाददाता से।
1: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज ही के दिन 2016 में इस योजना की शुरुआत की थी, जिसका उद्देश्य सभी गर्भवती महिलाओं को मुफ्त, सुरक्षित और बेहतर प्रसव पूर्व स्वास्थ्य सेवाएं उपलब्ध कराना है। इस योजना के तहत गर्भावस्था के दौरान नियमित जांच, जोखिमों की समय पर पहचान और आवश्यक इलाज की सुविधा दी जाती है, ताकि माँ और बच्चे दोनों का स्वास्थ्य सुरक्षित रहे। इस योजना के तहत अब तक 7,50,00,000 से अधिक गर्भवती महिलाएं लाभ उठा चुकी हैं। सरकार के लगातार प्रयासों के कारण भारत में मातृ मृत्यु दर में काफी कमी आई है। 2014-16 में जहां हर 1,00,000 प्रसव पर 130 महिलाओं की मृत्यु होती थी, वह 2022-24 में घटकर 87 रह गई है। इस योजना के 10 वर्ष पूरे होने के अवसर पर ₹75 का एक स्मारक सिक्का और ₹5 का एक विशेष डाक टिकट भी जारी किए जाएंगे। दीपेंद्र कुमार, आकाशवाणी समाचार, दिल्ली।
0: प्रवर्तन निदेशालय ने हैम्पटन स्काई रियल्टी लिमिटेड से जुड़े धन शोधन मामले में पंजाब, उत्तर प्रदेश और दिल्ली एनसीआर में 6 स्थानों पर छापेमारी की। इसमें पंजाब के लुधियाना और जालंधर, उत्तर प्रदेश में बरेली तथा दिल्ली एनसीआर क्षेत्र शामिल हैं। निदेशालय ने बताया कि हैम्पटन स्काई रियल्टी लिमिटेड से जुड़े व्यक्तियों और संस्थाओं के आवासीय तथा व्यावसायिक कार्यालय परिसरों में तलाशी अभियान चलाया गया। ये मामला आम आदमी पार्टी के नेता और पंजाब के मंत्री संजीव अरोड़ा से जुड़ा हुआ है। सरकारी ई मार्केटप्लेस जिम ने सार्वजनिक खरीद को पूरी तरह से डिजिटल कर दिया है। आज नई दिल्ली में संवाददाता सम्मेलन में जिम के मुख्य कार्यकारी अधिकारी मिहिर कुमार ने कहा कि पिछले 12 वर्षों में पारदर्शिता, प्रौद्योगिकी, समावेशन और नागरिक केंद्रित सेवा वितरण के बल पर भारत ने ये उल्लेखनीय वृद्धि की है। श्री कुमार ने कहा कि जिम पर भाग लेने वाले सूक्ष्म और लघु उद्यमों की संख्या 2016-17 में लगभग 2300 से बढ़कर आज लगभग 12,00,000 हो गई है। जम्मू कश्मीर के शीर्ष अधिकारियों ने श्री अमरनाथ जी यात्रा के सुचारू और सफल संचालन के लिए व्यवस्थाओं की समीक्षा की। जम्मू के संभागीय आयुक्त रमेश कुमार और जम्मू जोन के पुलिस महानिरीक्षक भीम सेन तुती ने कल रामबन जिले का दौरा कर सुरक्षा व्यवस्थाओं का जायजा लिया। पश्चिम एशिया में ईरान और इसराइल के बीच तनाव कम हुआ है, प्रत्यक्ष झड़पों में भी कमी आई है। ब्यौरा हमारे संवाददाता से।
2: पश्चिम एशिया में पिछले कुछ दिनों से जारी ईरान इसराइल सैन्य तनाव के बाद फिलहाल स्थिति बेहद संवेदनशील लेकिन अपेक्षाकृत शांत बनी हुई है। तनाव की शुरुआत बेरूत में हिजबुल्लाह के ठिकानों पर इसराइल की कार्रवाई से हुई। इसके बाद ईरान की ओर से उत्तरी इसराइल की दिशा में मिसाइलें दागी गयी। जवाब में इसराइल ने ईरान समर्थित ठिकानों को निशाना बनाया, जिससे क्षेत्रीय सुरक्षा को लेकर चिंताएं और गहरा गयी। इसराइल के प्रधानमंत्री बिन्यामिन नेतन्याहू ने कहा कि ईरान से जुड़ा मोर्चा फिलहाल नियंत्रण में है, लेकिन किसी भी नए हमले का कड़ा जवाब दिया जाएगा। वहीं ईरान का कहना है कि क्षेत्र में स्थायी शांति और तनाव में कमी तभी संभव है जब गाजा और लेबनान में इसराइली सैन्य अभियान समाप्त किए जाएंगे। इस बीच कूटनीतिक स्तर पर बातचीत जारी है। अमरीकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने संकेत दिया है कि स्थिति को स्थिर रखने और व्यापक समझौते की दिशा में चल रही वार्ताएं निर्णायक दौर में पहुंच रही हैं। दुबई से विनोद कुमार की रिपोर्ट के साथ

0: समाचार कक्ष से प्राची वाजपेयी।
1: अमरीका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने कहा है कि अमरीका ईरान के साथ एक मजबूत और शक्तिशाली समझौते के बेहद करीब है। उन्होंने कहा कि हालिया सीमा पार मिसाइल हमलों के बावजूद द्विपक्षीय वार्ता अभी भी आगे बढ़ रही है।
2: हम एक मजबूत और प्रभावी समझौते के बेहद करीब हैं। यदि बमबारी की जाती है तो बड़ी संख्या में लोगों की जान जा सकती है और ऐसा कौन चाहेगा। हमारा प्रयास है कि एक ऐसा औपचारिक समझौता हो जो सैन्य कार्रवाई से भी अधिक प्रभावी साबित हो। अब तक यह देखा गया है कि नाकाबंदी का असर बमबारी की तुलना में कहीं अधिक शक्तिशाली रहा है, इसलिए हम शांतिपूर्ण और कूटनीतिक समाधान को प्राथमिकता दे रहे हैं।
1: कोलंबो उच्च न्यायालय ने श्रीलंका के पूर्व उपमंत्री सरना गुणवर्धना को भ्रष्टाचार के आरोप में दोषी ठहराया है। ये आरोप 2006 में विकास लॉटरी बोर्ड के अध्यक्ष के रूप में उनके कार्यकाल के दौरान किराए पर वाहन खरीदने से संबंधित है। यह फैसला उच्च न्यायालय के न्यायाधीश मोहम्मद मिहाइल ने भ्रष्टाचार के आरोपों की जांच करने वाले आयोग द्वारा दायर एक मामले में सुनाया है। फिलीपींस में कल दक्षिणी क्षेत्र के तट के पास आए 7.8 तीव्रता के शक्तिशाली भूकंप से मृतकों की संख्या 37 हो गई है। भूकंप में 500 से अधिक लोग घायल हुए हैं जबकि 4 लोग लापता हैं। भूकंप का केंद्र फिलीपींस के मिंडानाओ द्वीप के तट से दूर था। भूकंप के कारण 20,000 से अधिक लोग विस्थापित हुए हैं। भूकंप का केंद्र फिलीपींस के मिंडानाओ द्वीप के तट से दूर था। घरेलू शेयर बाजार के संवेदी सूचकांक में आज दोपहर के कारोबार में 0.4% की बढ़त दर्ज की गई। अंतिम समाचार मिलने तक सेंसेक्स 267 अंक बढ़कर 73,791 और निफ्टी 86 अंक बढ़कर 23,209 पर था। पूरा देश आज महान स्वतंत्रता सेनानी और धरती आबा भगवान बिरसा मुंडा की पुण्यतिथि पर उन्हें श्रद्धांजलि अर्पित कर रहा है। ब्यौरा हमारे संवाददाता से।
3: भारतीय स्वतंत्रता संग्राम के इतिहास में एक ऐसा नाम जिसने जल जंगल और जमीन की रक्षा के लिए ब्रिटिश हुकूमत की नींव हिला दी। हम बात कर रहे हैं धरती आबा यानी भगवान बिरसा मुंडा की। उन्होंने न सिर्फ अंग्रेजों के दमनकारी कानूनों का पुरजोर विरोध किया बल्कि समाज में फैल रहे धर्मांतरण और लाल फीताशाही के खिलाफ भी बिगुल फूंका। आज सुबह से ही रांची के कोकर समाधि स्थल और बिरसा चौक पर श्रद्धांजलि देने वालों का तांता लगा हुआ है। राज्यपाल संतोष कुमार गंगवार और मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन सहित राज्य के तमाम मंत्रियों और गणमान्य नेताओं ने यहां पहुंचकर भगवान बिरसा के चरणों में माल्यार्पण किया है। रांची के अलावा उनके जन्म स्थान खूंटी के उलिहातू सहित राज्य भर के जनजातीय बहुल इलाकों में विशेष सांस्कृतिक और जागरूकता सभाएं आयोजित की जा रही हैं। आकाशवाणी समाचार के लिए रांची से मैं महविश रहमान।
1: भगवान बिरसा मुंडा की पुण्यतिथि पर उपराष्ट्रपति सीपी राधाकृष्णन, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और गृहमंत्री अमित शाह ने उन्हें श्रद्धांजलि अर्पित की है। मौसम विभाग ने बृहस्पतिवार तक कर्नाटक, अरुणाचल प्रदेश, असम और मेघालय में तेज बारिश का अनुमान व्यक्त किया है। विभाग ने आज कर्नाटक, केरलम और माहे के कुछ हिस्सों में मूसलाधार बारिश का रेड अलर्ट जारी किया है। अगले दो दिनों में उप हिमालयी पश्चिम बंगाल, सिक्किम, रायलसीमा, तमिलनाडु, पुदुचेरी और उत्तर पूर्वी भारत के कुछ स्थानों पर भी इसी तरह का मौसम बना रहेगा। दिल्ली, हरियाणा, चंडीगढ़, पंजाब, हिमाचल प्रदेश, जम्मू और कश्मीर, लद्दाख, उत्तर प्रदेश, विदर्भ तथा पश्चिमी राजस्थान में लू चलने की आशंका है। पुरुष क्रिकेट में आज भारत ए और श्रीलंका ए के बीच एक दिवसीय त्रिकोणीय श्रृंखला के पहले मुकाबले में भारत ए की टीम ने 278 रनों का लक्ष्य दिया है। ये मैच श्रीलंका के रंगिरी दाम्बूला अंतर्राष्ट्रीय स्टेडियम में खेला जा रहा है। भारतीय टीम ने 50 ओवर में 6 विकेट के नुकसान पर 277 रन बनाए हैं। भारत के लिए ऋतुराज गायकवाड़ के शतक और तिलक वर्मा के 150 रनों की साझेदारी ने भारत को महत्वपूर्ण भूमिका दिलाने की मदद की है। अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा, सरकार ने पिछले 12 वर्षों में युवाओं, महिलाओं और किसानों को सशक्त बनाया। भारत ने संयुक्त राष्ट्र में पाकिस्तान को नफरत की फैक्ट्री बताया। खाद्य सुरक्षा और किसानों के सशक्तिकरण के लिए इंदौर में 5 दिन के ब्रिक्स कृषि मंत्रियों की बैठक शुरू। रणनीतिक रूप से महत्वपूर्ण सड़क परियोजना जोजिला सुरंग का अंतिम चरण पूरा। कश्मीर घाटी और लद्दाख के बीच हर मौसम में संपर्क स्थापित होने की संभावना बढ़ी। प्रधानमंत्री सुरक्षित मातृत्व अभियान के 10 साल पूरे। राष्ट्रव्यापी समारोह

0: से शुरू होंगे। इसके साथ ही दोपहर समाचार का ये अंक समाप्त हुआ। नमस्कार।
1: होने वाले हैं अब प्राइमरी चैनल पर हमारी पहली सभा समाप्त होती है। अपनी दूसरी सभा में शाम 4 बजे हम आपकी सेवा में फिर उपस्थित होंगे। तब तक के लिए आपसे अनुमति चाहते हैं, लेकिन अब से लेकर शाम 4 बजे तक हम आपसे जुड़े रहेंगे 100.9 MHz FM पर स्थानीय कार्यक्रमों के साथ। नमस्कार।

0: शाम 4 बजे तक हम आपसे जुड़े रहेंगे 100.9 मेगाहर्ट्ज़ एफएम पर स्थानीय कार्यक्रमों के साथ। नमस्कार।
1: विविध भारती एफएम 3 विजयपुरम
2: 100.9 आपका हम सफर।

0: हम बोल रहे हैं विविध भारती FM श्री विजयपुरम केंद्र से और हमारा प्रसारण उपलब्ध है 100.9 मेगाहर्ट्ज़ पर। तो आइए आपके मनोरंजन के लिए प्रस्तुत करते हैं फिल्मी गीतों का कार्यक्रम नॉनस्टॉप म्यूजिक।
1: नॉनस्टॉप म्यूजिक।

0: विधिक सेवा प्राधिकरण अधिनियम 1987 की धारा 12 के तहत पात्र नागरिक निशुल्क कानूनी सहायता न्याय बंधु मोबाइल ऐप और www.probono-toj.in से प्राप्त कर सकते हैं।
1: सपनों को हकीकत में बदलने के लिए सही समय पर सही कदम उठाना जरूरी है। भारतीय वायुसेना में कमीशन ऑफिसर बनने के लिए AFCAT 2 of 2026 के आवेदन 20 मई से खुले हैं। विवरण के लिए विजिट करें afcat.edcil.co.in पर।
2: लाइफ फास्ट मोड पे चल रही है, घर बैठे बैंकिंग सुविधा के लिए स्विच टू SBI प्रीमियर बैंकिंग,
3: जहां आपको मिलता है एक डेडिकेटेड वर्चुअल रिलेशनशिप एसोसिएट जो समझे आपकी जरूरत, दे स्मार्ट एडवाइस और करे हर काम इन लाइटनिंग स्पीड, यानी सिर्फ सिमलेस बैंकिंग एंड मेनी अदर एक्साइटिंग बेनिफिट्स।
2: आज ही विजिट करें अपनी नियरेस्ट SBI ब्रांच और प्रीमियर बैंकिंग एक्टिवेट करें। टर्म्स एंड कंडीशंस अप्लाई।

Ha!

0: लाइफ फास्ट मोड पे चल रही है, घर बैठे बैंकिंग सुविधा के लिए स्विच टू SBI प्रीमियर बैंकिंग,
1: जहां आपको मिलता है एक डेडिकेटेड वर्चुअल रिलेशनशिप एसोसिएट जो समझे आपकी जरूरत, दे स्मार्ट एडवाइस और करे हर काम इन लाइटनिंग स्पीड, यानी सिर्फ सिमलेस बैंकिंग एंड मेनी अदर एक्साइटिंग बेनिफिट्स।
0: आज ही विजिट करें अपनी नियरेस्ट SBI ब्रांच और प्रीमियर बैंकिंग एक्टिवेट करें। टर्म्स एंड कंडीशंस अप्लाई।

श्रोताओं, अभी आप सुन रहे थे कार्यक्रम नॉनस्टॉप म्यूजिक। इस कार्यक्रम में आज आपको सुनवाया गया जीना सिर्फ मेरे लिए, तुमसे अच्छा कौन है, खुशी, हॉलीडे, कल हो ना हो, अनजान, चांदनी, दिल का क्या कसूर, राजा बाबू, बोल राधा बोल और बेटा जैसे फिल्मों के गाने।

हम बोल रहे हैं विविध भारती एफएम श्री विजयपुरम केंद्र से और हमारा प्रसारण उपलब्ध है 100.9 मेगाहर्ट्ज पर। इस समय दोपहर के 3:30 हुए हैं। अब प्रस्तुत है फिल्मी गीतों का विशेष कार्यक्रम यूं ही गाते रहो। दोस्तों, हमारे जीवन में कुछ पल ऐसे होते हैं जो सीधे दिल को छू जाते हैं, जैसे हर पल हमें एक नई उम्मीद देता है, एक ऐसा एहसास जो हमें हर मुश्किल के बाद भी आगे बढ़ने की ताकत देता है। यही वो पल है जो हर दिन को खास बना देता है।

यूं ही गाते रहो। दोस्तों, हमारे जीवन में कुछ पल ऐसे होते हैं जो सीधे दिल को छू जाते हैं, जैसे हर पल हमें एक नई उम्मीद देता है, एक ऐसा एहसास जो हमें हर मुश्किल के बाद भी आगे बढ़ने की ताकत देता है। यही वो पल है जो हर दिन को खास बना देता है।

दोस्तों, हमारा जीवन अक्सर सरल बातों में गहराई ढूंढता है और यही एहसास एक आशिक को उसकी आशिकी तक ले जाता है। उसी एहसास से उसकी धड़कन जुड़ती है, उसी से उसकी दिन और उसी से उसकी रात होती है, ठीक इस गीत की तरह।

जीवन का असली महत्व केवल अपने लिए जीने में नहीं, बल्कि दूसरों के लिए कुछ करने में है। जब हम किसी के चेहरे पर मुस्कान लाते हैं, तभी जीवन का वास्तविक आनंद मिलता है।

दोस्तों, मौसम मस्ताना हो, रास्ता अनजाना हो और दिल भी दीवाना हो, तो हवाओं में हल्की सी ठंडक, दिल में मीठी सी खुशी और

0: मीडियम वेव 438.6 मीटर अर्थात 684 किलोहर्ट्स पर ये आकाशवाणी का श्री विजयपुरम केंद्र है। शाम के 4 बजे हैं। हमारी आज की दूसरी सभा अब आरंभ होती है। सभा के आरंभ में लीजिए सुनिए निकोबारी कार्यक्रम।
1: सिल्ला में जी रोक हरे हमांग इंग्रे तका इंगम मीडियम वे 438.6 मीटर है इंगम 684 किलोहर्ट्स लगती है आंग इन रमांगलगी आकाशवाणी इसरी विजयपुरा मनगी निकोबारी प्रोग्राम थांग
2: Evanu ya hong nyewang jekerel kui jeku ala ku aw kare at kale en min ka ngaya ni hinga malaria in wahan lo ten ngam malaria in wale ta kinapa hi an tangam eno felis jeng kan miso ke ye hi at ilaren le ene rengat miho ay boy hangen wahawa unat majerta anu wa ye hi haro un her kiran nup tayu ngamak ni tasu pati hi unat lene in kupi kui nup tenki hek in kukui nup handri ye hi yi hi watang avanu ya ilaren ay hamuk tare ay jek ka mahamre miho in toho miho in ngaj hol rende ay lal ngam malaria in wa hakola ala re ay juh ngam malaria lamak ते इनगम स्टेट हेल्थ सोसाइटी अन्गी मिनका तलोनी

0: Ikutnya, Mary Semil Apanja nuntai menehang hitin ke ingi program atau ngare banaya perona ngadre asa ngam terhayan berita ke tu berita ki telek tensin ngai hang ngatel ngang tengamu hek inurej hang rong kita kasate ite fan ke yo telah harap salam yan ngai.
1: अभी आप निकोबारी कार्यक्रम सुन रहे थे। यह आकाशवाणी का श्री विजयपुरम केंद्र है। 4:30 हुए हैं। सुगम संकेत। आज इस कार्यक्रम में सुनिए अनुराधा पौडवाल और जसवंत सिंह की आवाज़ों में चंद गज़लें। तो लीजिए, पहले पेश है अनुराधा पौडवाल और जसवंत सिंह का गाया सुमन सरीन का कलाम।

सुगम संगीत के इस कार्यक्रम में अभी आप अनुराधा पौडवाल और जसवंत सिंह की आवाजों में चंद गजलें सुन रहे थे। ये आकाशवाणी का श्री विजयपुरम केंद्र है। 4:40 हुए हैं। लीजिए अब सुनिए हमारे केंद्र से आज के इस सभा के शेष व कल प्रसारित होने वाले कार्यक्रमों की रूपरेखा। पहले आज के इस सभा के शेष कार्यक्रम। फिल्मी गीतों का कार्यक्रम बहारों की शाम आप सुनेंगे शाम 4:45 पर। शाम 5 बजे तमिल कार्यक्रम में महिलाओं के लिए कार्यक्रम होगा मगलीर उलगम। बंगला कार्यक्रम में 5:30 पर आप लोकगीत सुन पाएंगे। संध्या 6 बजे किसान वाणी कार्यक्रम में आप कृषि विभाग के निदेशक श्री देवव्रत बसंतिया से की गई बातचीत सुनेंगे। विषय रहेगा खेत बचाओ अभियान। फिल्मी गीतों का कार्यक्रम शामे बहार का आनंद ले पाएंगे 6:30 पर। 7:15 पर मौसम की जानकारी, जलियानों का यात्रा कार्यक्रम व जन सूचनाएं आप सुन सकेंगे। फिल्मी गीतों का कार्यक्रम दिल ने फिर याद किया का आप आनंद ले सकेंगे 7:20 पर। 7:30 पर युवाणी में देश की शान कार्यक्रम केंद्रित होगा धरती आबा भगवान बिरसा मुंडा। दिल्ली से प्रसारित सरकार के 12 वर्ष होने के उपलक्ष्य में विभिन्न विषयों पर आधारित विशेष द्विभाषी कार्यक्रम श्रृंखला की रिकॉर्डिंग आप सुनेंगे रात्रि 8 बजे। 8:35 पर रोजगार समाचार व गौरवगान प्रसारित किया जाएगा और रात्रि 10 बजे फरमाइशी फिल्मी गीतों का कार्यक्रम आप सुनेंगे संदेशे आते हैं। इन कार्यक्रमों के अतिरिक्त रात 9:15 पर स्पॉटलाइट, 9:30 पर मनी टॉक तथा रात 9:45 पर मंथन कार्यक्रम आप सुनेंगे जिसे हम अपने दिल्ली केंद्र से रिले करेंगे। लेकिन रात्रि 10 बजे विविध भारती मुंबई से प्रायोजित कार्यक्रम होगा छाया गीत। ये तो थे आज के इस सभा के शेष कार्यक्रम और अब कल प्रसारित होने वाले कार्यक्रमों की रूपरेखा। हमारी पहली सभा आरंभ होगी कल सुबह 5:25 पर। 5:30 पर अनमोल विचार, तत्पश्चात प्रभाती वंदना आप सुनेंगे। एग्री टिप्स में जानेंगे टमाटर में कीट वैध नियंत्रण विषय पर जानकारी 5:55 पर। 6:10 पर जलियानों की यात्रा कार्यक्रम से हम आपको अवगत करवाएंगे। इंद्रधनुष कार्यक्रम केंद्रित होगा गम शीर्षक पर 6:15 पर। 6:30 पर रामचरित मानस गान प्रसारित किया जाएगा। मौसम की जानकारी व कार्यक्रमों का विवरण बताया जाएगा 6:50 पर। सुबह 7 बजे आप सुन पाएंगे जन सूचनाएं। फिल्मी देशभक्ति गीतों से सजा कार्यक्रम देश रागनी का आनंद ले पाएंगे 7:15 पर। इसी समय विविध भारती मुंबई से आप सुनेंगे प्रायोजित कार्यक्रम भूले बिसरे गीत। 7:30 पर गुड मॉर्निंग अंडमान में

साहित्य दर्पण आप सुनेंगे और कुछ फिल्मी गीत सुनवाया जाएगा। सुगम संगीत के कार्यक्रम में गायिका होंगी ऋचा शर्मा 8:30 पर। सुबह 9 बजे फिल्मी गीतों का कार्यक्रम तराने सुहाने का आप आनंद ले पाएंगे। शास्त्रीय संगीत के कार्यक्रम में 9:30 पर कलाकार होंगी वीणा सहस्त्रबुद्धे। सुबह 10 बजे फिल्मी गीतों का कार्यक्रम होगा गीत गाथा चल। प्रायोजित कार्यक्रम NCERT का समय रहेगा दिन के 11 बजे। 11:30 पर आप सुनेंगे चित्रलोक कार्यक्रम। तेलुगु कार्यक्रम में दोपहर 12 बजे महिलाओं के लिए कार्यक्रम होगा वनिता वानी। 12:30 पर मलयालम कार्यक्रम में फिल्मी गीत आप सुन सकेंगे। महफिल कवाली कार्यक्रम में कवाल होंगे इकबाल साबरी और अफजल साबरी 1:10 पर। 1:30 पर फरमाइशी फिल्मी गीतों का कार्यक्रम आप सुनेंगे आपके नाम फिल्मी पैगाम। दोपहर बाद 2:30 पर मौसम की जानकारी के पश्चात प्राइमरी चैनल पर पहली सभा का समापन होगा, लेकिन FM 100.9 MHz पर स्थानीय प्रसारण जारी रहेगा, जिसमें लाइव फोन आउट फरमाइशी फिल्मी गीतों का कार्यक्रम हेलो डियर फ्रेंड्स और 3:30 पर फिल्मी गीतों का विशेष कार्यक्रम आप सुनेंगे यूं ही गाते रहो। हमारी दूसरी सभा आरंभ होगी शाम 4 बजे निकोबारी कार्यक्रम के साथ, जिसमें सूचनाओं के अलावा कनका गांव के सदस्यों द्वारा प्रस्तुत गीत सुनेंगे। 4:30 पर प्रायोजित कार्यक्रम आप सुनेंगे लम्हे। फिल्मी गीतों का कार्यक्रम बहारों की शाम का समय रहेगा 4:45। शाम 5 बजे तमिल कार्यक्रम में आप एक ही संगीतकार के संगीत निर्देशन में तैयार गीत सुनेंगे। बांग्ला कार्यक्रम में 5:30 पर आधुनिक गीत सुनवाया जाएगा। संध्या 6 बजे कृषि जगत कार्यक्रम में आप वर्षा के मौसम में मुर्गी पालन में सावधानियां विषय पर वैज्ञानिक डॉक्टर NC चौधरी के साथ की गई बातचीत सुनेंगे। फिल्मी गीतों का कार्यक्रम दर्द भरे नगमे का आप आनंद ले पाएंगे 6:30 पर। 7:30 पर युवाणी में आप सुनेंगे गीतों भरी कहानी। सरकार के 12 वर्ष पूर्ण होने के उपलक्ष्य में विभिन्न विषयों पर आधारित विशेष द्विभाषी कार्यक्रम श्रृंखला की रिकॉर्डिंग आप सुनेंगे रात 8 बजे। 8:35 पर रोजगार समाचार व गौरव गान प्रसारित किया जाएगा। रात्रि 10 बजे फिल्मी गीतों का कार्यक्रम होगा सरगम। इन कार्यक्रमों के अतिरिक्त रात 9:15 पर स्पॉटलाइट तथा रात 9:30 पर चर्चा का विषय है कार्यक्रम आप सुनेंगे, जिसे हम अपने दिल्ली केंद्र से रिले करेंगे। लेकिन रात्रि 10 बजे विविध भारती मुंबई से प्रायोजित कार्यक्रम होगा छाया गीत। अभी आप हमारे केंद्र से आज की इस सभा के शेष व कल प्रसारित होने वाले कार्यक्रमों की रूपरेखा सुन रहे थे। यह आकाशवाणी का श्री विजयपुरम केंद्र है। 4:45 हुए हैं। अब आरंभ होता है फिल्मी गीतों का कार्यक्रम बहारों की शाम। श्रोताओं, कार्यक्रम का आगाज हम कर रहे हैं सोनू निगम और सपना मुखर्जी की गाय फिल्म क्रांति क्षेत्र के एक गीत के साथ। सुरेंद्र शेट्टी के गीत को संगीत दिया है नदीम श्रवण ने।

कार्यक्रम के अंत में सुनते हैं लक्ष्मीकांत प्यारेलाल के संगीत निर्देशन में तैयार मजरू सुल्तानपुरी की गीत रचना। फिल्म है रिश्ता हो तो ऐसा। गायक कलाकार है अनुराधा पौडवाल, शब्बीर कुमार और साथी।

इस गीत के साथ ही फिल्मी गीतों का कार्यक्रम बहारों की शाम अब संपन्न होता है। यह आकाशवाणी का श्री विजयपुरम केंद्र है। इस समय शाम के 5 बजे हैं। लीजिए अब सुनिए तमिल कार्यक्रम।

0: अभी आप बंगला कार्यक्रम सुन रहे थे। यह आकाशवाणी का श्री विजयपुरम केंद्र है। संध्या के 6 बजे हैं। लीजिए अब सुनिए किसान वाणी कार्यक्रम।
1: इस कार्यक्रम के प्रायोजक हैं भारत सरकार का कृषि एवं कृषक कल्याण मंत्रालय।

0: नमस्कार, किसानवाणी के आज के इस अंक में आप सभी किसान भाई बहनों का हार्दिक अभिनंदन। किसान भाइयों, हमेशा की तरह आज के इस अंक की शुरुआत भी हम आज के खूबसूरत विचार से कर रहे हैं। हमारा आज का विचार है, हम किसी के रूप, रंग या जीवन शैली का मजाक उड़ा सकते हैं, लेकिन हमें उनकी परिस्थितियों को समझने की कोशिश करनी चाहिए। ये संदेश हमें सहानुभूति की याद दिलाता है। किसी की स्थिति को जाने बिना उनका मजाक उड़ाना न केवल गलत है, बल्कि यह हमें असंवेदनशील बना सकता है। हमें लोगों की परिस्थितियों को समझकर उनके प्रति सम्मान और संवेदना रखनी चाहिए। किसान भाइयों, इसी खूबसूरत विचार को लिए हम आगे बढ़ते हैं और आपसे पूछ लेते हैं आज का प्रश्न। भाइयों, हमारा आज का प्रश्न है, मालाबारी किस पशु की नस्ल है ये आपको बताना है। तीन विकल्प भी हम आपको दे रहे हैं, गाय, बकरी या फिर भैंस। साथियों, इस प्रश्न के उत्तर आप सोचते रहें और कार्यक्रम में हमारे साथ बने रहें। कार्यक्रम के तहत इस प्रश्न का सही उत्तर हम आपको अवश्य ही देंगे।
1: अरे अरे अरे, क्या कर रहा है? इधर इधर इधर, हम बोल रहे हैं तेरे बीजू का।
2: पुतला बोल रहे?
1: पक्षियों से तो हम खेत को बचा लेते हैं, पर इन घातक रसायनों से कैसे बचाएं?
2: मतलब?
1: देख बेटा, तू जो ये अंधाधुंध रसायन मिलाता है ना, मिट्टी की सेहत बिगड़ने लगी है, और जब माटी ही कमजोर पड़ जाएगी तो उपज कैसे सेहतमंद होगी? अरे पहले ऐसा नहीं था, पूछना अपने बड़े बुजुर्गों से कैसे फसल लहलहाती थी, शुद्धता झलकती थी। माटी भी तंदुरुस्त और लोग भी। अरे पहली वाली बात कहा,
2: पर अब तो सभी डाले हैं।
1: सब नहीं, आज भी लाखों जागरूक किसान परंपरागत विधि से फसल उगा रहे हैं, पर्चा कम और उपज की कीमत भी बेहतर पा रहे हैं।
2: सच है?
1: रे बेटे, एक्सपीरियंस से बता रहे हैं, धूप में बाल सफेद नहीं किए हैं।
2: ठीक है भाई, मैं भी आज तो जैविक खेती शुरू करूंगा।
3: माटी से प्रेम की परंपरा है परंपरागत खेती।
0: किसान भाइयों, जैसा कि आप जानते ही हैं कि इन दिनों 1 जून से 30 जून तक खेत बचाओ अभियान चलाया जा रहा है। इसी मुद्दे पर विस्तार पूर्वक बातचीत के लिए आज हमने अपने कार्यक्रम में आमंत्रित किया है कृषि विभाग के निदेशक श्री देवव्रत बसंतिया जी को, जो कि विस्तार से बताएंगे कि खेत बचाओ अभियान है क्या चीज। साथियों, आइए सुनते हैं इनके साथ की गई ये बातचीत। खेत बचाओ अभियान।

0: किसान साथियों, इस विषय पर बातचीत करने के लिए आज हमारे बीच कार्यक्रम में उपस्थित है कृषि विभाग के निदेशक श्री देवव्रत बसंतिया जी। सर, कार्यक्रम में हम आपका स्वागत करते हैं।
1: धन्यवाद मैडम।
0: सबसे पहले हम यही जानना चाहेंगे आपसे कि खेत बचाओ अभियान क्या है।
1: देखिए मैडम, ये खेत बचाओ जो अभियान है वो एकदम हमारी एक बहुत ही एक इम्पोर्टेंट विषय है जो आज पूरे देश भर में हो रहा है। इस अभियान को हम लोग 1 जून से लेकर 30 जून पूरा 1 माह के लिए, 1 महीना के लिए उसको मतलब चलाया जा रहा है, पूरे देश में चलाया जा रहा है अलग अलग राज्यों से कृषि विभाग के साथ। कृषि विभाग इसमें जुड़ी हुई है, मूल रूप से कृषि विभाग जो हमारी आत्मा, जो एक डिपार्टमेंट है जो ट्रेनिंग और एक्सटेंशन के लिए दायित्व लिए हैं आत्मा, उसके साथ जो कृषि में जो अनुसंधान की जो संस्था है जैसे ICR, इंडियन काउंसिल ऑफ एग्रीकल्चर रिसर्च, वो लोग भी जुड़ी हुए हैं। कृषि विज्ञान केंद्र जो हर डिस्ट्रिक्ट लेवल में जो ऑर्गेनाइजेशन है KVK, वो भी उसमें जुड़े हैं। तो हमारे एक मिला जुला एक प्रयास रहता है कि इसी अभियान को किसानों तक पहुँचाने के लिए इसके लाभ, इस पर मोटा मोटा 3-4 बात मैडम मैं बोलना चाहता हूँ
0: जी।
1: हमारे किसान भाइयों की। इस कृषि खेती बचाओ अभियान एक बहुत बड़ा एक संकल्प है या एक अभियान कह सकते हो, जिसमें हम कई सारी पॉइंट को एक मुख्य रूप में लिया जाता है, जैसे मिट्टी के स्वास्थ्य में सुधार करना,
0: जी
1: ठीक है, कि रासायनिक उर्वरक के संतुलन उपयोग करना, या फिर मिट्टी का जो उर्वरता है, जो सॉइल की फर्टिलिटी है उसको बचाए रखना, वैज्ञानिक तरीके से खेती भी करना, हाँ,
0: जी
1: क्योंकि
0: जी
1: समय उपकूल खेती भी करना। तो इसमें ये मेन मेन चीज़ जो रहती है, मिट्टी की उर्वरता बचाए रखना, मिट्टी के स्वास्थ्य को सुधार करना, और संतुलित केमिकल जो रासायनिक खाद है उसको व्यवहार करना, तो ये मेन मेन चीज़ हो जाते मैडम। जी
0: इस अभियान के तहत
1: हाँ जी।
0: अब हम ये जानना चाहेंगे आपसे कि इस अभियान का मुख्य संदेश क्या है।
1: इसमें मैडम यही संदेश रहेगा कि हम खाद जो है कम यूज करें, क्योंकि आज देखा गया है खाद जो है बहुत ही ज़्यादा मात्रा में, जो सही मात्रा नहीं है, क्योंकि अत्यधिक मात्रा में कुछ कुछ किसान इसको यूज कर रहे हैं। क्योंकि देखिए, हर खाद का कोई भी फसल होगा उसके लिए एक रिकमेंडेड डोज हम लोग बोलते हैं, तो एक रिकमेंडेड डोज बनाया गया है। अगर 1 हेक्टेयर धान की खेती होती है तो उसमें कितना हम नाइट्रोजन दें, कितना फॉस्फोरस दें, कितना पोटाश डालें, तो उसमें एक मात्रा रहता है। लेकिन वो मात्रा को किसान शुरुआत में तो फॉलो कर रहा था, लेकिन समय के साथ जैसे मिट्टी की उर्वरता कम होते गए तो वो एकदम उसका गलत तरीका से उसको इस्तेमाल किया। फिलहाल हम अंडमान निकोबार की बात नहीं कर रहे हैं, यहाँ तो बहुत कम मायने में खाद का उपयोग हो रहा है, लेकिन जो दूसरे स्टेट, जो राज्य है, बड़े बड़े स्टेट, पंजाब, हरियाणा, बाकी कुछ स्टेट जैसे है महाराष्ट्र वगैरह में, बहुत खाद की मात्रा जो है बहुत गलत तरीका से, बहुत हाई डोज खाद देने की बजाय हमारी मिट्टी जो है वह खराब हो चुका है, सॉइल हमारा बिगड़ चुका है, सॉइल का ऑर्गेनिक कार्बन खराब हो गई, सॉइल में मिट्टी के पानी पकड़ने की जो क्षमता, जल धारण करने का, वो खराब हो गई। सॉयल में बहुत सारी माइक्रोब्स जो हमारी सूक्ष्म जीवाणु होते हैं जो उस चीज़ को सड़ाते हैं, उसको अपघटन करते हैं, उनकी मात्रा कम हो गई। तो चीज़ में इतना गलती हुआ जिसमें हमारे प्रोडक्शन भी हम पर हुआ है, और वो खाद मतलब मिट्टी जो है वो खराब हो चुका है लगभग। खेती बचाओ अभियान का सबसे बड़ा चीज़ है कि हम कम खाद और सही सलाह, तीन
0: बिल्कुल,
1: चीज़।
0: यही जो संदेश है ये हम किसानों तक पहुंचाना चाहते हैं।
1: जी जी जी
0: सर, इस अभियान के प्रमुख उद्देश्य के बारे में भी हम जानना चाहेंगे।
1: इस अभियान को हम उद्देश्य कर रहे हैं, कई सारे मल्टीपल ऑब्जेक्टिव को, कई सारी चीज़ को हम लोग उद्देश्य को लेके ही चला रहे हैं। जैसे मृदा परीक्षण करना है, सॉइल टेस्टिंग करना है, और सॉइल टेस्टर की मतलब आधारित ही हम उसको उर्वरक को या खाद को प्रयोग करने की सलाह देंगे। पहले उनकी सॉइल टेस्ट हो जाएगी तो
0: जी
1: उसके बाद हम उनको एडवाइस करेंगे, रिकमेंडेड करेंगे कौन सा खाद कितनी मात्रा में उनकी फसल के हिसाब से हम देने के लिए। तो मृदा परीक्षण करने के लिए, सॉइल टेस्टिंग के लिए उनको इस प्रोग्राम के तहत हम सॉइल को भी कलेक्शन करते हैं, टेस्टिंग कर लें। तो संतुलित विवेकपूर्ण पोषक तत्व प्रबंधन, इसमें क्या होता है, जो बैलेंस फर्टिलाइजर होता है, कैसे हम बैलेंस दे के फर्टिलाइजर को यूज करें, कितना ऑर्गेनिक दे, कितना इनऑर्गेनिक दे, कितना माइक्रो न्यूट्रिएंट दे, फसल के हिसाब से उसको कैसे बैलेंस यूज किया जाए, कोई ऐसे गलती ना होना बिल्कुल ऑर्गेनिक मतलब जैविक खाद कुछ नहीं दे रहा है, रासायनिक देते ही जा रहा है, और उसमें माइक्रो न्यूट्रिएंट जो अणु, जो सूक्ष्म जो तत्व होती हैं, जो हम लोग माइक्रो न्यूट्रिएंट बोलते हैं, वो भी देखता गया सॉइल जो है बढ़ती खेतीबाड़ी की तरह वो भी कम होते जा रहे, तो माइक्रो न्यूट्रिएंट के भी बोलना पड़ेगा। तो इसमें एक अवेयरनेस, उनकी एक जागरूक किया जाता है, हरी खाद की उपयोग इसमें उपयोग को बहुत बढ़ावा दिया गया, जैसे ग्रीन मैन्यूरिंग बोलते हैं हरी खाद, ताकि धन चासन वगैरह ये अगर हम उसी धान की खेती या कुछ दूसरे खेती करने से पहले अगर लगा देते हैं तो उसमें क्या होता है, हमारी नाइट्रोजन की जो भरपाई है उसमें मिल जाता है, उसको नाइट्रोजन कम देना पड़ता है, या हरी खाद देने से

0: का स्वास्थ्य भी ठीक हो जाता है, ऑर्गेनिक कार्बन बढ़ जाता है। जैविक उर्वरक या जैविक उत्पादक का, जैसे मान लीजिए जैविक उर्वरक बहुत सारी बाय फर्टिलाइजर है, जैविक उर्वरक जो है, या फिर बहुत सारी माइक्रोब्स है जो आर्टिफिशियल रूप से उस मिट्टी में छोड़ना होता है, जीवाणुसार जिसको हम लोग बोलते हैं, या फिर उस जैविक उर्वरक को हम कैसे अगर मिट्टी में छोड़े तो वो क्या करता है, जाके मिट्टी में जो जीवाणु को, मतलब वो एक जीवाणु हम इस मिट्टी में छोड़ रहे हैं तो वह जाके अपने घर बना लेता है, और वहाँ जो अपने घर बना के वो जो न्यूट्रिएंट जो हवा में है या मिट्टी के अंदर जो न्यूट्रिएंट ऑलरेडी जो पोषक तत्व मौजूद है लेकिन वो पौधे तक नहीं आ पा रहा है, तो उसको जीवाणु जो है वो अपने अवेलेबल फॉर्म में पौधों को वो सप्लाई करती है। तो प्राकृतिक खेती का बढ़ावा, इसमें एक और एक विषय आता है, प्राकृतिक खेती आजकल हम लोग एक देश में पूरा मुहिम चल रहा है, एक आह्वान चल रहा है कि प्राकृतिक खेती नेचुरल फार्मिंग को बढ़ाया जाए, ताकि नेचुरल खेती की जो तरीका है वो हम हमारी डिपार्टमेंट की तरफ से भी काफ़ी सारी प्रदर्शित लगाया जा रहा है, उसको ट्रेनिंग कराया जा रहा है, तो नेचुरल खेती हम कैसे करें, उसके प्रति उसका फायदा क्या है, तो उसमें भी एक हमारा जो अभियान के अंदर एक मुद्दा रहा है कि प्राकृतिक खेती को बढ़ाया जाए, जल संरक्षण कराया जाए। जल संरक्षण नहीं कर पाएंगे तो वो तो बहुत जरूरी चीज है खेती किसानी के लिए। तो यहाँ जैसे बहुत बारिश होती है तो अंडमान में फिर भी 2-3 महीना जो सूखा के समय होता है, जो धूप के समय होता है, वहाँ जल की कमी पड़ जाती है, जल फट जाती है, मिट्टी जैसे लगता है कि जल अवेलेबल नहीं होता है। कुछ कुछ एरिया हमारी मध्य उत्तर अंडमान में है जहाँ जल की बड़ी समस्या हो जाती है, या चाहे साउथ अंडमान की कुछ जगह है, तो उसमें जल संरक्षण हमारे एक बड़ा विषय रहता है। जल संरक्षण के साथ मृदा संरक्षण, जो सॉइल जो है खराब हो जा रहे हैं, जब मृदा हमारी बह के कटाव हो जा रहा है, मिट्टी भी जो मतलब बारिश में चली जा रहा है, हमारी बहुत सारी जगह में सॉइल जो है डिस्टर्ब हो चुका है अंडमान की, तो वो मिट्टी चले जा रहा है, नुकसान हो रहा है, तो उसको कैसे बचाए, क्या तरीका से उस मिट्टी को संरक्षण किया, मिट्टी नहीं रहेगा तो कोई नहीं रहेगा। तो इसमें हमारी एक बड़ी जागरूक किया जाता है किसान को, इस चीज को वैज्ञानिक तरीके से समझाया जाता है कि मिट्टी और जल संरक्षण कैसे आप करें। मौसम, इसमें हम लोग और एक काम करते हैं, मौसम आधारित कृषि की सलाह देते हैं, हमारी एडवाइजरी होती है, क्रॉप एडवाइजरी कैलेंडर होती है, तो हम मौसम के आधारित कृषि की जो जो काम करेंगे उसमें भी इस कंपनी की सहायता लिया गया है। जलवायु आधारित कृषि भी हम लोग करते हैं, और बहुत सारे किसान की हितकारी जो योजना है, बाकी जो स्कीम है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की, हम लोग इसमें मैडम जाते हैं कैंपनिंग करने के लिए। हमारी उद्देश्य होता है किसान की समस्या को जानना, और हमारी जो सुझाव होता है उनको भी, जो भी हमारी इसी प्रोग्राम के अंदर जो भी हमारी उद्देश्य है उसको भी हम लोग उन तक पहुँचाते हैं।
1: बहुत जरूरी है किसानों को इन बातों की जानकारी देना।
0: जी
1: सर, खेत बचाओ अभियान जो 1 जून से 30 जून तक चलाया जा रहा है, क्या अंडमान निकोबार द्वीप समूह में भी ये अभियान चल रहा है?
0: जी जी जरूर, मैं शुरू में मैडम बोला, ये अभियान बहुत अच्छे से चल रहा है। हमारी हमारे कृषि विभाग जो हमारी आत्मा जो एक जो हम कृषि विभाग के साथ ही वो जुड़ा हुआ है, एग्रीकल्चर टेक्नोलॉजी मैनेजमेंट एजेंसी जिसको बोलते हैं आत्मा, इनकी मेन एग्रीकल्चर के जो एक्सटेंशन पार्ट हमारी होते हैं कृषि में, जो प्रसार की प्रचार की जो व्यवस्था है वो आत्मा ही तरफ से किया जाता है। हमारे साथ ICR जो इंडियन काउंसिल ऑफ एग्रीकल्चर रिसर्च है, जो यहाँ पर अंडमान निकोबार में उनके सेंटर है, जैसे सेंट्रल आइलैंड एग्रीकल्चर कैरी करके सब लोग जानते हैं, तो उसकी जो कृषि विज्ञान केंद्र है उनकी सहायता से के कोलैबोरेशन में 3-4 हम लोग मिल के ही इस प्रोग्राम को लगभग सारी जगह में हम लोग कर रहे हैं, और इसकी शुरुआत दक्षिण अंडमान की कॉलोनीपुर पंचायत से और नमूना घर इसो गाँव से शुरू हुई थी, और वो पूरा अंडमान निकोबार में सभी जगह में 1 महीना वाले चलने वाला ये प्रोग्राम है चलेगा।
1: जी जी सर, अक्सर किसान जो है अधिक उत्पादन लेने के लिए जो है इस आशा में जो है ज्यादा खाद डाल देते हैं, क्या ये सही रहता है?
0: ना, ये बिल्कुल सही नहीं रहता, क्योंकि मैं शुरू से मैडम बोला कि एक पर्टिकुलर कोई भी फसल का एक रिकमेंडेड डोज होता है, अगर वो फसल जितना ही खा पाएगा उतना ही मिट्टी से वो खींचेगा, ठीक है, और बाकी सब वेस्ट हो जाएगा, बाकी वो पड़ा रहेगा। क्योंकि हम बहुत ज्यादा डालते हैं कि हमारी वो जानकारी नहीं रहता, हम लोग ज्यादा डालेंगे तो वो ज्यादा खींच लेगा या ज्यादा पैदा दे देगा, ऐसे नहीं है, वो नहीं उतना ही खा पाएगा जितना उसको जरूरत है।
1: जी जी
0: जी ये गलत है, इसको इसीलिए बैलेंस देके चलना, और थोड़ा सा किसान को इस जानकारी रखना कि हम कौन सा फसल कर रहे हैं। मान लीजिए हम धान वाली फसल कर रहे हैं, धान को क्या चाहिए, धान को थोड़ा नाइट्रोजन टाइप का जो उर्वरक, तो नाइट्रोजन जो है वो उसको जरूरत है, क्योंकि उसमें पत्ती, उसका जो भी वेजिटेटिव रिप्रोडक्टिव जो भी वेजिटेटिव जो ग्रोथ होता है, पत्ती बनेगा, पत्ती में हरापन आएगा, उसका अच्छा से स्ट्रांग होगा, उसका पिलर वगैरह ठीक से देगा, उसमें डाल मतलब उसको ब्रांचेस भी निकलेगा, तो उसको सारी जो भी करने के लिए नाइट्रोजन, तो नाइट्रोजन की जरूरत है, नाइट्रोजन की खाद थोड़ा उसमें ज्यादा चाहिए, ठीक है, और बाकी जो फल आएगा उसमें पटास की ज्यादा मात्रा जाना पड़ता है, उसको सही समय से उसको धान का पकवान की, धान को सटीक सलीड करने के लिए, बीमारी से लड़ने के लिए जो बैलेंस चाहिए पटास की जरूरत है, DAP की जरूरत है, इस तरह हर चीज को थोड़ा किसान अगर फसल के हिसाब से किसको क्या टाइप का खाद ज्यादा जरूरत है, तो हमारी समय समय की ट्रेनिंग होता है, हम लोग बोल देते हैं कि किस फसल के लिए क्या डोज है, वो डोज उनको लिखना पड़ेगा, याद रखना पड़ेगा।

0: जी
1: उतने
0: बराबर
1: ही देना चाहिए जितनी उसको जरूरत है।
0: जरूरत है। जी जी
1: चलिए सर, एकीकृत पोषक तत्व प्रबंधन या
0: जी जी
1: INM क्या है?
0: हाँ, ये जो INM मैडम इंटीग्रेटेड न्यूट्रिएंट मैनेज एक पोषक तत्व की जो प्रबंधन करते हैं, हम यही कोशिश किया जाता है कि खाली केमिकल फर्टिलाइजर दे के खेती ना करें, क्योंकि ये हमारे पर्यावरण के लिए, किसान की आर्थिक इनकम के लिए या फिर जो फसल की जो जरूरत है उसके लिए सही। क्योंकि इसको हम लोग एकीकृत इसीलिए किया गया है कि किसान का चीज भी हो जाए, अच्छा से प्रोडक्शन भी ले ले और मट्टी भी बचे, पर्यावरण बचे, सब कुछ सुरक्षित रहे। तो इसमें उद्देश्य यही होता है न्यूट्रिएंट मैनेजमेंट को इंटीग्रेशन करने के लिए। जैसे मान लीजिए मिट्टी की उर्वरता बनी रहना चाहिए,
1: जी
0: हम ऐसे नहीं है कि मिट्टी को खाद दे दे के इतना हार्ड बना लिए। अब मेनलैंड का यहाँ तो फिलहाल वो प्रॉब्लम नहीं है, तो मेनलैंड में जाओगे तो वहाँ ना आपका जो भी एग्रीकल्चर की जो पातू कुदाल जो भी वो टूट जाती है, उसको मिट्टी खोद नहीं पाते, इतना हार्ड पत्थर की तरह का लेयर बन चुका है। केमिकल फर्टिलाइजर देने के बाद ना वो एक पत्थर का लेयर हो जाए, पड़े पड़े रहते हैं मिट्टी में वो, तो वहां तो इतना बारिश नहीं होते अंडमान, तो इसीलिए वहां कहाँ जाएगा वो, ऐसे ही मिट्टी के ऊपर पड़ा रहता है, तो एक समस्या बन जाती है। तो इसमें न्यूट्रिएंट मैनेजमेंट को इंटीग्रेशन करने की मतलब यही होता है कि हमारी सारे चीज को, उत्पादन, मिट्टी की उर्वरता, पर्यावरण और फसल की गुणवत्ता, ये सारा चीज को मेंटेन करने के लिए हम लोग इंटीग्रेटेड न्यूट्रिएंट मैनेजमेंट करते हैं। जी
1: जी, प्राकृतिक खेती को इस अभियान में किस प्रकार शामिल किया गया है सर?
0: जी मैडम, प्राकृतिक खेती ऑलरेडी एक प्रोजेक्ट के मोड में हमारी डिपार्टमेंट कृषि विज्ञान केंद्र या जो भी एग्रीकल्चर रिसर्च संस्था है यहाँ, तो उनके पास भी प्रोजेक्ट चल रहा है। लगभग तीन तीन 4 साल पहले इस प्रोजेक्ट को शुरू किया गया, आज लगता है मुझे ये तो चौथा या तीसरा साल चल रहा है इस प्रोजेक्ट की। तो उसमें हम लोग किया गया है बहुत सारे किसान को, हम लोग एक पायलट प्रोजेक्ट के मोड में सारा अंडमान निकोबार प्रैक्टिकल अभी तक तो नहीं हो रहा है, कुछ कुछ किसान को हम लोग उसमें जुड़े हुए हैं, प्रशिक्षण दे रहे हैं, प्रदर्शित करा जा रहा है, जैसे यहाँ फरारगंज में है, बाराटंग में है। देखिए प्राकृतिक खेती इसी एरिया में हम लोग चुन के कर रहे हैं कि जो एरिया में पहले खाद की मात्रा कम यूज होती थी, जो भी वहाँ के लोकल किसान थे वो खाद ज्यादा प्रयोग नहीं करते थे, तो उनको पसंद नहीं था, या उनकी जैसे बाराटंग पूरा बड़ा क्षेत्र रहा हमारी, उसमें जो खेती बाड़ी होती है उसमें बहुत कम खाद की, जो हमारी रांची कम्युनिटी के किसान भाई है वो लोग करते थे, तो उसी सब एरिया को हम लोग लेके ये प्राकृतिक खेती के अंदर उसको ले रहे हैं और उसका प्रदर्शित, उसका प्रशिक्षण, उसका फील्ड में ऑलरेडी परीक्षण, उसका सब चल रहा है।
1: जैसे कि आपने पहले बताया कि कृषि विभाग के द्वारा इस अभियान में और भी विभाग भाग ले
0: जी
1: रहे हैं,
0: हाँ
1: वो
0: जी,
1: कौन कौन से विभाग हैं?
0: जैसे मैंने मैडम बताया इसमें हमारी बहुत सारी, हमारी जो केवीके जो है, जो इस अंडमान निकोबार में 3 केवीके है, 3 डिस्ट्रिक्ट में, निकोबार केवीके, मिडिल और नॉर्थ अंडमान केवीके, निम्बू डेरा, और जो केवीके पोर्ट ब्लेयर में है, साउथ अंडमान की सीपी घाट में जो केवीके है, तो इस सब मिलके हमारी इस प्रोग्राम को रूपरेख बनाया गया है। हमारे साथ पंचायत जुड़े हुए हैं, किसान की जो उत्पादक संगठन FPO है वो भी जुड़ा हुआ है, हमारे साथ कोऑपरेटिव ग्रुप जितना भी है वो भी है, हमारी SHG ग्रुप है, तो हम लोग को इस सबको एक लेके एक अभियान कर रहे हैं मैडम, क्योंकि अकेला तो ये नहीं हो पाएगा, ताकि जागरूक जहाँ की बात होती है तो वहाँ की टीम की जरूरत पड़ती
1: इस अभियान में पंचायतों और किसान मित्रों की क्या भूमिका है? आपने कई
0: है।
1: अवेयरनेस प्रोग्राम
0: जी जी
1: किए
0: जी
1: हैं
0: जी
1: अभी।
0: किसान मित्र मैडम एक ऐसे पोस्ट है जो एकदम प्राइमरीली किसान के साथ ही जुड़े हुए हैं, एक किसान ही हमारा किसान मित्र होता है, कहीं बाहर से नहीं आता है,
1: जी
0: उसी गांव का, उसी लोकल एरिया का एक किसानी करने वाला आदमी ही किसान मित्र होता है, तो वो हमारी खबर को बहुत अच्छा से उनकी लोकल भाषा में, उनकी लोकल मतलब उनकी जो संपर्क है उस एरिया में, तो वो पहुंचाता है हमारे डिपार्टमेंट को चीज को, हम लोग भी बोलते हैं लेकिन उसकी बात को ज्यादा जोर दिया जाता है, ताकि वो हमारे साथ कोऑपरेट करे, हमको सारा चीज को, जो हमारी गवर्नमेंट की जो गाइडलाइन है, जो पॉलिसी है, जो अभियान है, जो मुहिम है, तो सब चीज को वो अच्छा तरह से पहुंचाए, तो उसकी एक बड़ी भूमिका है हमारे किसान मित्रों की।
1: खेत बचाओ अभियान के तहत जो है किसानों को सरकारी योजनाओं के बारे में भी जानकारी दी जाती है सर?
0: हाँ जी हाँ, हमारी जो भी जितना भी सारी योजना है, जो अच्छा अच्छा योजना जो यहाँ इम्प्लीमेंट हो पाता है, तो उसमें PM किसान जो जन है, जो प्रधानमंत्री की जो किसान जो आर्थिक सहायता मिलता है किसानों को, 6,000 रुपया पर साल, तो उसको भी दिया जाता है। फसल बीमा की जो भी योजना है उसमें भी जानकारी दिया जाता है। और हमारी, मेरे को एक चीज आपके माध्यम मॉडल कहना है, फसल बीमा में हमारे दीपों के किसान बहुत थोड़ा सा पीछे पड़े हुए हैं, उनको थोड़ा इस प्रोग्राम के माध्यम में आप लोग थोड़ा आगे आइए, आप फसल को बीमा जरूर कराइए, क्योंकि बीमा कराने से कुछ नुकसान नहीं है, आपका पैसा तो बीमा एकदम फ्री है, बीमा कुछ 50 रुपया ऐसे कुछ बांधना पड़ता है, तो इसमें करिए, ताकि आप मान लीजिए आपका फसल नष्ट हो रहा है, कुछ भी अचानक बारिश हो गया है, कुछ फ्लड हो गया, अभी भी 2-3 दिन पहले यहाँ मिडिल अंडमान में काफी फ्लड फ्लड की केस, मतलब बारी बाढ़ आ गया, उसको सर्वे कर रहे हैं हम लोग, तो इस तरह कर जो भी प्राकृतिक जो आपदा आएगी उस पर आप बच सकते हैं, कुछ तो पैसा आपको भरपाई उससे मिल जाएगा, तो फसल बीमा योजना के बारे में हम काफी जोर देना चाहता है, जो हमारे दीपों में किसान जो है इतना जागरूक नहीं है, आगे नहीं आ रहा है, तो हम आपको यही कहना चाहेंगे आप लोग किसान भाई हमारे इस प्रोग्राम के माध्यम से फसल बीमा कराने के, जो आपकी जो नियरेस्ट जो कृषि विभाग की

0: जो भी कार्यालय होगा वहाँ थोड़ा जो संपर्क बनाए रखे या डायरेक्ट हमसे संपर्क बनाए। कृषि यांत्रिकरण योजना मैडम है वो एग्रीकल्चर जो मशीनरी है, हम चाहते हैं कि हमारी दिन को दिन कृषि कृषि में लेबर की बड़ा इशू हो रहा है, कृषि में श्रमिक नहीं मिल पा रहे हैं, तो हम किसी जितना मशीनरी कृषि में यूज हो तो उतना उनका समय बचेगा और मतलब कम लेबर में भी काम हो जाएगी। तो कृषि में एक बड़ी समस्या खड़ा हुआ है, कृषि में करने वाला आदमी नहीं रहे हैं, तो कृषि यांत्रिकरण का भी बात हो रहा है। इसमें प्राकृतिक खेती की हम लोग प्रमोशन कर रहे हैं, इस तरह जितना भी हमारे स्कीम है ये हम लोग उसकी चर्चा भी करते हैं जी।
1: किसानों को उर्वरकों के उपयोग के संबंध में आप क्या कहना चाहेंगे?
0: उर्वरक के बारे में मैं यही कहना चाहूंगा कि आप अपने मिट्टी को पहले पहचानिए, क्योंकि आप रह रहे हैं एक आइलैंड में, एक समुद्र के ऊपर। ये धरती एक अलग तरह का है, एक टापू है ये।
1: जी
0: इसको हम लोग बोलते हैं कि दुर्लभ धरती है, रेयर अर्थ। इस धरती के ऊपर अंडमान निकोबार एक दुर्लभ है, तो इसको मिट्टी को आप पहचानिए। ये मिट्टी किससे बना हुआ है, क्या इसका गुण है, इसकी मिट्टी को पहचान करके आपको सॉइल टेस्ट करना पड़ेगा। आपको हमेशा सॉइल टेस्टिंग करेंगे तो आपको एक रिपोर्ट आपके पास रहेगा, और सॉइल टेस्टिंग जो समय समय पे उसको अपग्रेड करते रहना। ऐसे नहीं कि 10 साल पहले किया था वही अभी
1: जी
0: चलेगा, नहीं, उसको लेटेस्ट रिपोर्ट चाहिए।
1: समय समय पर
0: तो
1: करते
0: समय समय पर उसको करेंगे तभी आपको रिकमेंडेड डोज मिलेगा कि हमारी मिट्टी में कमी क्या है, कहाँ यहाँ कमी है। तो क्या ऑर्गेनिक मैटर का कमी हो रहा है, क्या नाइट्रोजन की कमी है, या कुछ अणु मतलब न्यूट्रिएंट माइक्रो न्यूट्रिएंट की कमी है, जो सूक्ष्म जो भी माइक्रो न्यूट्रिएंट सूक्ष्म तत्व जो होता है, जो
1: जी
0: वो भी कम, मान लीजिए आयरन भी हो सकता है, कॉपर हो सकता है, मॉलिब्डेनम हो सकता है, बोरन हो सकता है, कैल्शियम हो सकता है, जो फसल के ऊपर बहुत प्रभाव पड़ता है, जिंक भी हो सकता है, धान की खेती में जिंक वगैरह देना जरूरत है। तो उसी हिसाब से बड़ा इसको समझिए, तभी आपकी डोज जो है आप उसके हिसाब से आप प्लान करिए कि कितना खाद मुझे देना है। लेकिन खाद पूरा रासायनिक के पीछे ना जाके, हमारे पास जो भी ऑर्गेनिक मैटर है,
1: जी
0: हमारी बगीचा में बहुत सारी कचड़ा मिलेगा, बहुत सारी सूखा पत्ते मिलेगा, बहुत कंपोस्ट मिलेगा, गोबर होगा तो गोबर मिलेगा, हमारे गोबर अलग अलग अलग तरह का, जैसे कोई सुअर पाल रहा है, कोई मुर्गी पाल रहा है, कोई बकरी पाल
1: बकरी
0: रहा है,
1: पाल
0: उनकी जो भी
1: जी
0: जो गोबर होता है, जो उनकी लिटर होता है, वो भी यूज कर सकते हैं। घर का जलाए चूल्हा में जो हम लोग राख ही निकालते हैं उसको भी इतना अच्छा सा पटास देता है वो ना। हमारे पास केला बगीचा है, उसका कचड़ा को लेके पटास कर सकते हैं। तो मतलब मेरे को यही कहना, आपके पास ऑर्गेनिक मैटर सफिशेंट है, थोड़ा जिंदाबली का पत्ती आप जमीन पे डालिए, थोड़ा धनचा खेती करिए। तो ऑर्गेनिक और इनऑर्गेनिक तुरंत आप कूद मत जाइए, मुझे खाली डीएपी यूरिया देके खेती करना है, ये गलत है। आप पहले आपके पास जो भी रिसोर्स है उसकी बात करके थोड़ा सा केमिकल देंगे, क्योंकि मिट्टी को हम लोग बिगाड़ चुके हैं। मिट्टी को
1: जी
0: बिगाड़ के मिट्टी में कितने दिन से खेती हो रहा है, और ऑर्गेनिक मैटर कंटेंट चले जा रहा है सब। ऑर्गेनिक मैटर के साथ थोड़ा सा आप देंगे तो ये चीज जो है बहुत अच्छा से देखिए। कुछ किसान बोलते भी है, सर हम लोग जो शुरुआत में आए थे, जमीन हमको जमीन मिला गया था जब यहाँ सेटलमेंट शुरू, वहां कुछ भी लगाते थे, गाड़ते थे, हो जाता था। तो आप उसको कंपेयर करिए, आप एक वर्जिन सॉइल में आके पैर रखे थे,
1: जी
0: जिसको जंगल सफाई करके आपको मट्टी दे दिया गया था, आप कुछ भी डालोगे तो हो जाएगा। लेकिन आज वो सेम चीज क्यों नहीं हो रहा है, उसको थोड़ा अपने मानस का मंथन करिए, सोचिए कि हम एक ही जमीन से दिन को दिन लगातार कई साल हो गई, 50-60 साल के ऊपर हो गया, तो हम उसको खेती करते जा रहे, उसमें तो न्यूट्रिएंट कम हो रहा है, तो उसको न्यूट्रिएंट की दोबारा कैसे हम भरपाई करें।
1: भरपाई करें।
0: उसका भरपाई का खाली एक रासायनिक उद्देश्य नहीं है, इसमें थोड़ा सा पेशेंस की धैर्य की जरूरत है।
1: इस अभियान के दौरान सर किसानों को क्या-क्या गतिविधियां और देखने को मिलेंगी?
0: जी मैडम, इसमें ना हमको गतिविधियों में हम किसान जागरूक की शिविर कर रहे हैं, ग्राम स्तरीय पे बैठे कर रहे हैं, खेती प्रदर्शित भी करा जा रहे हैं, बहुत सारी डेमोस्ट्रेशन हो रहा है, मुदा संरक्षण कर रहे हैं हम लोग, मुदा मतलब सॉइल टेस्टिंग के लिए उसको सैंपल हम कलेक्शन कर रहे हैं।
1: जी
0: जिसको अगर सॉइल देना होगा, मैं किसान भाई को बोलूंगा इस प्रोग्राम के तहत आप लोग सॉइल सैंपल अपने जमीन से दे दीजिए, हमारी जो आत्मा की टीम है या हमारे कृषि विभाग के जो भी इसी खेती बचाओ अभियान में जुड़े हुए हैं उनको आप सैंपल हैंड ओवर करिए। हमारे यहाँ गोलघर में सॉइल टेस्टिंग लेबोरेटरी है, वो यहाँ परीक्षा हो जाएगा, उसके बाद आपको रिपोर्ट दे दी जाए। तो आप प्लीज आप उसको सॉइल हैंड ओवर करिए। हरी खाद हमारी प्रदर्शित हो रहा है, हमारी जो ग्रीन मैन्योरिंग क्रॉप उसमें हम मेनलैंड से अभी बीज आ चुका है, हम धनचा वगैरह जो है आपको प्रोवाइड करेंगे, हमारे सारे डिपो में धनचा का बीज अवेलेबल हो जाएगा। थोड़ा बारी बारी करके ला रहे हैं, एक साथ नहीं हो पाया है, तो धनचा आप लीजिए थोड़ा जमीन पे, धान की जमीन उसको छिटकी है थोड़ा, जैसे भी धनचा आपका बड़ा हो जाएगा उसको हल चला दीजिए, ताकि वो एक हरी खाद आपकी जमीन पे मेंटेन होकर रहेगा, आपको आयरन यूरिया देने का जरूरत नहीं पड़ेगी। ठीक है, अगर
1: जी
0: हरी खाद करके आपने धान कर दिए, मुझे नहीं लगता इसको यूरिया की जरूरत
1: जी
0: होगा। और
1: जी
0: तो पंचायत स्तरीय में कार्यक्रम हो रहा है मैडम, किसान क्रेडिट कार्ड के बारे में हम लोग समय समय पर किसी को कुछ पैसा की जरूरत है तो क्रेडिट कार्ड कर रहे हैं। तो प्राकृतिक खेती का भी तो चल ही रहा है, मैंने ऑलरेडी बोल दिया। इस तरह करके हमारा गतिविधि रहेगा, अभी तो 15 दिन भी नहीं हुआ है
1: नहीं हुए
0: और
1: जी।
0: ज्यादा समय अभी बचा हुआ है, तो हम 30 तक मतलब पूरा महीना इसको चलाएंगे, इस मुहिम को।
1: काफी कुछ आपने इस बारे में बताया, अंत में चलते चलते किसानों को क्या संदेश देना चाहेंगे?
0: अगर किसान को

0: कुछ बोलना है, मैं तो यही बचाऊंगा, अपने मिट्टी बचाइए, अपने पानी बचाइए, संतुलित खाद दीजिए, मतलब खुद अच्छा से रहिए, स्वस्थ खाइए, तो देश बचेगा, किसान बचेगा, सब तब तभी जाके सब कुछ अच्छा होगा। क्योंकि किसान को हम लोग अन्नदाता बोलते हैं, और
1: जी
0: वो अन्न को अगर सही से प्रोडक्शन नहीं कर पाएगा, अगर अन्न को वो गलत तरीका से उगाएगा, तो उसको जो भी खाएगा बीमार रहेगा।
1: बिल्कुल
0: तो ठीक है, तो संतुलित सब चीज करे, बैलेंस दे, और पर्यावरण के बारे में सोचे, क्योंकि किसान कुछ कुछ गलत डिसीजन भी ले चुका है, तो वो हम दूसरे किसी प्रोग्राम में बोलेंगे। तो हम यही कहेंगे किसान को, जी आप अपने जगह को पहचानिए, जो यहाँ कर रहे हैं, जो भी आपको आगे के करने वाला है, थोड़ा सा वैज्ञानिक तरीका से सोचिए कि ये साइंटिफिकली होना चाहिए, पर्यावरण के लिए सही होना चाहिए कि नहीं, क्योंकि एक गलती के पीछे ये कई पीढ़ी भुगतना पड़ता
1: जी
0: है।
1: जी
0: ऐसे कुछ गलती मत करिए जिसको हम आगे कुछ जवाब नहीं दे पाएंगे आगे
1: बिल्कुल,
0: का, मेरे को यही कहना मैडम पहले।
1: यानी काफ़ी सुधार की ज़रूरत है।
0: जरूर जरूर, जी,
1: और खेत बचाओ अभियान के तहत आपने बहुत ही अच्छी जानकारी दी किसान साथियों को, और उम्मीद करते हैं कि आपकी ये बातचीत उन्हें अच्छी लगी होगी। आपने अपना कीमती समय दिया कार्यक्रम में आने के लिए, आपका बहुत बहुत धन्यवाद।
0: जी बात, थैंक यू।
1: खेत बचाओ अभियान। किसान भाइयों, अभी आपने इस विषय पर कृषि विभाग के निदेशक श्री देवव्रत बसंतिया के साथ की गई ये बातचीत सुन रहे थे। उम्मीद करते हैं कि इस अभियान के तहत क्या कुछ कार्यक्रम चल रहे हैं और किसानों को कितने फायदे होंगे इस अभियान के तहत, विस्तार पूर्वक जानकारी अभी आपने हासिल की।
2: प्रधानमंत्री किसान मानधन योजना मिलेगा।

0: प्रधानमंत्री किसान मान धन योजना से लघु सीमांत किसानों का भविष्य होगा सुरक्षित
1: और 60 वर्ष की आयु से 3000 रुपए मासिक पेंशन होगी सुनिश्चित।
0: 55 रुपए से 200 रुपए की मासिक किश्त देकर प्रवेश कर सकते हैं 18 से 40 वर्ष तक के किसान।
1: इस अंशदायक योजना में सरकार देगी बराबर का योगदान।
0: सभी किसान भाई बहन इस योजना के लाभ के लिए जन सेवा केंद्र में जाएं
1: और अपना निःशुल्क नामांकन कराएं।
0: प्रधानमंत्री किसान मान धन योजना, अन्नदाता के परिश्रम को संबल, पेंशन से सुरक्षित उनका कर।
2: कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय भारत सरकार द्वारा जनहित में जारी।
3: किसान भाइयों, अब आइए कार्यक्रम में सुन लेते हैं एक प्यारा सा गीत।

किसान साथियों, गीत का आनंद तो आपने ले लिया। अब कार्यक्रम में वक्त हो गया है आज पूछे गए प्रश्न के सही उत्तर बताने का। हमने आपसे पूछा था मालाबारी किस पशु की नस्ल है। तीन विकल्प भी हमने आपको दिए थे, गाय, बकरी या फिर भैंस। साथियों, इस प्रश्न का सही उत्तर है मालाबारी बकरियों की एक उन्नत नस्ल है। उम्मीद करते हैं किसान साथियों ने अपने उत्तर की जांच कर ली होगी। भाइयों, इसके साथ ही हमारे कार्यक्रम का समय समाप्त हो चला है। अगले कार्यक्रम में हम आपसे फिर मिलेंगे, तब तक के लिए दीजिए अनुमति। नमस्कार।

0: इस कार्यक्रम के प्रायोजक थे भारत सरकार का कृषि एवं कृषक कल्याण मंत्रालय।
1: अभी हमारे किसान भाई अपना कार्यक्रम सुन रहे थे किसान वाणी। ये आकाशवाणी का श्री विजयपुरम केंद्र है। 6:30 हुए हैं। अब आरंभ होता है फिल्मी गीतों का कार्यक्रम शामे बहार। श्रोताओं, कार्यक्रम का आरंभ हम कर रहे हैं कुमार सानू और अलका याग्निक की गाय समीर की गीत रचना से। संगीत नदीम श्रवण का है तथा फिल्म का नाम है सिर्फ तुम।

लीजिए अब सुनिए केके और श्रेया घोषाल को फिल्म जैकपॉट में। श्याम बलकंद के गीत को संगीत दिया है डीजे पुलकंद ने।

सुखविंदर सिंह, अलका याग्निक और कमाल खान की मिलीजुली आवाज़ों में सुनते हैं फिल्म जो बोले सो निहाल का ये गीत। देव कोहली की रचना है, संगीत आनंद राज आनंद का है।

0: बुझ है क्या है रब जाने मौला सब जाने।
1: श्रोताओं लीजिए सुनिए अब एक आवश्यक सूचना। महिला एवं बाल विकास मंत्रालय भारत सरकार द्वारा प्रधानमंत्री राष्ट्रीय बाल पुरस्कार 2026 हेतु नामांकन आमंत्रित किए गए हैं। प्रधानमंत्री राष्ट्रीय बाल पुरस्कार PMRBP देश का एक प्रतिष्ठित राष्ट्रीय पुरस्कार है जो 18 वर्ष से कम आयु के बच्चों की असाधारण उपलब्धियों को सम्मानित करने के लिए प्रदान किया जाता है। ये पुरस्कार वीरता, समाज सेवा, पर्यावरण, खेल, कला एवं संस्कृति तथा विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी के क्षेत्र में उत्कृष्ट कार्य करने वाले बच्चों को दिया जाता है। नामांकन एवं अनुशंसा केवल ऑनलाइन माध्यम से राष्ट्रीय पुरस्कार पोर्टल awards.gov.in पर भेजी जा सकती है। नामांकन जमा करने की अंतिम तिथि 31 जुलाई 2026 निर्धारित की गई है। इसी के साथ ही सूचना समाप्त हुई। लीजिए अब सुनिए निखिल विनय के संगीत निर्देशन में तैयार समीर की गीत रचना, जिसे गाया है उदित नारायण और अनुराधा पौडवाल ने। फिल्म का नाम है जाने होगा क्या।

कार्यक्रम के अंत में सुनते हैं फिल्म यकीन का यह गीत। गायक है उदित नारायण और अलका याग्निक। गीत रचना समीर की तथा संगीत हेमेश रेशमिया का।

इस गीत के साथ ही फिल्मी गीतों का कार्यक्रम शामे बहार अब संपन्न होता है। मीडियम वेव 438.6 मीटर अर्थात 684 किलो हर्ट्स और FM 100.9 MHz पर ये आकाशवाणी का श्री विजयपुरम केंद्र है। इस समय संध्या के 7 बजे हैं।

श्रोताओं, अब हम आपको आज के इस सभा के कुछ कार्यक्रमों के बारे में बता दें। 7:15 पर मौसम की जानकारी, जलयानों का यात्रा कार्यक्रम व जन सूचनाएं आप सुन पाएंगे। 7:20 का कार्यक्रम दिल ने फिर याद किया आप सुनेंगे 7:20 पर। 7:30 पर युवाणी में देश की शान कार्यक्रम केंद्रित होगा धरती आबा भगवान बिरसा मुंडा पर। दिल्ली से प्रसारित सरकार के 12 वर्ष होने के उपलक्ष में विभिन्न विषयों पर आधारित विशेष द्विभाषी कार्यक्रम श्रृंखला की रिकॉर्डिंग आप सुनेंगे रात्रि 8 बजे। आठ बजकर 35 पर रोजगार समाचार व गौरव गान प्रसारित किया जाएगा और रात्रि 10 बजे फरमाइशी फिल्मी गीतों का कार्यक्रम आप सुनेंगे संदेशे आते हैं। ये तो थे आज इस सभा में प्रसारित होने वाले शेष कार्यक्रम। और अब कल प्रसारित होने वाले कुछ कार्यक्रमों के बारे में हम आपको बता दें। कल सुबह 5:30 पर अनमोल विचार, तत्पश्चात प्रभाती वंदना आप सुनेंगे। एग्री टिप्स में जानेंगे टमाटर में कीट वैधिक नियंत्रण विषय पर जानकारी 5:55 पर। 6:10 पर जलयानों के यात्रा कार्यक्रम से हम आपको अवगत करवाएंगे। 7:15 कार्यक्रम केंद्रित होगा गम शीर्षक पर 6:15 पर। 6:30 पर रामचरितमानस गान प्रसारित किया जाएगा। 7:50 की जानकारी व कार्यक्रमों का विवरण बताया जाएगा 6:50 पर। 7:00 आप सुन पाएंगे जन सूचनाएं। फिल्मी देशभक्ति गीतों से सजा कार्यक्रम देश रागनी का आनंद ले पाएंगे 7:15 पर। इसी समय विविध भारती मुंबई से आप सुनेंगे प्रायोजित कार्यक्रम भूले पिसरे गीत। 7:30 पर गुड मॉर्निंग अंडमान में साहित्य दर्पण में आप कुमकुम झा से काव्य पाठ सुनेंगे, साथ ही कुछ फिल्मी गीत सुनवाया जाएगा। 7:00 के कार्यक्रम में गायिका होंगी रिचा शर्मा 8:30 पर। फिल्मी गीतों का कार्यक्रम तराने सुहाने का आप आनंद ले पाएंगे 9:00। 10:00 फिल्मी गीतों का कार्यक्रम होगा गीत गाता चल।

0: ये तो थे कल सुबह में प्रसारित होने वाले कुछ कार्यक्रम। ये आकाशवाणी का श्री विजयपुरम केंद्र है। 7:05 पर आप सुनेंगे प्रादेशिक समाचार इस अंतराल के बाद।
1: एक जमाने में हुकुम सिंह को घर वाले कुरकुरदास बुलाते थे, क्योंकि लाइट पंखे चालू देखते ही वो सब पर चिल्लाने लगते थे।
2: अरे रमुआ, ये पंखा क्यों खुला छोड़ा? बिजली का बिल क्या तेरा बापू भरेगा?
1: पर आज उन्हें सब प्यारे लाल बुलाते हैं, क्योंकि जब से उन्होंने सोलर पैनल लगवाया है तब से मीटर की सुई भी चैन से सोती है और हुकुम सिंह भी। पीएम सूर्य घर मुफ्त बिजली योजना, आज ही रजिस्टर करें pmsuryaghar.gov.in पर।
3: हर घर सूर्य घर।
4: नमस्कार, आकाशवाणी श्री विजयपुरम से प्रस्तुत है प्रादेशिक समाचार। मुख्य समाचार। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा, सरकार ने पिछले 12 वर्षों में युवाओं, महिलाओं और किसानों को सशक्त बनाया। केंद्र सरकार के 12 वर्ष पूर्ण होने के उपलक्ष्य में अंडमान निकोबार द्वीप समूह में विभिन्न जन जागरूकता कार्यक्रम आयोजित किए जा रहे हैं। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने आज नई दिल्ली में भूमि पतन प्रबंधन प्रणाली विनिमय का शुभारंभ किया और केंद्रीय द्वीपीय कृषि अनुसंधान संस्थान ने आज उर्वरकों के संतुलित उपयोग पर सरपंच सम्मेलन और परामर्श बैठक का आयोजन किया। सांध्य समाचारों के साथ मैं अनीता क्रिकेटा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज कहा कि सरकार ने पिछले 12 वर्षों में देश के युवाओं, महिलाओं और किसानों को सशक्त बनाने में कोई कसर नहीं छोड़ी है। सोशल मीडिया पोस्ट में मोदी ने कहा कि 140 करोड़ नागरिकों के आशीर्वाद और राष्ट्र प्रथम की भावना से प्रेरित होकर सरकार विश्वास, विकास और जन कल्याण के लिए समर्पित है। प्रधानमंत्री ने कहा कि इन अथक प्रयासों के फलस्वरूप आज देश ने बुनियादी ढांचे से लेकर डिजिटल क्रांति तक वैश्विक मंच पर एक नई पहचान हासिल की है। मोदी ने इस बात पर जोर दिया कि विकसित भारत के अपने संकल्प को साकार करने के लिए सरकार सेवा, सुशासन और समृद्धि के इस पथ पर निरंतर आगे बढ़ती रहेगी। भारतीय जनता पार्टी के वरिष्ठ नेता नरेंद्र मोदी ने आज ही के दिन वर्ष 2024 को लगातार तीसरी बार भारत के प्रधानमंत्री पद की शपथ ली थी। अपने तीसरे कार्यकाल में सरकार ने आर्थिक विकास, बुनियादी ढांचे के विस्तार, सामाजिक कल्याण, रोजगार सृजन और वैश्विक मंच पर भारत की स्थिति को मजबूत करने जैसे प्रमुख क्षेत्रों पर विशेष ध्यान दे रही है। गृह मंत्री अमित शाह ने कहा कि प्रधानमंत्री मोदी ने अपने अथक प्रयासों से एक भी दिन छुट्टी लिए बिना राष्ट्र और नागरिकों की सेवा की है। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने कहा कि प्रधानमंत्री मोदी के दूरदर्शी नेतृत्व ने पिछले 12 वर्षों में सेवा भावना के माध्यम से शासन को नया रूप दिया है और यह सुनिश्चित किया है कि विकास का लाभ समाज के हर वर्ग तक पहुंचे। भारतीय जनता पार्टी के अंडमान एवं निकोबार प्रदेश अध्यक्ष अनिल तिवारी ने आज श्री विजयपुरम में आयोजित एक संवाददाता सम्मेलन में कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में केंद्र सरकार के 12 वर्ष पूर्ण होने के उपलक्ष्य में 5 जून से 21 जून तक विभिन्न जन जागरूकता कार्यक्रम आयोजित किए जा रहे हैं। श्री तिवारी ने कहा कि पिछले वर्षों में आधारभूत संरचना, सड़क, राजमार्ग, डिजिटल भुगतान, रक्षा तथा जन कल्याण के क्षेत्रों में अनेक पहल की गई है। उन्होंने कहा कि अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस के अवसर पर भी विभिन्न कार्यक्रम आयोजित किए जाएंगे। इस अवसर पर भाजपा के प्रदेश उपाध्यक्ष मोहन हलदर ने कहा कि विश्व पर्यावरण दिवस से शुरू हुए अभियान के अंतर्गत एक पेड़ माँ के नाम कार्यक्रम चलाया जा रहा है। उन्होंने कहा कि द्वीप समूह में जैविक खेती को बढ़ावा देने के लिए वर्मी कंपोस्ट और प्राकृतिक खेती संबंधी शिविर आयोजित किए जाएंगे। श्री हलदर ने बताया कि प्रधानमंत्री सूर्य घर मुफ्त बिजली योजना सहित विभिन्न केंद्रीय योजनाओं के संबंध में लोगों को जागरूक करने के लिए गांव-गांव संपर्क अभियान चलाया जाएगा। उन्होंने कहा कि प्रमुख पर्यटन स्थलों पर स्वच्छता और प्लास्टिक हटाओ अभियान भी चलाया जाएगा। इसके अलावा द्वीप समूह में हुए विकास कार्यों को प्रदर्शित करने के लिए प्रदर्शनी आयोजित की जाएगी।

संवाददाता सम्मेलन में पार्टी के अन्य पदाधिकारी एवं कार्यकर्ता भी उपस्थित थे। सरकारी ई मार्केट प्लेस जेम ने सार्वजनिक खरीद को पूरी तरह से डिजिटल कर दिया है। आज नई दिल्ली में संवाददाता सम्मेलन को संबोधित करते हुए जेम के मुख्य कार्यकारी अधिकारी मिहिर कुमार ने कहा कि पिछले 12 वर्षों में पारदर्शिता, प्रौद्योगिकी, समावेशन और नागरिक केंद्रित सेवा वितरण के बल पर भारत ने उल्लेखनीय वृद्धि की है। श्री कुमार ने कहा कि जेम पर भाग लेने वाले सूक्ष्म और लघु उद्यमों की संख्या 2016-17 में लगभग 2300 से बढ़कर आज लगभग 12 लाख हो गई है। श्री कुमार ने कहा कि जेम पर महिला स्वामित्व वाले सूक्ष्म और लघु उद्यमों की संख्या भी 2016-17 में 268 से बढ़कर आज 2,16,000 से अधिक हो गई है। उन्होंने कहा कि महिला उद्यमों द्वारा की गई खरीद 8 करोड़ रुपए से बढ़कर 93,000 करोड़ रुपए से अधिक हो गई है। प्रादेशिक समाचार आप आकाशवाणी श्री विजयपुरम से सुन रहे हैं। समाचारों में आगे प्रमुख है, भूमि पतन प्रबंधन प्रणाली विनिमय का शुभारंभ और परामर्श बैठक। आकाशवाणी श्री विजयपुरम से प्रसारित होने वाला यह प्रादेशिक समाचार बुलेटिन आप मीडियम वेव के साथ साथ एफएम 100.9 मेगाहर्ट्ज पर भी सुन रहे हैं। प्रादेशिक समाचार के अलावा सुबह 9 बजे, 10 बजे और 11 बजे प्रति घंटा न्यूज हेडलाइंस एफएम रेडियो पर भी उपलब्ध है। प्रादेशिक समाचार में आपका फिर स्वागत है। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने आज नई दिल्ली में भूमि पतन प्रबंधन प्रणाली विनिमय का शुभारंभ किया। इसका उद्देश्य तकनीकी सहायता से सीमा पार व्यापार और यात्रियों की आवाजाही को अधिक सुगम, पारदर्शी और सुरक्षित बनाना है। इस अवसर पर एकत्र जनसमूह को संबोधित करते हुए श्री शाह ने कहा कि यह प्रणाली आधुनिक और प्रौद्योगिकी संचालित सीमा प्रबंधन प्रणाली के निर्माण की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम है। गृह मंत्री ने कहा कि भूमि पतन न केवल सीमा सुरक्षा और व्यापार को बढ़ाते हैं बल्कि अवैध कब्जों और गैर कानूनी गतिविधियों को रोकने में भी मदद करते हैं। श्री शाह ने कहा कि सरकार डिजिटल प्रौद्योगिकी और सक्षम प्रबंधन प्रणालियां अपनाकर सीमा सुरक्षा सुदृढ़ करने के प्रति वचनबद्ध है। भूमि पतन प्रबंधन प्रणाली एक डिजिटल प्लेटफॉर्म है जिसका निर्माण भूमि पतनों के बीच एकीकृत प्रणाली कायम करने के लिए किया गया है। इससे लॉजिस्टिक के सुरक्षित और वास्तविक समय आदान प्रदान में मदद मिलेगी और भूमि पतनों को हवाई अड्डों तथा समुद्री बंदरगाहों के समान डिजिटल प्रणालियां प्रदान करने में मदद मिलेगी। देशव्यापी खेत बचाओ अभियान के तहत केंद्रीय द्वीपीय कृषि अनुसंधान संस्थान ने आज उर्वरकों के संतुलित उपयोग पर एक सरपंच सम्मेलन और परामर्श बैठक आयोजित की। कार्यक्रम में प्रधान वैज्ञानिक और प्रमुख डॉक्टर वाई रामकृष्ण ने द्वीप समूह में संतुलित पोषक तत्व प्रबंधन और टिकाऊ कृषि प्रणालियों को बढ़ावा देने के लिए सभी हितधारकों के बीच समन्वित प्रयासों के महत्व पर जोर दिया। अंडमान निकोबार प्रशासन के कृषि निदेशक देवव्रत बसंतिया ने खेत बचाओ अभियान के उद्देश्यों पर प्रकाश डाला और मिट्टी के स्वास्थ्य को संरक्षित करने की आवश्यकता पर जोर दिया। उन्होंने किसानों से समय समय पर मिट्टी की जांच कराने का आग्रह किया। केंद्रीय द्वीपीय कृषि अनुसंधान संस्थान के निदेशक डॉक्टर जय सुंदर ने किसानों से जैविक और प्राकृतिक खेती के तरीके अपनाने को कहा। उन्होंने टिकाऊ पोषक तत्व प्रबंधन में मदद करने और केमिकल फर्टिलाइजर पर निर्भरता कम करने के लिए ब्लॉक स्तर पर वर्मी कम्पोस्ट उत्पादन यूनिट स्थापित करने की जरूरत पर भी जोर दिया। इस कार्यक्रम में वैज्ञानिकों, कृषि विभाग, सेंट्रल इंटीग्रेटेड पेस्ट मैनेजमेंट सेंटर, कृषि विज्ञान केंद्रों, सरपंचों, दक्षिण अंडमान की 8 पंचायतों के पंचायती राज संस्थान के सदस्यों और किसानों ने भाग लिया। दूरदर्शन केंद्र द्वारा कल शाम 5:30 बजे से मानसून के मौसम में पालतू जानवरों की देखभाल विषय पर लाइव फोन इन कार्यक्रम पेट टॉक बियॉन्ड द बॉन्ड का प्रसारण करेगा। एनिमल हस्बेंड्री ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट LFC डॉलीगंज की सीनियर वेटनरी ऑफिसर डॉक्टर इंद्रजीत कौर दर्शकों के सवालों के जवाब देंगी। दर्शक फोन नंबर 245662 या 244745 पर कॉल करके इस लाइव फोन इन कार्यक्रम में शामिल हो सकते हैं। महात्मा गांधी राजकीय महाविद्यालय मायाबंदर में शैक्षणिक सत्र 2026-27 के लिए विभिन्न स्नातक पाठ्यक्रमों में प्रवेश हेतु ऑनलाइन आवेदन प्रक्रिया शुरू

0: की जा रही है। महाविद्यालय द्वारा कुल 7 स्नातक पाठ्यक्रमों में विभिन्न विषयों में प्रवेश के लिए आवेदन आमंत्रित किए गए हैं। आवेदन प्रक्रिया 30 जून तक चलेगी। अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा, सरकार ने पिछले 12 वर्षों में युवाओं, महिलाओं और किसानों को सशक्त बनाया। केंद्र सरकार के 12 वर्ष पूर्ण होने के उपलक्ष में अंडमान निकोबार द्वीप समूह में विभिन्न जन जागरूकता कार्यक्रम आयोजित किए जा रहे हैं। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने आज नई दिल्ली में भूमि पतन प्रबंधन प्रणाली विनिमय का शुभारंभ किया और केंद्रीय द्वीपीय कृषि अनुसंधान संस्थान ने आज उर्वरकों के संतुलित उपयोग पर सरपंच सम्मेलन और परामर्श बैठक का आयोजन किया। इसके साथ ही प्रादेशिक समाचार का ये बुलेटिन समाप्त हुआ। नमस्कार।
1: ये आकाशवाणी का श्री विजयपुरम केंद्र है। 7:15 हुए हैं। लीजिए अब सुनिए मौसम की जानकारी, जलयानों का यात्रा कार्यक्रम व जन सूचनाएं। पहले मौसम। मौसम विभाग से प्राप्त सूचना के अनुसार अंडमान तथा निकोबार द्वीप समूह में हल्की सी मध्यम वर्षा हुई। जन सेवाओं के लिए कोई सूचना नहीं है। मछुआरों को मौसम संबंधी अनुमान में बताया जाता है कि खराब मौसम के चलते अंडमान तथा निकोबार सागर में वायु की गति 40 से 50 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से चलेगी, जो बढ़कर 60 किलोमीटर प्रति घंटा हो सकती है, जिस कारण समुद्र अत्यधिक अशांत रहेगा। मछुआरों को सलाह दी जाती है कि वे 12 जून तक समुद्र में ना जाएं। ये था मौसम का हाल।

जहाज रानी सेवा निदेशालय से प्राप्त सूचना के अनुसार जलयानों की यात्रा कार्यक्रम MV हटबे कल सुबह 7 बजे मायाबंदर होते हुए डिगलीपुर की यात्रा पर श्री विजयपुरम से चलेगा। जलयान 11 तारीख को सुबह 7 बजे डिगलीपुर से छूटकर मायाबंदर होते हुए श्री विजयपुरम आएगा। लिटिल अंडमान जाने के लिए MV सेंटिनल 11 तारीख को सुबह 7 बजे श्री विजयपुरम से प्रस्थान करेगा। जलयान उसी दिन रात 8 बजे लिटिल अंडमान से श्री विजयपुरम के लिए वापसी यात्रा करेगा। MV कालीघाट 11 तारीख को सुबह 7 बजे लिटिल अंडमान का निकोबार चौरा तेरेसा कचाल नैनकोरी माकाचुहा और अराफा बे होते हुए कैमल बे की यात्रा पर श्री विजयपुरम से चलेगा। जलयान 15 तारीख को सुबह 5 बजे कैमल बे से छूटकर इन्हीं मार्गों से होते हुए श्री विजयपुरम वापस पहुंचेगा। जलयान सिंधु नैनकोरी होते हुए कैमल बे जाने के लिए 16 तारीख को सुबह 9 बजे श्री विजयपुरम से जाएगा और 18 तारीख को सुबह 8 बजे कैमल बे से छूटकर इन्हीं मार्गों से होते हुए श्री विजयपुरम वापस आएगा। MV रानीचंगा कल सुबह 6 बजे स्वराज द्वीप और लॉन्ग आइलैंड होते हुए रंगत की यात्रा पर श्री विजयपुरम से चलेगा। जलयान कल ही दोपहर 12 बजे रंगत से छूटकर इन्हीं मार्गों से होते हुए श्री विजयपुरम पहुंचेगा। शहीद द्वीप के लिए MV कमोटा कल सुबह 6:15 पर श्री विजयपुरम से प्रस्थान करेगा और कल ही सुबह 8:30 पर शहीद द्वीप से श्री विजयपुरम लौटेगा। MV स्टेट आइलैंड शहीद द्वीप के लिए कल सुबह 6:15 पर श्री विजयपुरम से प्रस्थान करेगा और कल ही सुबह 8:45 पर स्वराज द्वीप से श्री विजयपुरम आएगा। MV नॉर्थ पैसेज कल दिन में 11 बजे शहीद द्वीप के लिए श्री विजयपुरम से रवाना होगा और कल ही दोपहर 1 बजे शहीद द्वीप से स्वराज द्वीप जाएगा और दोपहर बाद 2:30 पर स्वराज द्वीप से श्री विजयपुरम वापस लौटेगा। MV जॉलीबाई कल दिन में 11:30 पर स्वराज द्वीप के लिए श्री विजयपुरम से चलेगा और कल ही दोपहर 2 बजे स्वराज द्वीप से शहीद द्वीप जाएगा और दोपहर बाद 3:30 पर शहीद द्वीप से श्री विजयपुरम वापस आएगा। MV रानी लक्ष्मी कल सुबह 7 बजे शहीद द्वीप स्वराज द्वीप स्टेट आइलैंड

कदम तल्ला और लॉन्ग आइलैंड होते हुए रंगत की यात्रा पर श्री विजयपुरम से प्रस्थान करेगा। जलयान 11 तारीख को सुबह 7 बजे रंगत से छूटकर इन्हीं रास्तों से होते हुए श्री विजयपुरम वापस पहुंचेगा। एमवी बाराटन कल दोपहर बाद 2:30 पर शहीद द्वीप की यात्रा पर श्री विजयपुरम से चलेगा। जलयान कल ही शाम 4:30 पर शहीद द्वीप से श्री विजयपुरम पहुंचेगा। एमवी कमोटा कल शाम 5 बजे स्वराज द्वीप के लिए श्री विजयपुरम से चलेगा। जलयान 11 तारीख को सुबह 5:30 पर स्वराज द्वीप से छूट कर शहीद द्वीप होते हुए श्री विजयपुरम आएगा। अभी आप जलियानों का यात्रा कार्यक्रम सुन रहे थे।

जन सूचनाएं इसके अंतर्गत सुनिए एक आवश्यक सूचना। महिला एवं बाल विकास मंत्रालय भारत सरकार द्वारा प्रधानमंत्री राष्ट्रीय बाल पुरस्कार 2026 हेतु नामांकन आमंत्रित किए गए हैं। प्रधानमंत्री राष्ट्रीय बाल पुरस्कार PMRBP देश का एक प्रतिष्ठित राष्ट्रीय पुरस्कार है जो 18 वर्ष से कम आयु के बच्चों की असाधारण उपलब्धियों को सम्मानित करने के लिए प्रदान किया जाता है। ये पुरस्कार वीरता, समाज सेवा, पर्यावरण, खेल, कला एवं संस्कृति तथा विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी के क्षेत्र में उत्कृष्ट कार्य करने वाले बच्चों को दिया जाता है। नामांकन एवं अनुशंसा केवल ऑनलाइन माध्यम से राष्ट्रीय पुरस्कार पोर्टल awards.gov.in पर भेजी जा सकती है। नामांकन जमा करने की अंतिम तिथि 31 जुलाई 2026 निर्धारित की गई है। इसी के साथ ही जन सूचनाएं समाप्त हुई। ये आकाशवाणी का श्री विजयपुरम केंद्र है। अब आरंभ होता है फिल्मी गीतों का कार्यक्रम दिल ने फिर याद किया। श्रोताओं, कार्यक्रम का पहला गाना हमने लिया है फिल्म तरकीब से। गायक कलाकार है अलका याग्निक और विनोद राठौर। निदा फजली के बोल को सुरों में ढाला है आदेश श्रीवास्तव ने।

शान और सुनीता राव के युगल स्वरों में सुनते हैं गुलजार की गीत रचना। संगीत अनु मलिक का है तथा फिल्म का नाम है अशोका।

शान और सुनीता राव के गाए फिल्म अशोका के इस गीत के साथ ही फिल्मी गीतों का कार्यक्रम दिल ने फिर याद किया अब संपन्न होता है। यह आकाशवाणी का श्री विजयपुरम केंद्र है। 7:30 हुए हैं। अब आरंभ होता है युवा श्रोताओं का कार्यक्रम युवाणी।

नमस्कार दोस्तों, रिश्तों की खूबसूरती शब्दों में नहीं बल्कि विश्वास, सम्मान और समझदारी में होती है। जहाँ ये तीनों मौजूद हो, वहाँ हर रिश्ता समय के साथ और भी मजबूत हो जाता है। जी दोस्तों, इसी विचार के साथ आइए शुरुआत करते हैं आज का हमारा युववाणी कार्यक्रम। दोस्तों, किरण बेदी भारत की पहली महिला IPS अधिकारी है। उनका जन्म आज के दिन यानी 9 जून सन 1949 को अमृतसर, पंजाब में हुआ था। उन्होंने सन 1972 में भारतीय पुलिस सेवा में प्रवेश किया और अपने साहस, ईमानदारी तथा अनुशासन के लिए प्रसिद्ध हुई। उन्होंने दिल्ली की तिहाड़ जेल में कई महत्वपूर्ण सुधार किए, जिससे कैदियों के जीवन में सकारात्मक बदलाव आया। उनके उत्कृष्ट कार्यों के लिए उन्हें सन 1994 में रेमोन मैग्सेसे अवार्ड से सम्मानित किया गया। वे सामाजिक कार्यकर्ता, लेखिका और प्रेरणादायक व्यक्ति भी है। किरण बेदी महिलाओं के सशक्तिकरण और समाज सेवा की एक प्रेरणादायक मिसाल है।

दोस्तों, आज मंगलवार है और आज के दिन हम आपके लिए लेकर आते हैं कार्यक्रम देश की शान।

0: दोस्तों, भारत के स्वतंत्रता संग्राम के इतिहास में अनेक महान वीरों ने अपने साहस, त्याग और बलिदान से अमिट छाप छोड़ी है। इन्हीं महान स्वतंत्रता सेनानियों में एक नाम बिरसा मुंडा का भी है, जिन्हें आदिवासी समाज के भगवान और जननायक के रूप में सम्मान दिया जाता है। बिरसा मुंडा ने ब्रिटिश शासन और शोषण के विरुद्ध संघर्ष पर आदिवासी समुदाय के अधिकारों की रक्षा के लिए अपना जीवन समर्पित कर दिया। उनकी अद्भुत नेतृत्व क्षमता, देशभक्ति और सामाजिक सुधारों के प्रति समर्पण ने उन्हें भारत के सबसे महत्वपूर्ण स्वतंत्रता सेनानियों में स्थान दिलाया। आज भी उनका जीवन हमें अन्याय के विरुद्ध खड़े होने, अपने अधिकारों के लिए संघर्ष करने और देश के प्रति समर्पित रहने की प्रेरणा देता है। तो दोस्तों, आइए इसी संदर्भ में सुनते हैं यह रूपक धरती आबा बिरसा मुंडा।
1: धरती पर एक ऐसा भी समय था जब जंगल सिर्फ पेड़ों का घर नहीं थे, बल्कि पूरे समाज की सांसों का आधार थे। जहां मिट्टी सिर्फ खेतों में उगने वाली फसल नहीं थी, बल्कि जीवन की तावीज थी। जहां हवा में सिर्फ खुशबू नहीं थी, बल्कि पुकार थी आज़ादी की, अस्मिता की और अपने अस्तित्व को बचाने की। वहीं कहीं इन्हीं वन प्रदेशों में, अनगढ़ लेकिन पवित्र गोद में, एक ऐसा शिशु जन्मा जिसे आने वाले समय में उसके लोग सिर्फ नेता नहीं, मसीहा कहने लगे। एक ऐसा क्रांतिकारी जिसकी पुकार ने जंगलों, पहाड़ियों और घाटियों को हिला दिया, जिसने मिट्टी की भाषा में लड़ना सीखा पर साहस की भाषा में विजय लिखी। उस युग में आदिवासी समाज पर दोहरी मार थी, एक तरफ ब्रिटिश हुकूमत का अत्याचार, दूसरी तरफ उसके अपने जंगल और जमीन पर बढ़ती हुई बाहरी दखलंदाजी। आदिवासी समाज अपनी धरती के साथ गहरा रिश्ता रखता था, धरती उनके लिए माँ थी, जंगल उनके लिए जीवन की पाठशाला थी। लेकिन धीरे धीरे यही धरती

से छीनी जाने लगी। जंगलों की कटाई बढ़ने लगी। ज़मीनें जमींदार और अंग्रेज़ राज सत्ता हड़पने लगे। आदिवासी समाज को मजदूर, बंधुआ और गुलाम बनने पर मजबूर किया जा रहा था। ऐसे समय में किसी एक को आना ही था जो सिर्फ आवाज़ न बने बल्कि पूरी कौम का प्रेरणा स्रोत बने, जो सिर्फ विरोध ना करे बल्कि इतिहास बदल दे, जो सिर्फ एक व्यक्तित्व ना रहे बल्कि एक युग की पहचान बन जाए। और यही वह क्षण था जब उस धरती ने अपनी गोद में से एक ऐसे वीर को जन्म दिया जिसे आने वाली पीढ़ियां धरती आबा कहकर याद करने लगी, जो थे भगवान बिरसा मुंडा।

उनका जन्म 19वीं शताब्दी के उत्तरार्ध में छोटा नागपुर की गोद में हुआ, एक ऐसी भूमि जहां संस्कृति, श्रद्धा और प्रकृति एक ही धारा में बहती थी। बचपन से ही वह प्रकृति से गहरा जुड़ाव रखते थे। महुए के पेड़, साल के जंगल, झरनों का संगीत, ढोल नगाड़ों की धुन, मिट्टी की खुशबू, यही उनका संसार था। उनके परिवार की आर्थिक स्थिति साधारण थी, लेकिन संस्कृति में वे अत्यंत संपन्न थे, क्योंकि आदिवासी जीवन शैली में धन का नहीं बल्कि स्वतंत्रता का मोल था। इसी स्वतंत्रता को बचाने की भावना उनके भीतर बचपन से ही पनपने लगी थी। बचपन में वह अत्यंत तेज, जिज्ञासु और ऊर्जा से भरे हुए थे। स्थानीय बोलियां, लोकगीत, वन धर्म, इनका गहरा प्रभाव उनके भीतर था। उनके स्वभाव में एक अजीब सी चमक थी, जैसे प्रकृति ने उन्हें किसी विशेष कार्य के लिए चुना हो। वह जहाँ जाते, लोग उन्हें अलग नज़र से देखते, आशा और विश्वास की नज़र।

उनकी औपचारिक शिक्षा मिशनरी स्कूलों से शुरू हुई। यह वही समय था जब उन्होंने दुनियावी ज्ञान के साथ साथ यह भी समझा कि उनकी भाषा, उनकी संस्कृति और उनका समाज किन दबावों से गुजर रहा है। ब्रिटिश सत्ता द्वारा धर्मांतरण के बढ़ते प्रयासों, आर्थिक शोषण और सांस्कृतिक दमन ने उन्हें भीतर से झकझोर दिया। उन्हें यह महसूस हुआ कि शिक्षा और धर्म के नाम पर आदिवासियों की आत्मा को धीरे धीरे कमजोर किया जा रहा था। यहीं से उनकी चेतना में क्रांतिकारी चिंगारी जन्मी, एक ऐसी चिंगारी जो भविष्य में आदिवासी इतिहास को नया रूप देने वाली थी।

युवावस्था में उन्होंने एक गहरी आध्यात्मिक अनुभूति प्राप्त की। कहा जाता है कि वह घंटों जंगलों में साधना और चिंतन करते थे। प्रकृति उनके लिए सिर्फ वातावरण नहीं थी, बल्कि एक संवाद था धरती से, पेड़ों से, हवाओं से, अपनी आत्मा से। धीरे धीरे वह अपने समाज के लिए एक दिव्य पुरुष, एक संत, एक मार्गदर्शक के रूप में उभरने लगे। लोगों ने उन्हें एक आध्यात्मिक नेता, एक सांस्कृतिक रक्षक और एक योद्धा के रूप में देखना शुरू किया। इसी दौर में उन्हें वह उपाधि मिली, धरती आबा, यानी धरती के पिता। वे सिर्फ धार्मिक नहीं थे, बल्कि सामाजिक चेतना के वाहक।

उन्होंने पेड़ों को वस्तु नहीं बल्कि जीवन समझा, धरती को सोने की खान नहीं बल्कि माँ समझा, और मनुष्यता को धर्म से ऊपर रखा। ब्रिटिश शासन ने जबरन जंगलों पर कानून बना लिया था। आदिवासी जिनका जीवन जंगलों पर आधारित था, अचानक अपराधी ठहरा दिए गए। वे अपनी ही धरती पर बेगाने बना दिए गए। जमींदारों और साहूकारों ने मनमानी करके ज़मीनें हड़प ली। आदिवासी समाज का खून चूसने के लिए नए नए कर लगाए जाने लगे। हर तरफ शोषण, अन्याय और भुखमरी का माहौल था। ऐसे समय में धरती आबा ने पूरी ताकत से अपनी कौम को एकजुट किया। उन्होंने पुकारा, ये धरती हमारी माँ है, हम इसे किसी भी कीमत पर खोने नहीं देंगे। और इसी पुकार से जन्म हुआ एक बड़े विद्रोह का। उलगुलान, जिसका मतलब है महाव्यवस्था, परिवर्तन। यह सिर्फ विद्रोह नहीं था, यह आंदोलन था धर्म का, संस्कृति का, जमीन का, आज़ादी का और अस्मिता का। धरती आबा ने अबू आदिशुम, अबू आराज यानी हमारा देश हमारा राज का नारा दिया। यह नारा आज भी झारखंड की आत्मा है। उलगुलान की विशेषताएं थी भूमि हड़पने के खिलाफ संघर्ष, आदिवासी पहचान और संस्कृति की रक्षा, ब्रिटिश अत्याचारों का विरोध, समाज में समानता और आत्मसम्मान का पुनर्निर्माण, और स्वशासन और जंगल के अधिकार। उनका आंदोलन सिर्फ राजनीतिक नहीं था बल्कि सामाजिक और आध्यात्मिक भी था। उन्होंने अपने अनुयायियों को साफ सुथरा रहने, संगठित होने और अपनी संस्कृति को बचाने का संदेश दिया। उनके नेतृत्व में आदिवासियों ने एकजुट होकर ब्रिटिश सत्ता को हिला दिया। जंगल उनके रणभूमि बन गई, पहाड़ उनके प्रहरी बने और हर आदिवासी योद्धा बन गया। भगवान बिरसा मुंडा की लोकप्रियता इतनी तेजी से बढ़ी कि ब्रिटिश सरकार डर गई। उन्होंने भगवान बिरसा मुंडा को एक बड़ा खतरा माना, क्योंकि वह सिर्फ नेता नहीं थे, एक प्रतीक बन चुके थे। अंग्रेजों ने उन्हें पकड़ने के लिए बड़े अभियान चलाए। उनके अनुयायियों को गिरफ्तार किया गया, गांव जलाए गए, परिवारों को सताया गया। लेकिन हर दमन के बाद उनका प्रभाव और बढ़ता गया। उनका नाम आदिवासी समाज की नसों में दौड़ने लगा। वह आशा का दीपक बन चुके थे। अंततः ब्रिटिश सरकार ने उन्हें गिरफ्तार किया। कहा जाता है कि यह गिरफ्तारी भी धोखे से हुई थी। 30 वर्ष से भी कम आयु में उन्हें रांची जेल में बंद किया गया और वहीं उनकी संदिग्ध परिस्थितियों में मृत्यु हो गई। ब्रिटिश सरकार ने उस समय कहा था कि उनकी मृत्यु बीमारी से हुई, लेकिन आदिवासी समाज आज भी इसे स्वीकार नहीं करता। उनके लिए स्पष्ट था कि धरती आबा को खत्म करने के लिए अंग्रेजों ने षड्यंत्र किया, लेकिन यह मृत्यु नहीं थी, यह जन्म था एक अमर विचार का, एक क्रांति का

पहचान का धरती आबा उस दिन से आदिवासी इतिहास के ईश्वर बन गए। आज जब जंगल कट रहे हैं, नदियां सूख रही हैं और आदिवासी समाज अपनी पहचान के लिए संघर्ष कर रहा है, धरती आबा का विचार पहले से कहीं अधिक महत्वपूर्ण हो गया है। उनकी विरासत हमें यह सिखाती है, जमीन सिर्फ संपत्ति नहीं, यह इतिहास है। प्रकृति सिर्फ संसाधन नहीं, अस्तित्व है। संस्कृति सिर्फ परंपरा नहीं, आत्मा है। और स्वतंत्रता सिर्फ राजनीतिक नहीं, सामाजिक और आध्यात्मिक भी है। धरती आबा सिर्फ एक नाम नहीं, एक विचारधारा है जो हर उस व्यक्ति को प्रेरणा देते हैं जो अपने हक, अपने अस्तित्व और अपनी पहचान के लिए संघर्ष कर रहा है।

0: उन्होंने कम उम्र में संसार छोड़ दिया, लेकिन जितना कम समय उन्होंने जिया उससे कहीं विराट विरासत उन्होंने छोड़ी। उनकी आवाज़ अब भी जंगलों में गूंजती है, उनकी स्मृति अब भी मिट्टी की खुशबू में बसती है। उनका संघर्ष आज भी आदिवासी समाज की धड़कन है और उनका नाम आज भी स्वाभिमान की ढाल है। भगवान बिरसा मुंडा ने हमें सिखाया कि मिट्टी से प्रेम करना सिर्फ जन्मसिद्ध अधिकार नहीं, यह कर्तव्य भी है। उन्होंने बताया कि कोई भी समाज अपनी संस्कृति खोकर जीवित नहीं रह सकता। और सबसे महत्वपूर्ण, उन्होंने इतिहास को सिखाया कि जंगलों और पहाड़ों की चुप्पी में भी एक ऐसी पुकार होती है जो सत्ता को हिला सकती है। आज भी जब कोई आदिवासी अपने हक के लिए लड़ता है, जब कोई किसान अपनी ज़मीन बचाने की बात करता है, जब कोई युवा अपनी पहचान पर गर्व करता है, तब धरती आबा मुस्कुराते हैं, क्योंकि यही उनकी असली जीत है। धरती आबा सिर्फ एक क्रांतिकारी नहीं, धरती की आत्मा है।
1: दोस्तों, आप सुन रहे थे रूपक धरती आबा बिरसा मुंडा। इस रूपक के वार्ताकार और लेखक है युवा दीपक कुमार सिंह। तो दोस्तों, आइए कार्यक्रम में बढ़ते हैं आगे और सुनाते हैं आपको एक गीत।

दोस्तों, इसी प्यारे गीत के साथ समाप्त होता है आज का हमारा युववाणी कार्यक्रम। दोस्तों, वादा करते हैं जल्द होगी आपसे मुलाकात। तब तक के लिए दीजिए अनुमति आपकी इस दोस्त अनुप्रिया को। नमस्कार, शुभ रात्रि।

0: ये आकाशवाणी का श्री विजयपुरम केंद्र है। रात्रि के 8 बजे हैं। लीजिए अब सुनिए दिल्ली से प्रसारित सरकार के 12 वर्ष पूर्ण होने के उपलक्ष्य में विभिन्न विषयों पर आधारित विशेष द्विभाषी कार्यक्रम श्रृंखला की रिकॉर्डिंग।
1: ये आकाशवाणी है, विशेष श्रृंखला मोदी सरकार के 12 साल के अंतर्गत। आज सुनिए सूचना और प्रसारण, रेलवे तथा इलेक्ट्रॉनिक्स और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्री अश्विनी वैष्णव के साथ विशेष साक्षात्कार। साक्षात्कार कर रहे हैं पत्रकार शिशिर सिन्हा।
2: नमस्कार। 26 मई 2014, नरेंद्र दामोदर दास मोदी ने करोड़ों भारतीयों की उम्मीदों और आकांक्षाओं के साथ सत्ता संभाली। अब से लेकर 12 वर्ष बीत चुके हैं और इन 12 वर्षों में देश की जनता ने 2 बार और उन्हें अपना आशीर्वाद दिया। इस दौरान हमने कई परिस्थितियां बहुत ही कठिन देखी। कोविड का दौर था, फिर हमारा रूस और यूक्रेन की लड़ाई का भी असर देखने को मिला और उसके बाद अब पश्चिम एशिया का संकट। लेकिन इन सब के बीच भारतीय अर्थव्यवस्था 7% या उससे ज्यादा की दर से विकास करती रही। कैसे संभव हुआ? क्या कुछ रही कहानी? आगे क्या कुछ हो सकता है? इन्हीं मुद्दों पर बातचीत करने के लिए हमारे साथ मौजूद है रेलवे, इलेक्ट्रॉनिकी और सूचना प्रौद्योगिकी और सूचना व प्रसारण मंत्री अश्विनी वैष्णव। सर, बहुत बहुत स्वागत है आपका।
3: नमस्कार
2: सर। 12 वर्षों में आर्थिक जो परिस्थितियां रही, कई चुनौतियां भी थी, कई कठिनाइयां भी थी, लेकिन 7% या उससे ज्यादा की विकास दर को हम हासिल कर पाए। किस तरह से नीतियों ने इसमें मदद की?
3: इन 12 वर्षों में माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी ने देश की अर्थव्यवस्था को बहुत ही एक मैच्योर तरीके से हैंडल किया है। हम अगर आज से 12 वर्ष पहले 2014 में जाएं, 2014 में हमारा पूरा फाइनेंशियल सेक्टर, बैंकिंग सेक्टर ऐसी अजब परिस्थिति में था कि सारी दुनिया में चिंता थी कि भारत जैसी बड़ी अर्थव्यवस्था फ्रेजाइल 5 में गिनी जाने लगी थी। बैंक्स के एनपीएस बहुत हाई थे, बैंकों की बैलेंस शीट्स एकदम प्रैक्टिकली फिनिश होने के कगार पे थी, कौन सा बैंक कब इम्प्लोड हो जाएगा, ऐसी परिस्थितियां थी। आते ही माननीय प्रधानमंत्री जी ने पहले बैंक्स को बहुत सिस्टमेटिक वे में उनके एनपीएस कम करने का प्रोसेस चालू किया, कम से कम करीब 2,50,000 करोड़ के आसपास रिकैपिटलाइज किया बैंक्स की बैलेंस शीट्स को। बैंक्स को प्रॉपर एक हेल्दी कंडीशन में लेके आए, जो आज आप उसका रिजल्ट देख रहे हैं। पब्लिक सेक्टर बैंक्स का प्रॉफिट हाईएस्ट लेवल पे है, एनपीएस लोएस्ट लेवल पे है। उसके बाद में एक इन्वेस्टमेंट का प्रोसेस चालू किया, फिर आया कोविड। कोविड का शॉक था, बहुत बड़ा शॉक था, सारी दुनिया ने झेला, भारत ने उस शॉक के दौरान भी प्रधानमंत्री जी की नीतियों के कारण एक इन्वेस्टमेंट ड्रिवन मॉडल स्टार्ट किया। उस इन्वेस्टमेंट ड्रिवन मॉडल के कारण जो पहले करीब करीब $30 बिलियन के आसपास इन्वेस्टमेंट होता था, आज $130 बिलियन का इन्वेस्टमेंट है देश में। इन्वेस्टमेंट जाता है फिजिकल, डिजिटल और सोशल इंफ्रा में, और उसका रिजल्ट बहुत अच्छा दिखाई देता है। आज हम देखें, चाहे कोई भी सेक्टर हम लें, एयरपोर्ट्स, नंबर ऑफ द एयरपोर्ट्स डबल हो गए, हाईवेज 58,000 किलोमीटर बने, नई रेलवे ट्रैक्स 36,000 किलोमीटर बनी, रेलवे का इलेक्ट्रिफिकेशन 99% कंप्लीट हुआ। कंपेयर करें यूके से तो मेरे ख्याल से less than 50% है। कई दूसरे देशों के कंपैरिजन में बहुत अच्छी परफॉर्मेंस आई, उसका देश में एक प्रभाव पड़ा, प्रोडक्टिविटी बढ़ी, लोगों की सुविधाएं बढ़ी, इंडस्ट्रीज को और ज्यादा ग्रो करने में मदद मिली। साथ ही साथ प्रधानमंत्री जी ने बहुत एक फोकस दिया इंक्लूसिव ग्रोथ। भारतीय जनता पार्टी का मूल विचारों में से एक विचार है अंत्योदय का विचार। इसमें प्रधानमंत्री जी ने अपने राजनीतिक जीवन की शुरुआत से इस पे ध्यान दिया, और जब भारत के प्रधानमंत्री के तौर पर उन्होंने जिम्मेदारी संभाली तो जनधन अकाउंट हो, महिलाओं को सम्मान देने के अधिकार के साथ जो टॉयलेट्स का कंस्ट्रक्शन हो, पक्के घरों का निर्माण हो, हर घर नल से जल पहुंचाने का भागीरथी संकल्प हो, ये ऐसे बड़े बड़े काम हाथ में लिए और उनको डिलीवर सक्सेसफुली किया कि सबसे बड़ा इंक्लूसिव ग्रोथ का पूरे विश्व में उदाहरण है अपने पास। मैन्युफैक्चरिंग पे फोकस किया और इनोवेशन पे फोकस किया और बहुत बड़ा सिंप्लीफिकेशन किया। तो इस तरह की वेल थॉट थ्रू स्ट्रेटेजी के कारण आज भारत 6-8% के ग्रोथ ब्रैकेट में कंसिस्टेंटली रहेगा।
2: और अब जो हम कहते थे कि फ्रेजाइल 5 में है, अब वो कहीं पीछे रह गया है, क्योंकि आप

0: रेलवे का कार्यभार काफी समय से संभाल रहे हैं और मोदी सरकार के तीसरे कार्यकाल में करीब 56 परियोजनाओं की मंजूरी दी गई जिसमें लगभग 2,38,000 करोड़ रुपए का निवेश है। हम कहते हैं कि जब कभी भी किसी भी कैपिटल एक्सपेंडिचर होता है उसका एक मल्टीप्लायर इफेक्ट होता है, यानी कि आप 1 रुपया खर्च करते हैं तो 3 या 4 रुपए तक उसका फायदा देखने को मिलता है। रेलवे की परियोजनाओं से जो बदलाव हुआ है उसे आप किस तरीके से परिभाषित करते हैं?
1: बड़ा फंडामेंटल चेंज आया है। अगर आप 2014 से पहले देखें तो एक साल में 700-800 हजार किलोमीटर इलेक्ट्रिफिकेशन होता था, आज 6,000-7,000 किलोमीटर इलेक्ट्रिफिकेशन साल का करके करीब करीब पूरे देश के रेलवे नेटवर्क को 99.4% इलेक्ट्रिफाई कर चुके हैं। 70,000 किलोमीटर के आसपास ट्रैक्स को अपग्रेड किया, जो पुरानी पटरियां थी हालत बहुत खराब थी, स्लीपर्स टूटे हुए रहते थे, उन सबको रिप्लेस करके करीब 70,000 किलोमीटर को रेलवे ट्रैक्स को अपग्रेड किया। 36,000 किलोमीटर नए रेलवे ट्रैक बने, 1,300 स्टेशन का पुनर्निर्माण नव निर्माण हो रहा है। 1,300 स्टेशन में से करीब करीब 250 स्टेशन कम्प्लीट हो चुके हैं, इस साल के अंत तक 500 स्टेशन कम्प्लीट हो जाएंगे। 5,000 किलोमीटर रेलवे ट्रैक का निर्माण एक वर्ष में करना, मैंने स्विट्जरलैंड का रेलवे नेटवर्क है 5,000 किलोमीटर का, पूरा स्विट्जरलैंड के रेलवे नेटवर्क के बराबर का रेलवे नेटवर्क एक साल में ऐड करना, कई वर्षों पुराने जो प्रोजेक्ट्स पड़े थे जिनको माने प्रधानमंत्री जी का जो प्रगति का मैकेनिज्म है जिसमें हर महीने वो जो प्रोजेक्ट्स रुके हुए होते हैं देश भर में वो उन पे ध्यान देते हैं, उनका रिव्यू करते हैं चीफ सेक्रेटरी डिपार्टमेंट उन सबके साथ मिलके, तो प्रगति मैकेनिज्म के कारण बहुत सारे प्रोजेक्ट्स आगे आए। ओवरऑल बहुत बड़ा चेंज आया। कई प्रोजेक्ट जैसे चिनाब का ब्रिज अगर आप देखते हैं तो चिनाब के ब्रिज को तो लोगों ने एक तरीके से राइट ऑफ ही कर दिया था कि ये बन ही नहीं सकता, और बारामूला से श्रीनगर तक ही रेलवे लाइन का और जम्मू से कटरा तक ही रेलवे लाइन को करके एक तरीके से अबैंडन सा ही कर दिया था इस प्रोजेक्ट को, प्रधानमंत्री जी ने इसको कम्प्लीट किया।
0: सर, हम लोग जब प्राइवेट सेक्टर की बात करते हैं तो दुनिया भर में एक नीति अपनाई जाती है, उसको हम लोग ट्रिपल पी कहते हैं, पीपल प्लैनेट एंड प्रॉफिट। हमने आपके कैबिनेट ब्रीफिंग में देखा कि जब भी आप किसी परियोजना का ऐलान करते हैं तो आप प्लैनेट और सस्टेनेबिलिटी के ऊपर काफी जोर देते हैं, तो क्या ये समझा जाए कि अब गवर्नमेंट ने भी जो है ट्रिपल पी को पीपल प्लैनेट और प्रोडक्टिविटी के फॉर्मूले में बदल दिया है?
1: ये आपने बहुत अच्छा नाम दिया, जरा वापस बताएं क्या कहा आपने?
0: पीपल प्लैनेट और प्रोडक्टिविटी।
1: प्रोडक्टिविटी बहुत अच्छा नाम दिया, जनरली पीपीपी मैंने पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप कहते हैं, आपने इसे अच्छा नाम दिया है। डेफिनेटली यस, देखिए रेलवे सेक्टर एक ऐसा सेक्टर है जिसमें कार्बन डाइऑक्साइड एमिशंस 95% लेस है कंपेयर टू द हाईवे सेक्टर, इसलिए बहुत सारे देशों ने अपना इन्वेस्टमेंट बहुत सारा हाईवे से शिफ्ट करके रेलवे की तरफ किया है, चाहे जापान हो, चाहे चाइना हो, चाहे कोरिया हो, चाहे स्विट्जरलैंड हो, चाहे जर्मनी हो, बहुत सारे देशों ने अपना इन्वेस्टमेंट का फोकस जो आपने कहा प्लैनेट फ्रेंडली कनेक्टिविटी के प्रोजेक्ट्स में किया है, और भारत में भी इसका बेनिफिट भी साफ दिखाई देता है। माने प्रधानमंत्री जी ने आते ही जो रेलवे के इलेक्ट्रिफिकेशन का एक बहुत बड़ा संकल्प लिया उसका रिजल्ट आज दिखाई देता है। आज वेस्ट एशिया क्राइसिस के कारण जो बहुत सारा मिटिगेशन उसका रेलवे के कारण हो पाया, क्योंकि इलेक्ट्रिफाइड है रेलवे पूरी और इलेक्ट्रिसिटी पूरी भारत में हम स्वयं प्रोड्यूस करते ही है, आत्मनिर्भर है उसमें पूरी तरह से, तो चाहे गुड्स का ट्रांसपोर्टेशन हो या पीपल ट्रांसपोर्टेशन हो, वी आर एबल टू डू इफेक्टिवली विद इलेक्ट्रिफाइड रेलवे।
0: सर, चूंकि आपके पास एक मंत्रालय है इलेक्ट्रॉनिकी और सूचना प्रौद्योगिकी, और इसमें अगर मैं एक, वैसे तो हर उपलब्धि अपने आप में महत्वपूर्ण है, लेकिन सेमीकंडक्टर एक ऐसा है, सेमीकंडक्टर मिशन के जरिए जो उपलब्धि हासिल हुई है उससे किस तरह का बदलाव आप, चूंकि कहते हैं कि वो भी एक मल्टीप्लायर इफेक्ट है, चाहे वो ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री की हम बात करें, चाहे एविएशन इंडस्ट्री की बात करें, हर इंडस्ट्री के लिए उसमें सपोर्ट जरूरी होता है, वहां पर प्रगति को आप किस तरीके से मापते हैं?
1: सेमीकंडक्टर फाउंडेशनल इंडस्ट्री है और 1960 से भारत में प्रयास चल रहा था, 1962 से भारत में प्रयास चल रहा था सेमीकंडक्टर इंडस्ट्री को लाने का। प्राइम मिनिस्टर नेहरू जी ने, इंदिरा जी ने, राजीव गांधी जी ने, डॉक्टर मनमोहन सिंह जी ने, सबने प्रयास किए, आखिर सफलता मिली मोदी जी को। प्रधानमंत्री श्री मोदी जी ने जब सेमीकंडक्टर इंडस्ट्री के बारे में प्रेजेंटेशन लेने चालू किए थे, उनका बहुत स्पष्ट था कि हमें इकोसिस्टम पूरा बनाना है, और प्रधानमंत्री जी का यह भी बहुत स्पष्ट था कि हमें 20 साल का सोचना है, हमें शॉर्ट ड्यूरेशन के लिए नहीं सोचना है। तीसरा उन्होंने कहा था कि बहुत ध्यान रखना कि इसमें टैलेंट डेवलपमेंट पे पूरा फोकस रहे, ये तीन चीजें उन्होंने मूल रूप से हमको गाइडेंस दी थी। इसीलिए सेमीकंडक्टर मिशन जब चालू किया, इकोसिस्टम पे फोकस दिया, केमिकल्स, गैसेस, इक्विपमेंट, ये सब के सब इसमें इंडस्ट्री के जितने इकोसिस्टम प्लेयर्स है वो ध्यान से आए। सेकेंड, टैलेंट पे बहुत फोकस किया, टैलेंट में 324 यूनिवर्सिटीज हैं जहां पर मोस्ट मॉडर्न डिजाइन टूल्स में, सेमीकंडक्टर के डिजाइन टूल्स में स्टूडेंट्स को ट्रेनिंग दी जाती है। ये इसका उदाहरण है आपके सामने, देखो सिलचर, चेंबूर, इंदौर, ग्वालियर, शिवपुर, जम्मू, जालंधर, रोपड़,

0: धनबाद, राउरकेला, मेघालय, जम्मू, कैलिकट, पूरे देश भर के स्टूडेंट्स की डिजाइन की हुई है चिप्स। ये चिप्स स्टूडेंट के डिजाइन की हुई, स्टूडेंट्स के द्वारा डिजाइन की हुई चिप्स को सेमीकंडक्टर लेबोरेटरी में मैन्युफैक्चर किया और स्टूडेंट्स ने उनको वापस बोर्ड में टेस्ट करके, सर्किट में टेस्ट करके उसका यूज भी किया। हाल ही में डेवोस में मैंने सेमीकंडक्टर इंडस्ट्री के सारे लीडर्स जब बैठे थे, उनको पूछा दुनिया भर में कितनी यूनिवर्सिटीज होगी जहां पे कैडेंस, सिनॉप्सिस जैसे टूल्स को यूज, स्टूडेंट्स कह सकते हैं कि हमने चिप डिजाइन की और मैन्युफैक्चर की, 20 से ज्यादा नहीं गिन पाए।
1: तो अब अगले, अगर मैं 2 वर्ष में कहूं तो सेमीकंडक्टर में भारत की स्थिति आप कहां देखते हैं?
0: बहुत सिग्निफिकेंट जंप आया है विद इन 4 ईयर्स। जो कॉमर्शियली प्रोड्यूस्ड चिप्स हमारी, ये माइक्रॉन के प्लांट से प्रोड्यूस की हुई, ये केन्स के प्लांट से, 28 फरवरी और ये 31 मार्च, ये माने प्रधानमंत्री जी ने इनॉग्रेट किए थे ये दोनों प्लांट्स। तो मात्र 4 वर्षों में 12 प्लांट प्रोडक्शन स्टार्ट कर देना, डिजाइन का इकोसिस्टम बनना, टैलेंट का पूरा पाइपलाइन रेडी होना, और अगला जो सेमीकंडक्टर मिशन होगा इसमें हमारा फोकस रहेगा डिजाइन को नंबर 1 प्रायोरिटी देना, मशीन मैन्युफैक्चरर्स को बुलाना, केमिकल और गैस मैन्युफैक्चरर्स को बुलाना, और फैब और ATMP यूनिट्स और आएंगे। तो ओवर पीरियड ऑफ टाइम जिस तरह का एफर्ट अभी लगा है और जो सक्सेस अभी तक मिली है, उससे लगता है कि सारी दुनिया भारत को एक ट्रस्टेड पार्टनर की तरह देखती है।
1: सर, एक चीज हमने और भी देखा कि जो PLI इलेक्ट्रॉनिक कंपोनेंट्स और इलेक्ट्रॉनिक के लिए आपने किया, और उसका एक सबसे ज्यादा बड़ा फायदा हमें मोबाइल हेडसेट के मामले में देखने को मिला। एक ऐसा भी दौर था कि जब भारत में हर मोबाइल फोन की बड़ी तादाद जो है वो इम्पोर्टेड होता था या मेड इन कहीं और होता था। अब हम मेड इन इंडिया और असेंबल्ड इन इंडिया की बात करें, तो ये जो PLI स्कीम है, ये मोबाइल हैंडसेट और इलेक्ट्रॉनिक के मामले में किस तरीके से योगदान किया और वहां पर हम आगे का सफर कैसे देख रहे हैं?
0: बहुत फायदा हुआ। सबसे पहले तो जो फिनिश्ड प्रोडक्ट्स थे उसकी मैन्युफैक्चरिंग चालू की, फिर कंपोनेंट्स की मैन्युफैक्चरिंग चालू हुई, और कंपोनेंट की मैन्युफैक्चरिंग में बहुत प्रिसीजन का काम होता है। ये एक क्लासिक एग्जांपल है, आप इसको देखें अगर जी, तो आपको ये एक फुल स्टील का ब्लॉक दिखेगा, राइट, इसमें कोई कहीं कट या कुछ नहीं दिखेगा। ये एक्चुअली इतना प्रिसीजन का मैन्युफैक्चरिंग है, ये एक्चुअल में इतने ज्यादा इसमें कट्स लगे हुए थे इसमें, राइट, इतना प्रिसीजन का काम था। जो सिंगल सॉलिड ब्लॉक दिखता था वो सिंगल सॉलिड ब्लॉक नहीं है। तो इस प्रिसीजन का काम जो स्टूडेंट्स सीख पाते हैं वही मैन्युफैक्चरिंग में जाते हैं आके, इस तरह का काम है। तो अब कंपोनेंट मैन्युफैक्चरिंग में आफ्टर दी सक्सेस ऑफ फिनिश्ड प्रोडक्ट्स एंड मॉड्यूल्स, कंपोनेंट मैन्युफैक्चरिंग में 75 फैक्ट्रीज ऑलरेडी अप्रूव हो गई है जिसका कंस्ट्रक्शन चल रहा है, करीब 250 फैक्ट्री होंगी, और कंपोनेंट का एक्सपोर्ट करना भी भारत ने चालू कर दिया है। प्रिसीजन मैन्युफैक्चरिंग के मैं कई एक एग्जांपल आपको दूंगा। रेलवे का जो प्रोपल्शन होता है, ट्रेन का जो मोस्ट कॉम्प्लेक्स टेक्नोलॉजी वाला पार्ट है वो प्रोपल्शन है, रेलवे की इलेक्ट्रॉनिक्स। लास्ट ईयर वी स्टार्टेड एक्सपोर्टिंग रेलवे प्रोपल्शन टेक्नोलॉजी टू जर्मनी, फ्रांस, स्विट्जरलैंड एंड US। तो ये बहुत बड़ा चेंज है। प्रधानमंत्री जी का जो मेक इन इंडिया का थ्रस्ट है, जो फोकस है, वो फोकस अब रिजल्ट दिखाने लगा है जब ऐसी कॉम्प्लेक्स चीजें भारत से एक्सपोर्ट होने लगी।
1: तो अगले, अगर मैं PLI के अगले चरण की बात करूं, तो उसमें हम क्या कुछ देख सकते हैं, क्या कुछ उम्मीद कर सकते हैं?
0: बहुत फोकस आएगा कंपोनेंट्स को यूज करके भारत में एक्स्ट्रा डोमेस्टिक वैल्यू एडिशन करना, डिजाइन की कैपेबिलिटीज बढ़ना, और क्वालिटी में जो भारत ने एक पहचान बनाई है उसको एक नए लेवल पे लेके जाना, 6 सिग्मा लेवल पे लेके जाना।
1: सर, अगर मैं इन्फॉर्मेशन टेक्नोलॉजी के ऊपर डिस्कशन की बात करूं, तो 2 ऐसे बिल हैं जो एक लैंडमार्क लेजिस्लेशन के तौर पे कहे जा सकते हैं। एक जैसे आपका डिजिटल पर्सनल डेटा प्रोटेक्शन है, और दूसरा जो है रेगुलेशन ऑफ ऑनलाइन गेमिंग एक्ट। ये दोनों कानून को लेकर के प्रतिक्रिया जैसी भी रही हो, आप इसके काफी मुखर तरीके से, आपने खासतौर पर ऑनलाइन गेमिंग की मैं बात करूं कि उस पर रियल मनी वाले ऑनलाइन गेमिंग को लेकर के आपने काफी उस पर अपनी बात बहुत ही मजबूती के साथ रखा था, इन दोनों लेजिस्लेशन को आप किस तरीके से देखते हो और इनके जरिए पूरी इंडस्ट्री में किस तरह का बदलाव हुआ है वो अगर बता सकते?
0: ऑनलाइन मनी गेमिंग सोसाइटी के लिए बहुत बड़ा एक अभिशाप बन के उभरा था। हजारों सुइसाइड्स, परिवार की सारी इनकम एक गेम में नष्ट हो जाना। ऑनलाइन बेटिंग, ऑनलाइन गेमिंग, ऑनलाइन मनी गेमिंग वॉज अ बिग बिग बिग प्रॉब्लम फॉर दिस सोसाइटी। इसीलिए प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी ने बहुत कठोर निर्णय लिया और ऑनलाइन मनी गेमिंग को बैन किया। इसका बहुत बेनिफिट मिला है। अभी हाल ही में टाइटन इंडस्ट्रीज के CEO का इंटरव्यू था कि ऑनलाइन मनी गेमिंग के बैन के कारण बहुत सारा जो लोग पैसा वेस्ट कर देते थे मनी गेमिंग में, वो पैसा आज अपने परिवार के लिए अच्छे सामान खरीदने के लिए लगा रहे हैं, घर में बच्चों के लिए, पढ़ाई के लिए, हेल्थ केयर के लिए, घर बनाने के लिए, उस सब में लग रहा है। इसी तरह से कई एग्जांपल्स है। एक इंडस्ट्री है जिसमें 30,000 लोग काम करते हैं, उनके CEO मुझे बता रहे थे कि महीने का पहला हफ्ता करीब करीब ऐसा होता था जिसमें व्यक्ति ने जितनी सैलरी ली वो सारी सैलरी ऑनलाइन मनी गेमिंग में लूज कर देता था, और उसके बाद में

0: हर डिपार्टमेंट को फोन करके किसी तरीके से परिवार कैसे चलाए उसकी व्यवस्था में चिंता रहती थी। मतलब उनका कहना था कि उनके जान पहचान के लोगों में महीने में एक सुइसाइड होता था गेमिंग के कारण। वो सारी चीजें फिनिश हो गई। अभी हाल ही में एक जगह से प्रवास से लौटने के टाइम में इंडिगो का कर्मचारी मुझे मिला, उसने कहा कि मोदी जी को धन्यवाद देना कि ऑनलाइन मनी गेमिंग आपने बंद कर दी, कि मुझे 35,000 रुपये मिलती थी सैलरी, पूरे के पूरे 35,000 रुपये मैं गेमिंग में गंवा देता था, और अब मेरा परिवार, मेरा छोटा सा बच्चा है, उसने कहा मेरा शायद 3 या 4 साल का बच्चा है, अब परिवार हमारा खुश है।
1: लेकिन
0: इस तरह के कई एग्जांपल्स।
1: लेकिन कई बार ये भी बात कही जाती है कि वीपीएन के जरिए और उन सब के जरिए,
0: ये बात ठीक है आपकी,
1: तो आप कैसे उस पर रोक लगा?
0: ये बात ठीक है। देखो जब भी इस तरह के कड़े कठोर कानून आते हैं तो 90% प्रॉब्लम सॉल्व होती है, लेकिन कुछ हद तक लोग गैर कानूनी तरीकों से करने का प्रयास करते हैं, चाहे किसी भी सेक्टर में ले लो, चाहे ड्रग्स का ले लो, चाहे किसी भी तरह के सेक्टर को ले लो। तो इसमें प्रयास हमारा लगातार रहता है कि इस तरह की जो इलीगल साइट्स हैं उनको बैन करने का। अब तक करीब करीब 10,000 के आसपास इलीगल साइट्स को बैन किया जा चुका है।
1: और सर डिजिटल पर्सनल डेटा प्रोटेक्शन को लेकर के इस तरीके की
0: बहुत ही वेल थॉट थ्रू बिल है ये, जिसमें 7 प्रिंसिपल्स के बेसिस पे सिटीजन्स के डिजिटल डेटा को, डिजिटल पर्सनल डेटा को प्रोटेक्शन करने का मेथड है। इंडस्ट्री के साथ बातचीत करके उसको बहुत सिस्टमेटिक तरीके से इम्प्लीमेंट किया जा रहा है, और दुनिया भर में इस बिल के कारण भारत की एक नई पहचान भी बनी, क्योंकि जो प्रिस्क्रिप्टिव मेथड यूरोप ने लगाया उसके कारण उनका इनोवेशन फिनिश हुआ। भारत के इस बिल में इस तरह से बैलेंस आया इनोवेशन और रेगुलेशन में, जिससे कि इनोवेशन भी फ्लरिश कर सके और रेगुलेशन भी प्रॉपर लेवल पे हो सके।
1: अगर मैं आखिरी में आपसे पूछूं कि हमने शुरुआत करी फिजिकल इंफ्रास्ट्रक्चर से, अगर मैं डिजिटल इंफ्रास्ट्रक्चर की बात करूं तो अगले 3 से 5 सालों में हम डिजिटल इंफ्रास्ट्रक्चर में क्या कुछ और बदलाव देखेंगे और डिजिटल इंडिया किस तरीके से आगे बढ़ेगा, अगर उसकी रूपरेखा पेश कर सकें आप तो?
0: टेलीकॉम सेक्टर में बड़े बदलाव आने वाले हैं। टेलीकॉम सेक्टर में जो सबसे बड़ा चेंज आएगा वो चेंज आएगा रेजिडेंट AI। एक टेलीकॉम टावर करीब 2000 पैरामीटर्स लेता है जिसपे वो काम करता है एक साथ। उन पैरामीटर्स को अभी जो एल्गोरिदम्स होती है वो एल्गोरिदम्स बड़ी प्रिस्क्रिप्टिव टाइप की एल्गोरिदम्स होती है, किस सिचुएशन में क्या करना है उस पर डिफाइंड होती है। अगर उसमें AI लगता है हर टावर के अंदर तो सिग्निफिकेंट लेस पावर कंजम्पशन हो पाएगा, सिग्निफिकेंटली बेटर कॉल क्वालिटी हो पाएगी, और डिजिटल इंडिया के नेक्स्ट फेज में टेलीकॉम का जो रोल है वो रोल और टेलीकॉम में AI का रोल वो बहुत बड़ा रोल प्ले करेगा।
1: लेकिन ये भी कहा जाता है कि AI बहुत सारी नौकरियां ले सकता है, तो जब हम डिजिटल इंडिया के एक्सपेंशन की बात करेंगे, AI की इम्पोर्टेंस की बात करेंगे, हमारे लिए एक बड़ी चुनौती नौकरियां नहीं रहेंगी?
0: जितनी IT सेक्टर की इंडस्ट्रीज है उनके साथ हम लगातार एंगेज्ड हैं, किस तरह से नए प्रकार के स्किल्स क्रिएट किए जाए, नए प्रकार की ट्रेनिंग क्रिएट की जाए। अभी हाल ही में NASSCOM के माध्यम से IT इंडस्ट्री ने अपना नया कोर्स का पूरा करिकुलम बना के दिया है, जिसको AICT के माध्यम से लागू करेंगे, जिससे कि टेक्नोलॉजिकल चेंज के कारण जब भी डिसरप्शन आता है, जब भी परिवर्तन आता है, तो उस समय में अगर इंडस्ट्री और एकेडेमिया दोनों आपस में मिल जाए तो उस चेंज को बहुत स्मूथली कर सकते हैं। तो वही प्रयास है IT इंडस्ट्री के साथ मिलकर नए तरह के जो जॉब्स क्रिएट होंगे उन जॉब्स के लिए हमारे युवाओं को तैयार करने का प्रयास है।
1: अश्विनी वैष्णव साहब बहुत बहुत धन्यवाद।
0: नमस्कार।
2: विशेष श्रृंखला मोदी सरकार के 12 साल के अंतर्गत अभी आप सुन रहे थे सूचना और प्रसारण, रेलवे तथा इलेक्ट्रॉनिक्स और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्री अश्विनी वैष्णव के साथ विशेष साक्षात्कार। साक्षात्कार कर रहे थे पत्रकार शिशिर सिन्हा। ये आकाशवाणी है, विशेष श्रृंखला मोदी सरकार के 12 साल के अंतर्गत। अब सुनिए संसदीय कार्य और अल्पसंख्यक कार्य मंत्री किरण रिजिजू के साथ विशेष साक्षात्कार। साक्षात्कार कर रही हैं रीमा पराशर।
3: नमस्कार। 26 मई 2014 वो दिन था जब सिर्फ सरकार नहीं बदली थी बल्कि करोड़ों भारतवासियों की जो आकांक्षा थी, जो सपने थे, वो भी ऐसा लगा था पूरे होने की कगार पर अब आगे बढ़ रहे हैं। और इसीलिए अब जब 12 साल पूरे हो रहे हैं तो फिर ये तो एक सवाल बनता है ना कि भाई 12 साल में इस देश में ऐसा क्या बदलाव आया कि लोग मोदी मोदी मोदी मोदी कर रहे हैं? ऐसी क्या बात हो गई कि नरेंद्र मोदी हर राज्य में विजय पताका फहराते जा रहे हैं, लहराते जा रहे हैं, और भारत जो है वो विश्व

0: पर भी, अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर भी अब अपना एक अलग मुकाम रखकर लाया है। चलिए इस बारे में बातचीत करने के लिए हमारे साथ आज बेहद ही खास मेहमान है, और वो खास मेहमान जो कि जब नॉर्थ ईस्ट में बात होती थी ना कि कौन चेहरा है, तो एक चेहरा सबसे पहले सामने आता था किरण रिजिजू जी का, और वो अब अल्पसंख्यक मामलों के भी मंत्री हैं, संसदीय कार्य मंत्री भी हैं, इससे पहले कानून मंत्री रह चुके। तो एक तरीके से 2014 से लेकर अब तक का सफर इन्होंने लंबा तय किया है। बहुत बहुत स्वागत है रिजिजू जी आपका।
1: धन्यवाद।
0: और 12 साल की ये जर्नी, आप इस जर्नी को कैसे देखते हो?
1: ये जर्नी भारत का इतिहास में स्वर्ण अक्षरों में लिखा जाएगा, क्योंकि जब मोदी जी प्राइम मिनिस्टर के लिए नॉमिनेट किए गए थे, मंत्रिमंडल का शपथ लेने से पहले उन्होंने हम 44 लोगों को बुला करके पहला संदेश जो दिया था वो मुझे आज भी याद है। मोदी जी ने कहा था कि हम लोग सिर्फ सत्ता में कुर्सी ऑक्यूपाई करने के लिए नहीं आया है, हम देश का दशा दिशा और जनता गरीब लोगों के लिए एक बहुत बड़ा बदलाव लेने के लिए हम आए हैं। तो तब से लेकर एक एक नीति आप देखेंगे तो भारत को एक नई मोड़ पर लेकर के 2014 के बाद हमने काम शुरू किया है, और गवर्नेंस शासन करने का प्रक्रिया है उसमें बदलाव किया है, और अब तो एक आम सा बात हो गया है कि भारत सरकार कोई भी कदम उठाते हैं उसका लाभ तुरंत जनता तक मिल जाता है। नहीं तो पुराने दिनों में कांग्रेस के शासन के समय तो बातें बहुत होती थी, कई घोषणाएं भी होती थी, बजट में घोषणाएं, रेलवे बजट में नई प्रोजेक्ट का घोषणाएं, और हर समय चुनाव में तो घोषणा ही घोषणा होते थे, गरीबी हटाओ नारा लगाना, ये एक फैशन सा बन गया था उस जमाने में। लेकिन इन 12 सालों में सचमुच में जो काम हुआ है, मैं मानता हूं कि मोदी जी का कार्यकाल है ये सचमुच में भारत को फिर से एक महान देश, और जो पुराने में भारत का एक नाम था उसको फिर से पुनर्जीवित और फिर से पुनर्स्थापित करने में कामयाब हुआ है।
0: आपने, क्योंकि रिजिजू जी गरीबों वाली बात की ना, पहले का वो स्लोगन एक याद आता है कि जब 1 रुपया भेजते थे 10 पैसे पहुंचते थे, आज 1 रुपया भेजते हैं तो कितने पैसे पहुंचते हैं?
1: आज तो जितना भेजता है उतना ही पहुंचते हैं, क्योंकि उस समय प्रधानमंत्री खुद ही सरेंडर हो गए थे। राजीव गांधी जी प्रधानमंत्री थे और खुद ही सरेंडर करके बोल दिया कि 100 रुपया भेजता तो 15 रुपया पहुंचते हैं, 1 रुपया में 15 पैसे पहुंचते हैं। आज तो एक बटन दबाया केंद्र सरकार की ओर से कोई भी स्कीम घोषणा करके उसको सिर्फ बटन दबाना है, डीबीटी के माध्यम से लोगों के खाता में पहुंच जाते हैं और सारा स्कीम्स जो है समयबद्ध क्रियान्वित हो जाते हैं। इसलिए जो बदलाव आज देखने को मिला है, ऐसे ही सोचने से आपको पता नहीं चलेगा 12 साल पहले देश का हालत क्या था। जब कांग्रेस यूपीए सरकार थे तब हम भ्रष्टाचार से ग्रस्त होकर के, पॉलिसी पैरालिसिस होकर के, और गरीबों को सरकार का कोई भी कार्यक्रम तुरंत कुछ भी नहीं मिलते थे। तो इतना बदलाव जो आया है इसको चंद शब्दों में कहना तो मुश्किल है, मगर इतना तो कह सकता हूँ कि जो हमारा सरकार का थीम है सेवा सुशासन और गरीब कल्याण, तो गरीबों का कल्याण तो हुआ ही है, सेवा तो हम कर ही रहे हैं और सुशासन देश को भला हो रहा है, तो हर दृष्टि से हम कामयाब हैं।
0: तो आप कह रहे हो पॉलिसी पैरालिसिस, ये जो नारा और स्लोगन चला था उस वक्त मनमोहन सिंह सरकार के समय में, आज राहुल गांधी कॉम्प्रोमाइज पीएम का नारा चला रहे हैं, तो वो कह रहे हैं कि भाई आपने ऐसा किया तो अब कॉम्प्रोमाइज पीएम वो बोल रहे हैं।
1: कांग्रेस के समय में जो हालत था वो हमको बताने का कोई आवश्यकता ही नहीं है, देश के जिस आदमी का भी आप पूछो कांग्रेस जमाने में क्या हालत था, और कांग्रेस के खुद नेताओं से पूछो, कांग्रेस के नेता खुद कह रहे हैं कि कांग्रेस के जमाने में तो अमेरिका उसका मास्टर थे, चिदंबरम साहब खुद होम मिनिस्टर थे तो खुद ही बताया कि पाकिस्तान ने आतंकवादी हमला किया और भारत कुछ नहीं कर पाया क्योंकि अमेरिका ने वार्निंग दिया कि कुछ नहीं करना है। फिर चिदंबरम जी ने खुद भाषण दिया था पार्लियामेंट में जब हमारा सत्ता में आए, कहा कि आप डिजिटल इंडिया का बात करते हैं, गांव में गरीब लोगों को डिजिटल से क्या लेना देना है, और जो हमारा पेमेंट होता है यूपीआई के बारे में मजाक उड़ाया था कि गरीब जो सब्जी बेचते हैं सामान बेचते हैं उनका डिजिटल पेमेंट कैसे होगा,
0: वो बैंक के खाते का क्या करेंगे।
1: तो ये सारा चीज जो है वो तो कांग्रेस खुद ही कहते हैं, राजनीतिक दृष्टि पर कुछ भी आप कह लो लेकिन मालिक तो जनता है। तो इसलिए कॉम्प्रोमाइज तो पूरी तरीके से कांग्रेस के जमाने में कांग्रेस पार्टी ने देश को ही कॉम्प्रोमाइज करके रख दिया था। आज तो मोदी जी अपना निर्णय लेते हैं देश हित में, और देश हित में किसी के दबाव में काम नहीं करते हैं। तो राजनीतिक दृष्टि से कोई अगर कह देगा तो वो तो उसके ऊपर भारी पड़ेगा, स्पेशली कांग्रेस पार्टी तो कुछ कह नहीं सकते है। उन्होंने लगभग 60 वर्ष इस देश को शासन किया और देश को बहुत गरीब राष्ट्र बना दिया था, सबको मालूम।

0: हमारा इकोनॉमी, हमारा पर कैपिटा इनकम कांग्रेस के जमाने में कितने नीचे थे, अब हम इतना तेजी से आगे बढ़ रहा है। मैं तो सपना देखता था उस जमाने में कि चाइना 8% 10% से ग्रोथ करते हैं, हम कब चाइना की तरह ग्रोथ करेंगे? और मोदी जी ने हमको चाइना से भी ज्यादा स्पीड में अपने इकोनॉमी का ग्रोथ पाथ को आगे लेके खड़ा कर दिया। तो ये सब देखिए, इसमें तो कोई भी भारतीय फख्र होगा कि मोदी जी जैसे प्रधानमंत्री हमको मिले हैं जो भारत को एक विकसित भारत की ओर ले जा रहे हैं।
1: आपने क्योंकि चाइना की बात कही ना, तो नॉर्थ ईस्ट जहां से आप आते हैं, वो समय और वो दौर भी हम लोग देखते थे कि जब नॉर्थ ईस्ट के लोगों को अपनी पहचान का संकट था, पहचान बताने में भी उनको घबराहट होती थी, दिल्ली तक आने में तो उनको बहुत समय लग जाता था, वो बदलाव भी देखा है क्या हमने?
0: बदलाव तो क्या कहेंगे, मैं ये कहूंगा कि ट्रांसफॉर्मेशन, पूरा परिवर्तन हो गया है। बदलाव सिर्फ इंक्रीमेंटल बदलाव नहीं है ना, ट्रांसफॉर्मेटिव बदलाव आया है, क्रांतिकारी बदलाव आया है। क्योंकि जो दूर दराज के इलाके हैं, वो तो दिल्ली से बहुत दूर महसूस करते थे। जैसे मैं अरुणाचल प्रदेश से आता हूँ, अरुणाचल के लोग दिल्ली जाने के लिए भी सोचना पड़ता था, और दिल्ली वाले भी नहीं आते थे, अगर आते तो भी मेहमान की तरह आते हैं। आजकल तो चाहे लद्दाख हो, चाहे मिजोरम हो, अरुणाचल प्रदेश हो, सब जगह ट्रेन से कनेक्ट हो गए हैं, एयरपोर्ट से सबको कनेक्ट किया गया है, और टनल बन रहे हैं, नए नए परियोजनाएं, हाईवे कितना बन गया है, जो एक इंच हाईवे नहीं बने थे 12 साल पहले, आज वहां चकाचक हाईवे बन गए हैं, लोग आराम से गाड़ी लेकर के आना जाना हो रहा है। गांव गांव मोबाइल टेलीफोन पहुंच गए हैं, वो भी इतना सस्ता है डेटा कि आप आराम से एक बार आपने अपना डेटा लोड कर लिया, फिर आराम से बात करो, आप इंटरनेट में काम करो। उस जमाने में तो फोन करने के लिए भी कितना चिंता करता था कि उसका जो बिल आते थे। तो आजकल तो डेटा भी दुनिया में सबसे ज्यादा सस्ता भारत में है मोबाइल।
1: लेकिन इसका फायदा या नुकसान, हर गांव में बच्चा कंटेंट क्रिएटर बना हुआ है,
0: वो तो विषय अलग है, उसको एक व्यवहारिक तरीके से क्या करना चाहिए वो विषय अलग है, लेकिन सुविधा सबको मिला है, ये बड़ी बात है।
1: जेन जी के बारे में क्या सोच रहे हो आप, क्योंकि कंटेंट क्रिएटर हम बात कर रहे हैं, कंटेंट क्रिएटर और जेन जी, खतरा लग रहा है क्या अभी?
0: देखो, जेन जी का तो ये शब्द पश्चिमी देशों से उन्होंने क्रिएट किया है, हम तो अपना पारंपरिक जो मानक है हम उसी से चलते हैं। फिर भी एक टाइटल दिया गया है नए युवाओं को, जो एक पर्टिकुलर वर्ग को जेन जी जो कहते हैं, वो आज 18 साल 20 साल 25 साल के लगभग उसमें ज्यादातर लोग हैं,
1: क्योंकि सबकी निगाह उन्हीं पर लगी। राहुल गांधी जेन जी से मिल रहे हैं, अखिलेश यादव जेन जी से मिल रहे हैं, सब जेन जी से।
0: राहुल गांधी जी हो या अखिलेश यादव जी हो, वो कनेक्ट नहीं कर पाएंगे। लोकतंत्र में कुछ लोग तो विरोध रहेंगे ही, एक पक्ष होते हैं, एक विपक्ष होते हैं, लेकिन आप दिल से अगर नहीं जुड़ेंगे तो कनेक्ट नहीं कर पाएंगे। जैसे कि मैं उदाहरण के तौर पर आपको कहना चाहता हूं, राहुल गांधी जी लीडर ऑफ अपोजिशन है लोकसभा में, लगभग 50% वर्ष एक साल में वो विदेश में रहते हैं, वहाँ वो छुट्टियां मनाते हैं, रिजोर्ट में छुप के कहीं कहीं जाते हैं, कभी कभी बताते भी नहीं है, और फिर जब एक बार आएंगे देश में और फिर एक स्टेटमेंट देंगे, मोदी जी को गाली देते हैं, फिर विदेश गायब हो जाते हैं, फिर वापस आएंगे मोदी जी को फिर दूसरा गाली देंगे, फिर विदेश चले जाते हैं। तो ये जो पार्ट टाइम वाला राजनीति है, उससे आप लोगों का दिल नहीं जीत सकते हैं और लोगों के अंदर आप नहीं घुस सकते हैं। हमारा तो नेता और हमारा पार्टी 24 घंटे हम तो देश के लिए और देश के जनता के बीच में हम रहते हैं।
1: ये विदेश वाला जो है, विदेश जाने में क्या बुराई है?
0: वो तो अच्छा है, अगर वो विदेश जाते रहे तो कांग्रेस का नैया जो है डूबते रहेंगे। राजनीतिक तौर पर हमको कुछ नहीं कहना है, अगर राहुल गांधी को राजनीति में कोई रुचि नहीं है और विदेश में ही उसका दिल है, और अपने विदेशी दोस्तों के साथ ही अगर वहाँ दिल बहलाने के लिए विदेश में रहता है, हमारा क्या आपत्ति है? हम तो इसलिए कह रहे हैं कि वो कभी कभी वापस आते हैं भारत में, अपने देश में आ करके फिर गाली देते हैं, फिर गायब हो जाते हैं, चुनाव के बीच में भी वो विदेश चले जाते हैं, तो नुकसान तो कांग्रेस का है, हमारा क्या नुकसान है?
1: अब वो कांग्रेस पार्टी कहती है, भाई सरकार आपकी, आप पता करो विदेश में वो क्या करते हैं क्या नहीं करते।
0: देखो, किसी का जिंदगी में कौन क्या खाता है पीता है, कहाँ रहते हैं, किसके साथ में वो घूम रहे हैं, इतना हमारा रुचि नहीं है। हमारा सिर्फ इतना तक सीमित ध्यान जाता है कि वो देश के विरोधी ताकतों के साथ में मिलना जुलना होते रहते हैं विदेश में, इससे हम आपत्ति है, हम उसको आपत्ति करते हैं।
1: आपको लगता है कि ये जो विदेश विदेश वाला राहुल गांधी का है, उसके बाद वो आते हैं पार्लियामेंट में, पार्लियामेंट में फिर वो एक एजेंडा बोलते हैं, कहीं ना कहीं वही एजेंडा वो लेकर के आते हैं क्या?
0: जब पार्लियामेंट में बोलते हैं तो झलकते ही है, क्योंकि देश को कोसते हैं, देश के प्रधानमंत्री को कोसते हैं, तो उससे पता चलता है कि वो देश के विरुद्ध जो लोग काम करते हैं उनसे काफी इन्फ्लुएंस हुए हैं। उदाहरण के तौर पर जो राहुल गांधी जी कहते हैं पार्लियामेंट

0: मन में, वो सेम चीज पाकिस्तान कहते हैं। और जो राहुल गांधी और अरविंद केजरीवाल और इन जैसे लोग जो भी नैरेटिव चलाते हैं उसके तालियां पाकिस्तान में बजता है, तो ये तो कहीं ना कहीं एक तरीके से तो जुड़े हुए हैं। अब मैं इसको किस तरीके से समझाऊं देशवासियों को कि जो विपक्ष है वो भी तो देश के लिए सोचना चाहिए ना। विपक्ष का काम ये नहीं है कि देश के खिलाफ काम करे, वो सरकार को गाली दे सकते हैं, सरकार के खिलाफ उनका बोलने का अधिकार है। और लोकतंत्र में सरकार के खिलाफ मजबूती से अगर विपक्ष खड़ा रह करके निगरानी रखेंगे, कोई करप्शन हुआ है क्या, कहीं कोई नीति में भूल चूक हुआ है क्या, अगर उसमें विपक्ष हमला करते हैं तो ये तो स्वागत है। लेकिन कोविड का समय, ये इमरजेंसी समय है, तब भी प्रधानमंत्री को गाली देंगे, देश के खिलाफ काम करेंगे। और जब ऑपरेशन सिंदूर हुआ, देश गर्व है हमारा सेनाओं के, जो देश के प्रति उन्होंने जो बल दिखाया है उसको भी विरोध करते हैं, सवाल उठाते हैं। और अभी ईरान अमेरिका इसराइल का लड़ाई के चलते तेल गैस आने में कष्ट हो रहे हैं, ये तो एक तरीके से एक आपातकालीन टाइप का सिचुएशन हरमूज में पैदा हो गया है मिडिल ईस्ट में, तो उससे हमको दिक्कत हो रहा है। तो ऐसा में तो देश के साथ खड़ा होना चाहिए, ऐसा में भी देश का खिलाफ बोलते रहते हैं और मोदी जी का खिलाफ बोलते हैं। तो मेरा ये कहना है कि आम तौर पर विरोध जो है सरकार के खिलाफ आप जितना कर सकता है कर सकते हैं, उसमें लोकतंत्र में कोई रुकावट नहीं है। लेकिन जब इमरजेंसी सिचुएशन होता है, जब एक विशेष परिस्थिति होता है, ऐसे समय में सबको एक साथ खड़ा होना होता है। जैसे जब 1962 में लड़ाई हुआ चीन के साथ, तो पूरा देश एकजुट खड़ा हुआ है। कम्युनिस्ट पार्टी में टूट हुआ एक ग्रुप जो है चीन का समर्थन में आया, वो कम्युनिस्ट भाग हो गया। 1965 हो, 71 हो, या कारगिल के समय में भी हो, हर समय इस तरीके के जो विशेष परिस्थिति आते हैं, जब देश किसी से लड़ रहे हैं, दुश्मनों के साथ में देश मुकाबला कर रहे हैं, ऐसा समय में पूरा देश एकजुट खड़ा रहना चाहिए, ये तो सब मानते हैं। लेकिन पहली बार मैंने देखा है ऐसा विपक्ष आज का दिन में पैदा हो गया है कि देश किसी विपत्ति से जूझने के लिए, कोई आपातकाल स्थिति को नियंत्रण करने के लिए जब काम कर रहे हैं, ऐसे समय में सरकार के खिलाफ देश के खिलाफ बोलना शुरू कर देते हैं, इससे मैं बहुत दुखी हूँ।
1: संसद में आपको लगता है जो बर्ताव है वो कंट्रोल नहीं हो पा रहा है इतने समय में?
0: देखिए, राहुल गांधी जी को कंट्रोल करना थोड़ा मुश्किल है मुझे लगता है, मैं इतने सालों से उसको देख रहा हूँ। पहले तो मैंने सोचा था कि वो हल्के फुल्के से इधर उधर घूमते रहते हैं, अनाप शनाप बात करते रहते हैं, लेकिन जब वो नेता प्रतिपक्ष बने तो मैंने सोचा कि वो नियंत्रित होंगे, लेकिन और बिगड़ गया। नेता प्रतिपक्ष होने के बाद तो और भी उसका भाषा पूरा बिगड़ गया है। अब तो पार्लियामेंट में जब बोलते हैं तो नियम के बाहर बोलते हैं और गाला गाली पे उतर जाते हैं, दिन भर नारा लगाते रहते हैं अपना एमपीओ को, जो पार्लियामेंट हाउस के बाहर गेट में खड़ा करके वही दिन भर वहाँ तमाशा कराते रहते हैं। तो एमपी इसके लिए नहीं आया, एक नॉर्मलसी कर दिया। अब कांग्रेस के एमपी लोग भी ये सोचने लग गया कि वो तो पार्लियामेंट में इसलिए चुन के आए कि वो इस तरह का हरकतें करना है, उसी को अपना दायित्व तो मान लिया है, संसद के अंदर में बोलना, अपना कॉन्स्टिट्यूएंसी के बारे में बोलना और सरकार का नीति में खामियां है तो उसको उजागर करना, और फिर जहां जरूरत है सुझाव भी दे सकते हैं या आप उसको क्रिटिसाइज भी कर सकते हैं। लेकिन वो संसद में बोलना, वहां प्रदर्शन करना, ये सारा चीज जो है लोग देख रहे हैं ना, लोग देख रहे हैं कि कांग्रेस का हरकत कैसे है।
1: मोदी जी ने जो कोई एक बात आपसे इन 12 सालों में कही हो जो आपको हमेशा याद रहेगी?
0: मुझे तो इतना बातें प्रधानमंत्री जी की ओर से सुझाव निर्देश या हमको गाइडेंस देते रहते हैं, तो एक बोलना मुश्किल है। लेकिन एक बात मैं कह सकता हूं कि देश हित में जो भी आपको दायित्व मिला है उसको पूरी तरह से निभाना है, इसलिए हम अपना ड्यूटी से प्रतिबद्ध हैं।
1: बहुत बहुत शुक्रिया किरण जी, आपने इतनी बेबाकी से ये सब बात कही। और जाहिर तौर पर देखिए 2014 से अभी तक की ये जो जर्नी है, इसीलिए हमने इसको भारत रीलोडेड का नाम दिया है, क्योंकि इस वक्त नए भारत की बात हो रही है और नए भारत का जो सपना भारतवासियों ने देखा था वो कितना पूरा हुआ, इस पर हमसे खास बातचीत की। नमस्कार।
0: नमस्कार जी।
2: विशेष श्रृंखला मोदी सरकार के 12 साल के अंतर्गत अभी आप सुन रहे थे संसदीय कार्य और अल्पसंख्यक कार्य मंत्री किरेन रिजिजू के साथ विशेष साक्षात्कार कर रही थीं रीमा पराशर।

अभी आप दिल्ली से प्रसारित सरकार के 12 वर्ष पूर्ण होने के उपलक्ष्य में विभिन्न विषयों पर आधारित विशेष द्विभाषी कार्यक्रम श्रृंखला की रिकॉर्डिंग सुन रहे थे। यह आकाशवाणी का श्री विजयपुरम केंद्र है। 8:34 हुए हैं। लीजिए अब सुनिए रोजगार समाचार। राष्ट्रीय अन्वेषण अभिकरण में प्रतिनियुक्ति के आधार पर अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक तथा उप पुलिस

0: पूर्व संशोधित वेतन बैंड 3 के तहत दो पद और पुलिस अधीक्षक वेतन मैट्रिक लेवल 10 में पूर्व संशोधित बैंड 3 के अंतर्गत 3 पद रखा गया है। ये सभी पद प्रतिनियुक्ति के आधार पर होगा। रिक्तियों की संख्या में परिवर्तन किया जा सकता है। पात्रता मानदंड, शैक्षणिक योग्यता, अनुभव आदि तथा आवेदन पत्र राष्ट्रीय जांच अभिकरण NIA की वेबसाइट www.nia.gov.in पर उपलब्ध है। इस पद के लिए आवेदन करने वाले उम्मीदवार बाद में अपना आवेदन वापस नहीं ले सकेंगे। योग्य अधिकारियों से नामांकन दस्तावेजों सहित हार्ड कॉपी इस पते पर पुलिस अधीक्षक राष्ट्रीय अन्वेषण अभिकरण मुख्यालय के सामने केंद्रीय सरकारी कार्यालय परिसर लोधी रोड नई दिल्ली 110003। ये आवेदन रोजगार समाचार में प्रकाशन की तिथि से 45 दिनों के भीतर यानी 15 जून तक पहुंच जाने चाहिए। इच्छुक अधिकारी अग्रिम प्रति ईमेल spadmin.nia@gov.in द्वारा भी भेज सकते हैं। साथ ही डाक द्वारा भी भेजा जा सकता है। अंतिम तिथि के बाद अपूर्ण आवेदन अथवा आवश्यक दस्तावेजों के बिना आवेदन स्वीकार नहीं किए जाएंगे। और अधिक जानकारी के लिए 2 मई का एम्प्लॉयमेंट न्यूज़पेपर देखा जा सकता है। इसी के साथ ही रोजगार समाचार समाप्त हुए।
1: इट्स रेनिंग ऑफर्स ऑन द न्यू एज बलेनो दिस सीजन। अपग्रेड टू द बोल्ड एंड टेकी न्यू एज बलेनो एंड गेट अमेजिंग बेनिफिट्स, इजी फाइनेंस ऑप्शंस एंड इनक्रेडिबल एक्सचेंज डील्स। रश टू योर नियरेस्ट नेक्सस शोरूम टुडे एंड टेक होम द न्यू एज बलेनो विद अमेजिंग ऑफर्स एंड अ 1 लाख किलोमीटर और 3 ईयर वारंटी। TNC apply. Nexa. It's raining offers on the new age Baleno this season. Upgrade to the bold and techie new age Baleno and get amazing benefits, easy finance options and incredible exchange deals. Rush to your nearest Nexa showroom today and take home the new age Baleno with amazing offers and a 1 lakh kilometer or 3-year warranty. TNC apply. Nexa.
0: लीजिए अब सुनिए संवेद स्वरों में गौरव गान।

अभी आप संवेद स्वरों में गौरव गान सुन रहे थे। यह आकाशवाणी का श्री विजयपुरम केंद्र है। रात्रि के 8:45 होने वाले हैं। अगला प्रसारण हम अपने दिल्ली केंद्र से रिले करेंगे। कृपया प्रतीक्षा कीजिए।

0: नमस्कार, आकाशवाणी से समाचार संध्या के साथ मैं लवलीन निगम। भारत ने पाकिस्तान के कब्जे वाले जम्मू कश्मीर में प्रदर्शनकारियों पर घातक कार्रवाई में 30 नागरिकों की मौत पर गहरी चिंता व्यक्त की। पाकिस्तान पर मानवाधिकार उल्लंघनों को छिपाने के लिए फर्जी खबरों का इस्तेमाल करने का आरोप भी लगाया। विदेश मंत्री एस जयशंकर ने कहा, पिछले 12 वर्षों में मोदी सरकार की विदेश नीति देश के मूल लक्ष्यों के अनुरूप। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने पश्चिम एशिया में बदलती सुरक्षा स्थिति पर कुवैत के अमीर से टेलीफोन पर बात की। सरकार ने कच्चे तेल की बढ़ती कीमतों का बोझ कम करने के लिए तेल विपणन कंपनियों को 1,23,000 करोड़ रुपए की वित्तीय सहायता दी। गृहमंत्री अमित शाह ने सीमा पार माल और यात्री आवागमन को डिजिटल और सुव्यवस्थित करने के लिए भूमि पत्तन प्रबंधन प्रणाली का उद्घाटन किया। और रक्षा मंत्रालय दीर्घकालिक ऊर्जा सुरक्षा को मजबूत करने के लिए उत्तर प्रदेश में बैटरी ऊर्जा भंडारण प्रणाली के साथ 250 मेगावाट की सौर ऊर्जा परियोजना स्थापित करेगा। अब समाचार विस्तार से। विदेश मंत्रालय ने पाकिस्तान के कब्जे वाले जम्मू कश्मीर में प्रदर्शनकारियों पर पुलिस की बर्बरता की कई रिपोर्टों की पुष्टि की है। नई दिल्ली में विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता रणधीर जायसवाल ने कहा कि उम्मीद है कि अंतर्राष्ट्रीय समुदाय पाकिस्तान को उसके कृत्यों और दुर्व्यवहारों के लिए जवाबदेह ठहराएगा। पाकिस्तान के कब्जे वाले जम्मू कश्मीर में प्रदर्शनकारियों और सुरक्षा बलों के बीच झड़पों में 30 से अधिक लोग मारे गए हैं और लगभग 200 अन्य घायल हुए हैं। आर्थिक और राजनीतिक शिकायतों को लेकर विरोध प्रदर्शनों का नेतृत्व कर रही संयुक्त आवामी एक्शन कमेटी पर प्रतिबंध लगाने के बाद क्षेत्र में तनाव बढ़ गया है। विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता रणधीर जायसवाल ने पाकिस्तान से लगातार आ रही फर्जी खबरों और वीडियो के बारे में भी बताया।
1: पाकिस्तान की ओर से फर्जी खबरों और वीडियो का एक सिलसिला लगातार देखने को मिला है। यह अपनी विफलताओं को छिपाने और अपने मानवाधिकारों के उल्लंघन हनन से ध्यान भटकाने का पाकिस्तान का हताशापूर्ण प्रयास है।
0: अफगानिस्तान की जनता के कल्याण के प्रति भारत की प्रतिबद्धता को दोहराते हुए श्री जायसवाल ने कहा कि भारत खाद्य सुरक्षा, स्वास्थ्य सेवा और दवा सहायता से संबंधित उपायों के माध्यम से अफगानिस्तान की सहायता जारी रखे हुए है। श्री जायसवाल ने बताया कि एमटी मैरीमैक्स जहाज के चालक दल के सभी 24 सदस्यों को सुरक्षित निकाल लिया गया है।
1: जब ये हादसा हुआ उसमें तुरंत ही हमारे भारतीय दूतावास जो कि ओमान में है तुरंत एक्शन में आए और वहां ओमानी अधिकारियों से उन्होंने संपर्क किया। तुरंत उन्होंने कार्रवाई की और 2400 भारतीय नागरिक को सुरक्षित वहां से निकाला गया। ये सभी नागरिक हमारे नागरिक सुरक्षित हैं।
0: विदेश मंत्री डॉ सुब्रमण्यम जयशंकर ने कहा है कि भारत की विदेश नीति उसके मूल राष्ट्रीय लक्ष्यों के अनुरूप है। डॉ जयशंकर ने डीडी न्यूज को दिए साक्षात्कार में कहा कि उन्होंने विदेश नीति और कूटनीति, सामाजिक सुरक्षा, राष्ट्रीय विकास पर केंद्रित सरकार की प्राथमिकताओं के साथ एकीकृत हो गई हैं।
2: The amount of time we have spent
3: हमने उन देशों के साथ लगातार बातचीत जारी रखी जो तेल, गैस, एलएनजी, एलपीजी तथा उर्वरकों के उत्पादक हैं, क्योंकि ये राष्ट्रीय हित का विषय है। इसलिए विदेश नीति पूरी तरह से उस समय के प्रमुख राष्ट्रीय लक्ष्यों के अनुरूप संचालित होती है।
0: डॉक्टर जयशंकर ने कहा कि चाहे प्राकृतिक आपदा हो, आर्थिक संकट हो या कोविड-19 महामारी जैसी स्थितियां, दुनिया भर को संकट की स्थिति में पहले सहायता प्रदान करने वाले देश के रूप में देखती हैं। डॉक्टर जयशंकर ने बढ़ते भू राजनीतिक तनाव के बीच प्रमुख क्षेत्रों में

भारत की संतुलित भागीदारी पर भी जोर दिया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने पश्चिम एशिया में बदलती सुरक्षा स्थिति पर आज कुवैत के अमीर शेख मिशाल अल अहमद अल जबेर अल सभा से टेलीफोन पर बातचीत की। प्रधानमंत्री ने तनाव बढ़ने पर गहरी चिंता व्यक्त की और कुवैत की संप्रभुता तथा क्षेत्रीय अखंडता पर हमलों की निंदा की। उन्होंने शांति और स्थिरता शीघ्र बहाल करने तथा तनाव कम करने के लिए संवाद और कूटनीति की आवश्यकता पर बल दिया। केंद्र सरकार ने कच्चे तेल की बढ़ती कीमतों के बोझ से उपभोक्ताओं को राहत देने के लिए तेल विपणन कंपनियों को लगभग 1,23,000 करोड़ रुपए की वित्तीय सहायता प्रदान की है। सरकारी सूत्रों के अनुसार यह सहायता पश्चिम एशिया संघर्ष के शुरुआती 78 दिन के लिए दी गई है। इसमें उत्पाद शुल्क में कटौती भी शामिल है। सूत्रों ने बताया कि सोने के आयात में कमी आई है और अर्थव्यवस्था की वृद्धि दर पर कोई दबाव नहीं है। ये समाचार आकाशवाणी से प्रसारित किए जा रहे हैं।

0: सुरक्षा स्कीम के टेलीलॉ न्याय बंधु कानूनी साक्षरता एवं जागरूकता कार्यक्रम से जुड़े कानूनी सहायता टेलीलॉ के टोल फ्री नंबर 1-4-4-5-4 और वेबसाइट www.tele-law.in से प्राप्त की जा सकती है।
1: समाचार संध्या में आपका फिर स्वागत है। गृहमंत्री अमित शाह ने आज नई दिल्ली में भूमि पत्तन प्रबंधन प्रणाली विनिमय का शुभारंभ किया। इसका उद्देश्य डिजिटल माध्यम से सीमा पार व्यापार और यात्रियों के आवाजाही को अधिक सुगम, पारदर्शी और सुरक्षित बनाना है। भूमि पत्तनों के बीच संचालन के लिए बनाई गई इस प्रणाली से रसद और विनियामक संबंधी सुरक्षित और पल पल की जानकारी का आदान प्रदान किया जा सकेगा। इस अवसर पर श्री शाह ने कहा कि आधुनिक और प्रौद्योगिकी संचालित सीमा प्रबंधन प्रणाली के निर्माण की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम है।
2: हमारी स्मार्ट बॉर्डर की संकल्पना में लैंड पोर्ट अथॉरिटी का बहुत बड़ा योगदान आने वाले दिनों में है। ये जो लैंड पोर्ट मैनेजमेंट सिस्टम और स्मार्ट बॉर्डर की संकल्पना, ये दो मिलकर एक प्रकार से अभेद और सुरक्षित बॉर्डर का निर्माण करेंगे, इसमें मेरे मन में कम से कम कोई शंका नहीं है।
1: रक्षा मंत्रालय ने उत्तर प्रदेश के सीतापुर में बैटरी ऊर्जा भंडारण प्रणाली सहित 250 मेगावाट की सौर ऊर्जा परियोजना को मंजूरी दे दी है। ये 850 एकड़ की रक्षा भूमि पर स्थापित की जाएगी। रक्षा मंत्रालय की अपनी तरह की पहली परियोजना में रक्षा भूमि पर एकीकृत बैटरी ऊर्जा भंडारण प्रणाली सहायता के साथ बड़े पैमाने पर सौर ऊर्जा उत्पादन होगा। इससे रक्षा प्रतिष्ठानों के लिए पारंपरिक ग्रिड बिजली की खरीद पर खर्च में काफी कमी आने की उम्मीद है। शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान ने आज नई दिल्ली स्थित राष्ट्रीय परीक्षा एजेंसी के मुख्यालय का दौरा किया और 21 जून को नीट की पुनर्परीक्षा की तैयारियों की समीक्षा की। मुख्यालय के बाहर पत्रकारों से बातचीत में उन्होंने कहा कि केंद्र सरकार ने प्रश्न पत्रों की तैयारी से लेकर बाद की प्रक्रियाओं तक पूर्ण गोपनीयता बनाए रखते हुए सभी आवश्यक उपाय सुनिश्चित किए हैं।
3: सभी राज्य के मुख्यमंत्रियों को अनुरोध पत्र लिखा है, उनके पहले भी सहयोग रहा है, इस बार थोड़ा और भी ध्यान दिया जाए। इस बीच में अनेक राज्य के मुख्यमंत्री अपने राज्य की डीजी और चीफ सेक्रेटरी की उपस्थिति में डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर की मीटिंग, एसपी की मीटिंग राउंड शुरू किए हैं, जिसमें एनटीए के डीजी स्वयं भी यहाँ ऑनलाइन जुड़ते हैं। अनेकों राज्यों की मीटिंग होगी, आज जैसे बिहार की मीटिंग था, आने वाले दिनों में भारत सरकार की गृह सचिव भी उस पर एक उच्च स्तरीय मीटिंग लेने वाले हैं।
1: श्री प्रधान ने नीट परीक्षा पेपर लीक मामले के बारे में कहा कि सीबीआई इस मामले की जांच कर रही है और दोषियों को कड़ी सजा दी जाएगी। इस बीच दिल्ली की एक अदालत ने आज नीट यूजी पेपर लीक मामले में आरोपी मनीषा वाघमारे की जमानत याचिका खारिज कर दी है। मामले की जांच कर रही सीबीआई ने अदालत में कहा कि पुणे स्थित शिक्षा सलाहकार वाघमारे ने पैसे के बदले विद्यार्थियों को परीक्षा के प्रश्न पत्र लीक किए। सरकार ने मनरेगा के स्थान पर विकसित भारत रोजगार और आजीविका मिशन ग्रामीण की गारंटी अधिनियम जी रामजी को सुचारू रूप से लागू करने को लेकर राज्य और केंद्र शासित प्रदेशों के लिए 95,692 करोड़ रुपए के अंतरिम बजट आवंटन का प्रस्ताव रखा है। ग्रामीण विकास मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने नई दिल्ली में राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों के ग्रामीण विकास मंत्रियों के साथ वर्चुअल बैठक के बाद इसकी घोषणा की।
4: विकसित भारत जी राम जी ये अधिनियम 1 जुलाई से लागू होने वाला है। कोई दिक्कत मजदूरों को ना आए और

0: विकास ग्रामीण भारत के गांव का वो भी चलता रहे, इसलिए राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों को इंटरिम एलोकेशन का प्रस्ताव किया। 95,692 करोड़ का अंतरिम आवंटन प्रस्तावित किया गया है।
1: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के दूरदर्शी नेतृत्व में पिछले 12 वर्ष में सबका साथ सबका विकास सबका विश्वास और सबका प्रयास के आधार पर भारत में उल्लेखनीय प्रगति हुई है। आकाशवाणी समाचार मोदी सरकार के 12 वर्षों के विभिन्न प्रमुख क्षेत्रों में किए गए प्रयासों पर एक विशेष श्रृंखला प्रस्तुत कर रहा है। आज के अंक में हम स्वास्थ्य सेवाओं के क्षेत्र में सरकार के प्रयासों की जानकारी दे रहे हैं।
2: पिछले 12 वर्षों में केंद्र सरकार ने देश की स्वास्थ्य व्यवस्था को काफी मजबूत किया है, जिससे यह पहले की तुलना में अधिक सुलभ, किफायती और बेहतर गुणवत्ता वाली बन गई है। 2018 में प्रधानमंत्री मोदी ने दुनिया की सबसे बड़ी स्वास्थ्य बीमा योजना आयुष्मान भारत प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना की शुरुआत की। इस योजना के तहत सामाजिक आर्थिक रूप से कमजोर गरीब परिवारों को हर साल प्रति परिवार 5 लाख रुपए तक का मुफ्त स्वास्थ्य बीमा दिया जा रहा है। इस योजना के तहत अब तक 44 करोड़ से अधिक आयुष्मान कार्ड बनाए जा चुके हैं और 1,80,000 करोड़ रुपए से अधिक का इलाज उपलब्ध कराया गया। सरकार ने अक्टूबर 2024 में योजना का विस्तार करते हुए आयुष्मान भारत वय वंदन योजना की शुरुआत की, जिसके तहत 70 वर्ष से अधिक उम्र के सभी बुजुर्गों को भी स्वास्थ्य बीमा कवर दिया गया। आकाशवाणी समाचार से बात करते हुए दिल्ली के रोहित सिंह ने बताया कि इस कार्ड से अब वे निजी अस्पतालों में भी इलाज करा सकते हैं।
3: आयुष्मान कार्ड से मुझे बहुत फायदा होगा, क्या होता है मैं प्राइवेट हॉस्पिटल में भी इलाज करवा सकूंगा अपना और अपनी फैमिली का। इससे मुझे मतलब 5 लाख रुपए मिलेंगे।
2: सरकार ने हर मोहल्ले में प्राथमिक स्वास्थ्य सेवा देने के लिए 1,86,000 आयुष्मान आरोग्य मंदिर भी स्थापित किए। प्रधानमंत्री भारतीय जन औषधि परियोजना के तहत भी लोगों को सस्ती और अच्छी गुणवत्ता वाली जेनरिक दवाइयां उपलब्ध कराई जा रही है। बिहार के दिलीप कुमार ने बताया कि जन औषधि केंद्रों पर दवाइयां बहुत कम कीमत पर मिल जाती है।
4: यहां पर बहुत ही सस्ता है, 100 का दवाई 10 रुपए में मिल रहा है, बहुत ही हमको रिलीफ मिल रहा है, दवाई काम भी कर रहा है और हमारा रुपया का बहुत बचत हो रहा है। मैं गरीब आदमी आराम से दवाई खाके ठीक ठाक रह रहा हूँ।
2: सरकार ने मेडिकल शिक्षा का भी विस्तार किया है। 2014 में जहां सिर्फ 8 एम्स थे, अब वह बढ़कर 23 हो गई है। मेडिकल कॉलेजों की संख्या भी 387 से बढ़कर 818 हो गई है। वहीं पारंपरिक चिकित्सा पद्धति को बढ़ावा देने के लिए केंद्र सरकार ने नवंबर 2014 में आयुष मंत्रालय की स्थापना की। देश भर में अब तक कुल 942 आयुष संस्थान स्थापित किए जा चुके हैं। पिछले 12 वर्षों में केंद्र सरकार ने स्वास्थ्य सेवाओं को हर व्यक्ति तक अधिक सुलभ और बेहतर बनाया है। दीपेंद्र कुमार, आकाशवाणी समाचार, दिल्ली।
1: ये समाचार हमारी वेबसाइट www.newzoneair.gov.in और हमारे न्यूज़ोन एआईआर ऐप पर भी उपलब्ध हैं।
5: हर उड़ान से पहले एक फैसला होता है, हर फैसले से पहले एक सवाल, क्या मैं तैयार हूँ? अगर जवाब है हाँ, तो भारतीय वायुसेना आपका इंतजार कर रही है। AFCAT 1 of 2026 के आवेदन 10 नवंबर से 9 दिसंबर तक खुले हैं। अधिक जानकारी के लिए विजिट करें careerairforce.gov.in या afcat.edcil.go.in पर।
1: ये आकाशवाणी है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी शनिवार को फ्रांस और स्लोवाकिया की 6 दिन की यात्रा पर रवाना होंगे। श्री मोदी रविवार को नीस में फ्रांस के राष्ट्रपति इमैनुअल मैक्रों के साथ द्विपक्षीय बैठक करेंगे। शिक्षा मंत्रालय ने विश्व स्तर पर प्रतिष्ठित 3 विदेशी उच्च शिक्षा संस्थानों का आज स्वीकृति पत्र जारी किए। ये संस्थान ब्रिस्टल विश्वविद्यालय, यॉर्क विश्वविद्यालय और न्यू साउथ वेल्स विश्वविद्यालय हैं। ये विश्वविद्यालय महाराष्ट्र और कर्नाटक सहित विभिन्न राज्यों में स्थापित किए जाएंगे। मंत्रालय ने बताया कि ये विश्वविद्यालय व्यवसाय, कम्प्यूटर विज्ञान और साइबर सुरक्षा सहित कई क्षेत्रों में कार्यक्रम उपलब्ध कराएंगे। श्रीलंका के दाम्बुला में एक दिवसीय त्रिकोणीय क्रिकेट श्रृंखला के पहले मुकाबले में भारत ए ने श्रीलंका ए को 8 रन से हरा दिया है। भारत ए के 278 रन के जवाब में श्रीलंका ए 269 रन ही बना सकी। मौसम विभाग ने कल पूर्वोत्तर क्षेत्र के कुछ हिस्सों, पश्चिम बंगाल के हिमालय के तराई वाले इलाकों और कर्नाटक में मूसलाधार बारिश का ऑरेंज अलर्ट जारी किया है। अगले 2 दिन में बिहार, केरलम, माहे, कोंकण, गोवा, तमिलनाडु, पुदुचेरी, कराईकल और तेलंगाना में भी तेज बारिश का अनुमान है। दिल्ली, हरियाणा, चंडीगढ़, पंजाब, हिमाचल प्रदेश, जम्मू कश्मीर, उत्तर प्रदेश और राजस्थान में कल लू चलने का अनुमान है। अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। भारत ने पाकिस्तान के कब्जे वाले जम्मू कश्मीर में प्रदर्शनकारियों पर घातक कार्रवाई में 30 नागरिकों के

0: 만탄.
1: 예, 아카시와니 है, प्रस्तुत है कार्यक्रम मंथन। इसके अंतर्गत सुनिए प्रधानमंत्री सुरक्षित मातृत्व अभियान के 10 वर्षों पर स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय में अपर सचिव और राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन की मिशन निदेशक आराधना पटनायक के साथ आकाशवाणी संवाददाता कमल कुमार प्रजापति की विशेष बातचीत।
2: स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय के प्रधानमंत्री सुरक्षित मातृत्व अभियान के 10 वर्ष पूरे होने पर एक राष्ट्रव्यापी अभियान की आज से शुरुआत हुई है। आज हम कार्यक्रम में इस राष्ट्रव्यापी अभियान और देश भर में जो आज से जागरूकता और अन्य गतिविधियां इस अभियान के तहत चल रही हैं, उन पर हम आज कार्यक्रम में चर्चा करने जा रहे हैं और साथ ही किस तरह से प्रधानमंत्री सुरक्षित मातृत्व अभियान ने देश में जन स्वास्थ्य में अपनी एक बड़ी भूमिका निभाई है, इस बारे में भी आज हम कार्यक्रम में चर्चा करेंगे। तो हमारे साथ जुड़ी है स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय में अपर सचिव और राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन की मिशन डायरेक्टर आराधना पटनायक। बहुत बहुत स्वागत है मैम आकाशवाणी में आपका।
3: नमस्कार।
2: तो सबसे पहले हम आपसे जानना चाहेंगे कि प्रधानमंत्री सुरक्षित मातृत्व अभियान के तहत जो आज से एक देश भर में विशेष आउटरीच अभियान शुरू किया गया है, इसका मुख्य मकसद क्या है?
3: आज से जो प्रधानमंत्री सुरक्षित मातृत्व अभियान की 10वीं वर्षगांठ को आज हम मुख्य रूप से उसको एक उत्सव के रूप में मना रहे हैं। आपको जानकारी होगी कि ये प्रधानमंत्री सुरक्षित मातृत्व अभियान ये 9 जून 2016 से प्रारंभ किया गया और इस अभियान में प्रत्येक माह के 9 तारीख को जो भी गर्भवती माताएं हमारी हैं, गर्भवती महिलाएं हैं, उनको विशेषज्ञ की सेवाएं दी जाती है। जो हमारे स्पेशलिस्ट कंसल्टेशंस वो इस दौरान होती है और साथ ही साथ जो उनका प्रसव पूर्व जांच किया जाता है वो निशुल्क किया जाता है। साथ ही साथ विशेषज्ञ संपूर्ण रूप से उनकी जाँच करते हैं ताकि स्वस्थ माँ एक स्वस्थ बच्चे को जन्म दे सके, ताकि गर्भावस्था के दौरान उनको कोई भी दिक्कत नहीं हो।
2: जी, तो जैसा कि आपने बताया कि 10 वर्ष पूरे होने पर ये विशेष राष्ट्रव्यापी अभियान है, तो हम आपसे ये भी जानना चाहेंगे कि कौन कौन सी वो गतिविधियां या जागरूकता के कार्यक्रम हैं जो अलग अलग राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों में इस अभियान के तहत जो संचालित किए जाएंगे, उस बारे में भी हमें बताएं।
3: सभी हमारे जो आयुष्मान आरोग्य मंदिर है वहां पर आयुष्मान आरोग्य शिविर आयोजन किया जा रहा है। तो लगभग 1,80,000 हमारे आयुष्मान आरोग्य मंदिर है जहां पर डॉक्टर्स और हमारे कम्युनिटी हेल्थ ऑफिसर्स वो प्रसव पूर्व जांच करते हैं और उसके साथ साथ जितने हमारे जिला अस्पताल, अनुमंडलीय अस्पताल और हमारे सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र है, फर्स्ट रेफरल यूनिट्स है, वहां पर गायनेकोलॉजिस्ट की प्रेजेंस में उनका प्रसव पूर्व जांच होता है। इसके साथ साथ इसी दौरान हम लोग हाई रिस्क प्रेग्नेंट वुमेन को आइडेंटिफाई करते हैं। वैसे महिलाएं जिनको शारीरिक कोई ना कोई कठिनाई है जिसके कारण उनको हम एक हाई रिस्क कैटेगरी में लेते हैं, तो वो जो हाई रिस्क प्रेगनेंसीज है उनका स्पेशल फोकस रहता है इस 9 तारीख को और उनका स्क्रीनिंग और उनका फॉलोअप। और इसको लेकर एक हम लोग अभियान भी चालू किए हैं जिसमें हम अवेयरनेस ला रहे हैं। तो हमारी जो आशा बहनें हैं वो गांव गांव घर घर जाके महिलाओं को जागरूक कर रही हैं कि आप अपना प्रसव पूर्व जांच के लिए नियमित रूप से प्रत्येक माह के 9 तारीख को जरूर अपना जांच कराने के लिए जाएं। उसके अलावा हमारी जन आरोग्य समिति है, जितने हमारे VHSND विलेज हेल्थ एंड सैनिटेशन न्यूट्रिशन कमिटीज हैं वहां पर हम लोग फिर माताओं की हम लोग बैठकें आयोजित करते हैं। तो उन सभी में जितनी पंचायती राज हमारी संस्थाएं हैं, इन सभी को जितने भी सामुदायिक ऐसे हमारे प्लेटफॉर्म्स है, कम्युनिटी बेस्ड प्लेटफॉर्म्स, वहां पर हम अवेयरनेस की एक्टिविटीज करते हैं।
2: बिल्कुल। तो प्रधानमंत्री सुरक्षित मातृत्व अभियान का जो ये एक विशेष जागरूकता कार्यक्रम है, इसमें एक और विशेष पहलू है कि 9 ऐसी निःशुल्क सेवाएं गर्भवती महिलाओं तक पहुंचाई जाएंगी। कौन सी वो 9 सेवाएं हैं और किस तरह से जो गर्भवती महिलाएं हैं या परिवार हैं इन निःशुल्क सेवाओं का फायदा ले सकते हैं?
3: स्पेशलिस्ट कंसल्टेशन, तो एक विशेषज्ञ वहां पर रहेंगे जो गायनेकोलॉजिस्ट ऑब्स्टेट्रिशियन जो इनकी जांच करेंगे। दूसरा है अल्ट्रासाउंड की सुविधा रहेगी, तो सोनोग्राफी उनकी हो सकती है।

0: तीसरा हमारा है हाई रिस्क प्रेगनेंसी का डिटेक्शन और मैनेजमेंट, तो उनको चिन्हित करना। चौथा है हर एक इंडिविजुअल को ट्रैक करना और उसको फॉलोअप करना। पांचवा है ट्रांसपोर्टेशन इंसेंटिव, तो उनको आने जाने के लिए जो पीएमएसएमए सेशन के लिए वो आते हैं उसके लिए जो उनको सुविधा चाहिए ट्रांसपोर्टेशन की वो हम उसमें देंगे। छठा है उनको हम नियरेस्ट हमारे जो फर्स्ट रेफरल यूनिट है जहां पर डिलीवरी हो सकती है उससे हम टैग कर देंगे। तो ये सातवा है जो उनकी मुख्य जांचें होती है जैसे खून की जांच, यूरिन की जांच, वो सारा है। फिर आठवा है आयरन फॉलिक एसिड, कैल्शियम सप्लीमेंटेशन और टीडी वैक्सीनेशन जो उनका होता है वो कराना। और नौवा है काउंसलिंग करना उनको, न्यूट्रिशन, बैलेंस डाइट, फिर उसके बाद फैमिली प्लानिंग। तो पूरे
1: जी
0: प्रसव के दौरान उनको क्योंकि अपने खाने पीने पर बहुत ध्यान देना है, क्या क्या उनको खाना है, कैसे पौष्टिक
1: जी
0: आहार लेना है, और फिर साथ ही साथ परिवार नियोजन कि
1: जी
0: अगला बच्चा फिर कैसे प्लान कर सकते हैं
1: जी
0: उस पर। तो ये 9 प्रकार की सेवाएं हम मुफ्त में सभी गर्भवती माताओं को देते हैं।
1: बिल्कुल। तो इस अभियान के 10 वर्ष पूरे हुए हैं, हम आपसे ये भी समझना चाहेंगे कि 2016 में शुरू हुआ प्रधानमंत्री सुरक्षित मातृत्व अभियान, अब किस तरह से इन 10 सालों में इस अभियान से जो देश भर की करोड़ों गर्भवती महिलाएं, उनको लाभ हुआ है, क्या कुछ महत्वपूर्ण नतीजे और इस अभियान का फायदा हमें इन 10 सालों में देखने को मिला है?
0: इन 10 सालों में मैंने बहुत खुशी के साथ बताना चाहूंगी 7.5 करोड़ से ज्यादा महिलाओं को ये जो प्रत्येक माह के 9 तारीख में आती हैं उनको प्रसव पूर्व उनका जांच किया गया है, तो उनको एंटीनेटल केयर चेकअप मिला है। और हम लोगों ने लगभग 1.2 करोड़ हाई रिस्क प्रेग्नेंट वुमेन को आइडेंटिफाई किया, हाई रिस्क प्रेगनेंसीज को आइडेंटिफाई किया और उनका मैनेजमेंट करके उनका इंश्योर कराया कि सेफ डिलीवरी हो। तो ये एक काफी बड़ी
1: बिल्कुल
0: उपलब्धि है। और इसके अलावा मैं ये भी बताना चाहूंगी 9 तारीख तो एक फिक्स्ड डे है जहां पर हम सर्विसेज देते हैं। वैसे हमारे सभी आयुष्मान आरोग्य मंदिर में जो कम्युनिटी हेल्थ ऑफिसर्स हैं और ANM बहनें हैं और आशा बहनें प्रेग्नेंट वुमेन को लाती हैं, वो प्रतिदिन उनको ये सेवा मिल सकती है कि वो ANC चेकअप के लिए आ सकते हैं जब भी उनको आवश्यकता हो।
1: बिल्कुल
0: और 9 तारीख को स्पेशलिस्ट कंसल्टेशन, वो एक मेजर एड ऑन हम लोगों ने किया है।
1: बिल्कुल। एक जो विशेष इस अभियान ने भूमिका निभाई है कि जो प्रसव से पूर्व की जांच होती है जो प्रेगनेंसी के दौरान, तो उस जांच की पूरी एक व्यवस्था इस अभियान के तहत स्थापित हुई है। तो हम आपसे ये भी समझना चाहेंगे कि जो भारत का एक पूरा स्वास्थ्य ढांचा है वो कैसे अब बदला है, कैसे लोगों में, महिलाओं में खासतौर पर, प्रसव पूर्व जांच को लेकर इस खास अभियान से एक जागरूकता आई है, तो कैसे इस मामले में एक बड़ा बदलाव देखने को मिला है?
0: पहले हम लोग जो ये कार्यक्रम चलता रहा है हमारे सभी स्वास्थ्य केंद्र में प्रसव पूर्व जांच के लिए 4 ANCs, मतलब 4 बार महिला को, गर्भवती माता को अपने 9 महीने के दौरान कम से कम 4 बार उनको आके अपना जांच कराना था। ये मैं 2016 के पहले की बात कर रही हूँ। 2016 में प्रधानमंत्री सुरक्षित मातृत्व अभियान आया, इसमें हम लोग सभी गर्भवती माताओं के लिए सुविधा रखी कि प्रत्येक माह के 9 तारीख को आप एक अतिरिक्त मतलब 5th ANC
1: बिल्कुल
0: पांचवा अपना चेकअप कराने के लिए आप एक विशेषज्ञ की सेवा ले सकते हैं, वो उनकी सेवा मुफ्त में आपको उपलब्ध है। और उसके बाद जब इसमें हम लोग को सफलता हासिल हुई तो हम लोगों ने 2022 में यही प्रधानमंत्री सुरक्षित मातृत्व अभियान को एक्सटेंडेड PMSMA करके
1: जी
0: लॉन्च
1: जी
0: किया, जिसमें जो ये गर्भवती माताएं जो हाई रिस्क कैटेगरी में आती, तो हाई रिस्क प्रेगनेंसीज के लिए 3 अतिरिक्त चेकअप्स, तो मतलब टोटल 8 हो गया। तो एक नॉर्मल महिला के लिए जो हाई रिस्क नहीं है, नॉर्मल उसका डिलीवरी होना है, 4 ANC प्लस एक विशेषज्ञ की सेवा, तो
1: जी
0: 5 हुआ। और हाई रिस्क प्रेगनेंसी के लिए ये 5 प्लस 3 और, मतलब 8 टोटल ANC चेकअप होगा। तो
1: बिल्कुल
0: ये एक मेन बदलाव हुआ। तो इसमें जो हमें सबसे बड़ी उपलब्धि जो मुझे लगती है कि क्योंकि अब हम हाई रिस्क प्रेग्नेंट वुमेन चिन्हित कर पा रहे हैं और चिन्हित करके उनका फॉलोअप कर पा रहे हैं, उनका हम लाइनअप करें कहाँ डिलीवरी होना है और उनको आने जाने के लिए, उनको बाकी सारे जांच के लिए मुफ्त सारा। हाई रिस्क फैक्टर्स करीब हमारे 25 कैटेगरीज हैं, जैसे सीवियरली वो एनीमिक, डायबिटिक है, तो इस तरह कई प्रकार के हैं हमारे हाई रिस्क फैक्टर्स। और हम समय पर उनको आइडेंटिफाई कर पा रहे हैं हाई रिस्क प्रेग्नेंट वुमेन को, तो उनको वो विशेष सेवाएं जो उनको विशेषज्ञ की आवश्यकता है, उनको बेहतर सेवा देने की आवश्यकता है, वो हम पहले से कर पा रहे हैं। तो
1: बिल्कुल,
0: इससे हमारे मातृत्व मृत्यु दर में भी कमी आई है और शिशु मृत्यु दर में भी कमी आई है।
1: ये आपने बहुत महत्वपूर्ण बात हमारे श्रोताओं को बताई। इस पर ही मैं अगला प्रश्न आपसे पूछना चाह रहा हूं कि जो अभी हमारे पास आंकड़े भी हैं कि हाल ही में पहले की तुलना में हमारे पास जो मातृ मृत्यु दर है उसमें बहुत बड़ी संख्या में कमी आई है, तो जिस तरह से प्रधानमंत्री सुरक्षित मातृत्व अभियान

0: एक सफल अभियान रहा है, कैसे प्रसव पूर्व जांच या जो पूरी सुविधाएं इस अभियान के तहत दी गई हैं उसने मातृ मृत्यु दर और शिशु मृत्यु दर में एक बड़ी कमी लाने में मदद की है, इस बारे में भी आप थोड़ा सा और प्रकाश डालना चाहे तो।
1: अगर मैं आंकड़ों की बात करूं तो मातृत्व मृत्यु दर 2014-16 का अगर हम डाटा लें, जो SRS का है, सैंपल रजिस्ट्रेशन सिस्टम है,
0: जी
1: उसमें 130 था और आज वो 2022-24 का भी हाल ही में SRS डाटा आया है, वो 87 हो गया है, तो 87 हो गया है। और अभी 2023 में जो यूनाइटेड नेशंस के मेटर्नल मोर्टेलिटी एस्टिमेशन इंटर एजेंसी ग्रुप है, UNMMEIG, उन्होंने हमें ये बताया कि हमारा इंडिया का डिक्लाइन करीब 86% हुआ है 1990 से लेकर अब तक, जबकि ग्लोबल एवरेज है पूरे विश्व में ये मात्र 48% डिक्लाइन हुआ है MMR में, और इंडिया में वो डिक्लाइन मैंने ऑलमोस्ट डबल आप कह सकते हैं, 86% डिक्लाइन हुआ है पिछले दो दशकों में। उसी तरह अगर नियोनेटल मोर्टेलिटी रेट की, जो नवजात शिशु में मृत्यु दर होता है, वो हमारा 26 प्रति 1000 लाइव बर्थ्स था 2014 में, वो घट के अभी 18 प्रति 1000 लाइव बर्थ्स 2024 का जो लेटेस्ट SRS आया है उसमें आया है। उसमें भी जो UN इंटर एजेंसी ग्रुप फॉर चाइल्ड मोर्टेलिटी एस्टिमेशन 2025 का उनका रिपोर्ट है, UNIGME रिपोर्ट हम कहते हैं, उसमें इंडिया का डिक्लाइन 70% मतलब 70% डिक्लाइन हुआ है नवजात शिशु मृत्यु दर में, और ग्लोबल डिक्लाइन है 54%। तो इसमें भी हम लोग की उपलब्धि विश्व के सापेक्ष बहुत बेहतरीन हुआ।
0: जी निश्चित तौर पर, और क्योंकि ये ऐसी योजना रही है जिसने धरातल पर एक बहुत बड़ा परिवर्तन लाने में स्वास्थ्य में मदद की है, हम आपसे यही समझना चाहेंगे कि जो धरातल पर दूर दराज गांव में प्रधानमंत्री सुरक्षित मातृत्व अभियान में जो हमारे फ्रंटलाइन वर्कर्स हैं, आशाएं हैं, ANM हैं, आंगनवाड़ी कार्यकर्ता हैं, उनकी किस तरह से भूमिका को सुनिश्चित किया गया है, कैसे वो इसमें अपना महत्वपूर्ण रोल निभा रहे हैं?
1: आशा वर्कर्स है ये सबसे बड़ी भूमिका निभा रही है। आशा बहनों को पता है कि उनके गांव में कितनी गर्भवती माताएं हैं, तो वो एक एक के घर जाके उनसे संपर्क करके फिर उनको लेकर आती हैं हमारे आयुष्मान आरोग्य मंदिर और स्वास्थ्य केंद्रों में, जहां पर उनकी जांच की जाती है। जांच के बाद उनका फॉलो अप करना, बार बार उनके से संपर्क में रहना, कि डिलीवरी को प्लान करना, मतलब कहां पर वो प्रसव के लिए जाएंगी, जब जब वो चेकअप के लिए आती हैं, जब जब अपने प्रसव पूर्व जांच के लिए आती हैं, आशा बहन उनको साथ में लेकर आती है। प्रसव के दौरान भी वो उनके साथ में रहती है, तो आशा बहनों की बहुत ही महत्वपूर्ण भूमिका है। उसी के साथ साथ हमारे जो ANM दीदी हैं, मुख्य रूप से उनकी एक बहुत बड़ी भूमिका है, और हमारा एक डिजिटल प्लेटफॉर्म भी है जिसमें हम ये पूरा ट्रैक करते हैं। हाल ही में एक जननी पोर्टल लॉन्च किया गया माननीय केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री के द्वारा 30 अप्रैल को, जिसमें हम एक एक गर्भवती माता का ट्रैकिंग करते हैं, और जैसे ही वो रजिस्ट्रेशन होता है तो उनका जब नेक्स्ट उनका ड्यू रहता है, आशा बहन के साथ साथ यहाँ से एक मैसेज भी जाता है, डिजिटल से एक मैसेज उनको जाता है कि आज आपका ड्यू डेट है चेकअप के लिए, तो आप जरूर आए। उसी तरह 9 तारीख के लिए उनको फिर मैसेज जाता है कि आप 9 तारीख को अपने जांच के लिए स्वास्थ्य केंद्र में जरूर आए। तो ये सारा फॉलो अप करना और सभी सुविधाएं पहुंचे, जागरूकता लाना, कैसे वो अपने स्वास्थ्य के प्रति जागरूक रह सकती है, खान पान में क्या उनको विशेष ध्यान देना, ये सभी हमारी आशा बहने और ANM दीदी वो करती है। उसके अलावा जो आंगनवाड़ी दीदियां हैं, आंगनवाड़ी में हम लोग का विलेज हेल्थ न्यूट्रिशन डे मनता है, हर महीने मनाया जाता है, एक दिन होता है, वो एक आउटरीच कैंप के रूप में होता है, तो उसमें आंगनवाड़ी में भी यही सेवा जो हम स्वास्थ्य केंद्र में प्रतिदिन देते हैं, ANC चेकअप और उनका टीकाकरण, उनके खाना पीने के पर क्या ध्यान देना, ये सारी चीजें भी VHND में जो आंगनवाड़ी केंद्र में महीने में एक दिन वो भी होता है, तो वहां पर आंगनवाड़ी सेविकाओं की बहुत महत्वपूर्ण भूमिका है।
0: बिल्कुल, तो जिस तरह से प्रधानमंत्री सुरक्षित मातृत्व अभियान पिछले 10 वर्षों में हमारे देश की जो मेटरनल हेल्थ है, मातृ स्वास्थ्य है, उसमें एक अपनी बड़ी भूमिका निभा रहा है, और उसके बहुत सारे नतीजे हमें इन वर्षों में देखने को भी मिले हैं, जिस पर हमने विस्तार से चर्चा की। बहुत बहुत धन्यवाद मैम, आप कार्यक्रम में जुड़ी और आपने विस्तार से हमारे श्रोताओं को जानकारी भी दी और महत्वपूर्ण बातें हमारे साथ साझा की, बहुत बहुत धन्यवाद।
1: बहुत बहुत धन्यवाद, सभी को मेरा नमस्कार।
2: अभी आप सुन रहे थे प्रधानमंत्री सुरक्षित मातृत्व अभियान के 10 वर्षों पर स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय में अपर सचिव और राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन की मिशन निदेशक आराधना पटनायक के साथ आकाशवाणी संवाददाता कमल कुमार प्रजापति की विशेष बातचीत। ये कार्यक्रम आकाशवाणी के समाचार सेवा प्रभाग द्वारा प्रस्तुत किया गया। इसे आप हमारे मोबाइल ऐप न्यूज ऑन AIR और यूट्यूब चैनल न्यूज ऑन AIR ऑफिशियल पर भी सुन सकते हैं।

ये आकाशवाणी का श्री विजयपुरम केंद्र है। रात्रि के 10:01 हुए हैं। अब आरंभ होता है फरमाइशी देश फिल्मी गीतों का कार्यक्रम। संदेशे आते हैं।

कार्यक्रम संदेशे आती है में आप सभी श्रोताओं का स्वागत है। श्रोताओं, अगर आप हमारे इस कार्यक्रम में अपने पसंद के गीतों को सुनना चाहते हैं तो हमें इस नंबर पर अपनी फरमाइश भेज सकते हैं। हमारा नंबर है 9474234000। नंबर एक बार फिर 9474234000। लेते हैं पहला फरमाइश जो हमें सूरत से अशरफ और फरीद ने भेजा है। ये सुनना चाहते हैं अलका याग्निक और उदित नारायण का गाया फिल्म हमारा दिल आपके पास है का ये गाना। गीत रचना जावेद अख्तर की तथा संगीत दिया है संजीव दर्शन ने। आइए सुनते हैं इनकी पसंद पर ये गाना।

किशोर कुमार और आशा भोसले की आवाज़ों में सुनिए फिल्म पुकार का ये गीत। गुलशन बावरा के लिखे इस गीत को शुरू में पिरोया है RD बर्मन ने और फरमाइश करने वाले श्रोता है दिल्ली से बिन्नी शर्मा और आराधिका शर्मा।

कैमल बिच नितेश ने हमें फरमाइश भेजी है फिल्म बंटी और बबली के इस गीत के लिए, जिसे लिखा है गुलजार ने, संगीत शंकर एहसान लॉ का है, गायक कलाकार है अलीशा चिनॉय, शंकर महादेवन और जावेद अली।

लीजिए अब सुनिए, जंगली घाट से गीता, तनिष्क और सावित्री की पसंद पर फिल्म परदेश का एक गीत। गायक कलाकार है अलका याग्निक और कुमार सानू। गीत रचना आनंद बख्शी की तथा संगीत नदीम श्रवण का है।

ये आकाशवाणी का श्री विजयपुरम केंद्र है। मौसम मौसम विभाग से प्राप्त सूचना के अनुसार अंडमान तथा निकोबार द्वीप समूह में हल्की से मध्यम वर्षा हुई। जन सेवाओं को मौसम संबंधी अनुमान बताया जाता है कि द्वीप समूह के एक या दो स्थानों पर तेज हवाओं के साथ वर्षा होगी। मछुआरों को मौसम संबंधी अनुमान बताया जाता है कि खराब मौसम के चलते अंडमान तथा निकोबार के सागर में वायु की गति 40 से 50 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से चलेगी, जो बढ़कर 60 किलोमीटर प्रति घंटा हो सकती है, जिस कारण समुद्र अत्यधिक अशांत रहेगा। मछुआरों को सलाह दी जाती है कि वे 12 जून तक समुद्र में ना जाए। परसों सुबह तक के मौसम संबंधी पूर्वानुमान में बताया जाता है कि अंडमान तथा निकोबार द्वीप

के एक आध स्थानों पर तेज हवाओं के साथ वर्षा होगी। ये था मौसम का हाल। इस समय रात्रि के 10:30:50 हुए हैं। हमारी आज की दूसरी सभा अब यहीं समाप्त होती है। प्राइमरी चैनल पर कल प्रातः 5:23 पर हम अपनी पहली सभा में, जबकि 100.9 MHz विविध भारती FM पर कल सुबह 6 बजे फिर उपस्थित होंगे। तब तक के लिए आज्ञा दीजिए। जय हिंद।

मीडियम वेव 438.6 मीटर अर्थात 684 किलोहर्ट्ज़ पर यह आकाशवाणी का श्री विजयपुरम केंद्र है। आज बुधवार है। शक संवत 1948 के ज्येष्ठ माह की 20वीं तिथि तदनुसार 10 जून सन 2026 इस समय सुबह के 5:28 और 40 सेकंड हुए हैं। अपनी आज की पहली सभा में हम आप सभी श्रोताओं का हार्दिक अभिवादन करते हैं।